تتنزل عليهم

اور اگر تمہیں شیطان کی جانب

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: कराची में मंशात विकरो करण जे इल्ज़ाम हेठि गिरफ़्तार औरत जी हथकड़ी खां सवाइ अदालत में पेशी जवाबदार बिना कंहिं डप जे अदालती रादारनि में घुमंदी रही कैसे वठी आयल पुलिस अहलकार रस्तो ॾेखारींदो रहियो जवाबदार औरत जी मुबैना आडियो बि साम्हूं अची वई आडियो में जवाबदार औरत चवे थी त ख़बर नाहे किथां अची वेंदा आहिनि त पिंकी खे पकड़ींदा सॼी कराची में कमु करे रहिया आहिनि खणी सघो था त खणी वञो जवाबदार औरत जी अदालत में घुमण जी वीडियो साम्हूं आई त आज जी नोटिस वरितो SHO गार्डन हनीफ सियाल आयो सईद अहमद ऐं SIO ज़फ़र इक़बाल मुतल अदालत जवाबदार औरत खे अदालती रिमांड ते जेलो माणे छॾियो पुलिस जवाबदार औरत खे मंशात केस में गिरफ़्तार कयो हो पुलिस मूजिबि जवाबदार औरत वटां पिस्तौल करोड़े रुपियनि जी गुकिन ऐं ॿी मंशात हथु कई वई हुई पक आहे त ईरान यूरेनियम रचा 100% रोके छॾींदो उहा बि पक आहे त ईरान जोहरी हथियार हथु खणण जी कोशिशि करे छॾींदो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान सां मुआदे लाइ तेज़ी सां कमु करणो पवंदो पर तकड़ न कंदासीं ईरान जे एटमी वाक़ियात हासिलु कई वेंदी अमरीकी मीडिया मूजिबि सदर ट्रंप ईरान जे हवाले सां हिकमत अमली लाइ क़ौमी सलामती जो इजलास घुराए वरितो इजलास में ईरान सां जंगबंदी जारी रहण या ऑपरेशन फ्रीडम प्लस सूधो ॿियनि अहम ऑप्शन बाबति फ़ैसिला कया वेंदा ॿिए पासे ईरान बि अमरीका खे ख़बरदार कयो त नओं हमिलो थियो त यूरेनियम जो रचाव 90% ताईं पचाए सघिजे थो माहिरनि मूजिबि 90% रचाव जो मतिलबु एटम बम तयारु करण जी सलाहत जे वेझो थियणु आहे ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकिर कालेबाब मूजिबि अमरीका वटि ईरानी तजवीज़ूं मञण खां सवाइ को मुतबादिल न आहे जेतिरी देरि थींदी टैक्स ॾींदड़ अमरीकनि खे ओतिरी वधीक क़ीमत अदा करणी पवंदी पाकिस्तान नूरखान एयरबेस ते ईरानी जहाज़नि जी मौजूदगी जी ख़बरुनि खे गुमराह कंदड़ करार ॾेई छॾियो वर्ल्ड ऑफिस पारां जारी कयल बयान में नूरखान एयरबेस ते ईरानी जहाज़नि जी मौजूदगी बाबति CBS न्यूज़ जी रिपोर्ट जी सख़्ती सां तरदीद बयान में चयो त अहिड़ियुनि क़यासराए ते ॿधल बयान जो मक़सदु इलाइक़ाई इस्तेकाम ऐं अमन लाइ जारी कोशिशुनि खे नुक़सान पहुचाइणु आहे परॾेही ऑफिस जे बयान में वधीक चयो त जंगबंदी खां पोइ ऐं इस्लामाबाद ॻाल्हियुनि जी शुरूआती मरहले दौरान ईरान ऐं अमरीका जा केतिरा ई जहाज़ पाकिस्तान पहुता हुआ उहे जहाज़ सफ़ारती अमले जी अचु वञु आसान बणाइण लाइ हुआ कुझु जहाज़ ऐं मददगार अमले जा माण्हू ॻाल्हियुनि जे ईंदड़ इम्कानी दौर जे तवक सबबि पाकिस्तानियूं ॿीहर शुरू न थियूं आहिनि पर आला सतह राब्ता जारी आहिनि उन पस मंज़र में ईरानी परॾेही वज़ीर जी इस्लामाबाद जे दौरनि जे दौरान मौजूदा इंतिज़ामी ऐं लॉजिस्टिक सहूलियतुनि ज़रिए मुमकिन बणाए वियो पाकिस्तान में मौजूदु ईरानी जहाज़ जंगबंदी जे दौरान आयो हो ऐं उनजो कंहिं फ़ौजी हंगामी सूरताल सां को तालुक न हो
4: जी आप क्या कह रहे
5: हैं
4: आप बात कर सकते हैं बात
5: मैंने आपको नाम भेजा आपने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी आपने पुट कर दिया मोशन को
4: तो मैंने तो मोशन
5: मैं कोई रिकॉर्ड स्टेट करना चाहता हूँ
4: तो आप कर सकते हैं करें आप
5: ये बात असेंबली की है
4: जी करें
5: मेरी जाति नहीं है।

पब्लिक सर्विस कमीशन के हरू भरू तकरारी बणाए वियो आहे। सिफारिश कल्चर हुजे हा त मुंहिंजो पुट फेल न थिया। चेयरमैन पारां इल्ज़ाम हणण जे बुनियाद ते केस दाख़िल करणु इंतिहाई क़दम आहे। सूबे वज़ीर नासिर शाह जूं कराची में मीडिया सां ॻाल्हियूं। नासिर हुसैन शाह चयो त पब्लिक सर्विस कमीशन जे इम्तिहान में हिकु सेनेटरी वर्कर ऐं रेलवे मुलाज़िम जो पुट बि कामयाबु थिया आहिनि। बाजारी जो पुटु पहिरें अटैम्प्ट में फेल थियण बाद महिनत करे ॿी कोशिश में कामयाबु थी वियो। रशीद चन्ना जो पुटु ॿाहिरि मुल्क पढ़ंदो हो। मेरिट ते पास थींदड़ ॿारनि खे शक जे नज़र सां न ॾिसणु घुरिजे। कंहिं वटि सबूत आहिनि त खणी अचे।

पीपल्स पार्टी जे पण सीतारोड जे टाउन चेयरमैन कमर अली लगारी जी पांजे ही पार्टी जे एमएनए भाटे इमरान जफर लगारी एमपीए जुबैर जुणी जो ऐं ॿियनि ते छती तनक़ीद कमर अली लगारी चयो त चूंडियल नुमाइंदा कमु करण लाइ तयारु न आहिनि। तनक़ीद कयूं था त पंहिंजा कपिड़ा फाड़नि था, मुंहिंजो एमएनए भाइटियो मुंहिंजी ॻाल्हि ई नथो ॿुधे, त आवाम जो छा ॿुधंदो? कमर अली लगारी जी पार्टी जे चूंडियल नुमाइंदनि ते तनक़ीद वारी वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल। ऐं सजावल भरिसां दौड़ बिराज में विझण दौरान चार नींगर ॿुड़ी विया। हिकु फौत इलाइक़े वासियुनि ऐं मक़ामी टोबनि टिनि नींगरनि खे मौक़े ते ई बचाए वरितो। सॼो ॾींहुं गोलाबाद 12 वरनि जे अमीर शाह जो लाश हथु। इलाइक़े वासियुनि मूजिबि नींगर मींझ रहिया हुआ त उन पाणी में वञण सबबि ॿुड़ी विया। ठरी मिरवा भरिसां नींगर अहसान अली शाख में ॿुड़ी फौत। ॻोठु तारको वॾो वटि नींगर शाख में विझी रहियो हो त ॿुड़ी वियो। इलाइक़े वासियुनि गॾियल कोशिशुनि सां लाश हथु करे वरितो। लाश घर पहुचण ते कोराम

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
3: 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
4: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: लोग कहते हैं

ईरान दुरुस्त फैसलो न कयो त असां पंहिंजो कम मुकमल कंदासीं। अमरीकी सदर ट्रंप जी नई धमकी, चीन रवानगी खां अॻु मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अमरीकी सदर ट्रंप चयो त ईरान एटमी हथियार नथो रखी सघे, चाहियूं था त सुठो मुआदो थी वञे। मुंहिंजे ख़्याल में ईरान जंग में चीनी सदर जी मदद जी ज़रूरत न पवंदी, असां वेनेज़ुएला सां सियासी क़ैदियुनि खे आज़ादु कराईंदासीं। चीन जे दौरे जा मस्बत नतीजा साम्हूं ईंदा। ट्रंप चयो त पाकिस्तान जूं टियाकड़े जूं कोशिशूं बहितरीन आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शानदार शख़्सियतूं आहिनि। हुन खां अॻु जारी कयल बयान में ट्रंप चयो त यकीन आहे ईरान यूरेनियम जो रचाओ 100% रोके एटमी हथियार हासिल करण वारनि कोशिशुनि तां हथ खणी वेंदो। ईरान सां मुआदे लाइ तेज़ीअ सां एटमी दस्ब अमरीका हासिल करे वठंदो। ईरान खबरदार कयो आहे हथियारबंद फ़ौज कंहिं बि सूरतहाल लाइ तयार आहे। दुश्मनी जुरत कंदड़नि खे सख़्त सज़ा ॾिनी वेंदी। ईरानी परॾेही वज़ीर वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बाकाई एक्स ते जारी कयल बयान में चयो आहे त अमरीका ऐं इसराइल पारां ईरान ख़िलाफ़ जंग हिकु अहिड़ी जंग आहे जेका मुस्तक़बिल लाइ सुठी आई ऐं बुराई जी मफ़हूम जो तइन कंदी। जंग में हिकु पासे पेशेवर कूड़ा आहिनि ऐं जेके ज़ुल्म लाइ जवाबु पेश कनि था, ॿिए पासे हिकु बावक़ार क़ौम आहे जेका पंहिंजे वतन इंसानी वक़ार जो दिफ़ा करे थी ऐं सिर्फ़ु पंहिंजी ताक़त ऐं अज़म सां भरोसो करे थी।

इहो सईद खे मुअतल करे वाके जी जांच एस एस पी ॾखण माज़ूर अली हवाले कई वई आहे। गुज़िरियल ॾींहुं सुबुह पुलिस प्रोटोकॉल में अदालत आंदल पिंकी रेप जीअं वाक कंदे अदालती कमरे में पहुती हुई। अनमोल उर्फ पिंकीअ जो गिरफ़्तारी खां पुलिस क्रिमिनल चैलेंज वारी ऑडियो बि साम्हूं अची वई। पिंकी ऑडियो में चवे थी त खेसि पकड़ण जी कोशिश कंदड़ रिटायर थी वञनि था पर पकड़े नथा सघनि। बयान थियण लाइ पिंकी जीअं सोचणो पवंदो। कुकेन कोइन पिंकीअ खे पुलिस जनरल प्रोटोकॉल सिंध पुलिस जे बिटे मयार खे बि ज़ाहिर करे छॾियो। कुझु ॾींहं कराची प्रेस क्लब पारां पहुतल औरत मार जी अॻवान शीमा खरमाणीअ ॿिनि खे गिरफ़्तारी दौरान तज़लील जो निशानो बणायो वियो। साॻे ई पुलिस गुज़िरियल ॾींहं मंशात पुरुष ऐं औरत खे प्रोटोकॉल ॾींदे नज़र आई।

0: सिंध असेंबली में अपोजिशन एमपीएस सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी चटाभेटी इम्तिहान 2024 नतीजे की शफाफ जांच कराने जो मुतालबो कर छो। हुकूमती धुर के वजीर एमपीएस बचाओ तो रुगो इल्जामन ते न हलन घुर्जे, कें वट कोसाबतियों आन त सामू आने इदारा मौजूद आन, वो वजीर पर मामले के ऐसी रो है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ताजन नतीजन खिलाफ सिंध असेंबली में ठहराओ जमा, साल 2024 के जारी कल चटाभेटी इम्तिहान नतीजा मुअतल करने जो मुतालबो। इम्तिहानी अमल मार्किंग मेरिट लिस्ट की शफाफ जांच लाए पंजाब के फॉरेंसिक लैब का जांच कराने की घुर, करप्शन मेरिट के तार साबित होने कार्रवाई का मुतालबो। ठहराओ एमक्यूएम के एमपीए मोहम्मद महाज महबूब पारा असेंबली के सेक्रेटरी वट जमा कराया वो। नाज़रीन, सिंध असेंबली सूबे में गैस की लोड शेडिंग खिलाफ ठहराओ यकराय से मंजूर कर वरतो। सूबे में गैस की लोड शेडिंग बंद करने का मुतालबो एमपीए मोहम्मद अवेज पारा पेश कल ठहराओ की हुकूमत एमक्यूएम मेंबर्स भी हिमायत कई। गैरत के नाले से औरतन के कत्ल खिलाफ भी ठहराओ यकराय से मंजूर किया वो। बल्कीज मुख्तियार तो सिंध असेंबली कानून तो मंजूर किया पर उनते अमल न तो थे। सूबाई वजीर अजरा बेचू असा गैर के नाले से औरतन के कत्ल खिलाफ ठहराओ की हिमायत क्यों था। सिंध में कारोकारी जरगा छो था थन, तंजीला कमरानी चो तो कें भी रस्म तहत औरत जो कत्ल कबूल जोगो ना है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से किसान

0: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहिरें ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो जीए हुजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज।
1: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिलु करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देरि छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि मशहूरु व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरार होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघि ज़ुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखिन जी खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हन सबनी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज कयो वेंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम

0: रोजानो सुबुह 9 वगे खां शाम 5 वगे ताई बरोज जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरण। वधिक मशोरे ऐं राबते जे लाइ 0327-99-84-760।
1: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
1: Hamay Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Hamay Diamond Glow Bleach Cream.
2: खूबसूरती है जो असल राज. सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ मिंडीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: हाँ हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन जरिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरार होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हन सभिनी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज कयो वेंदो आहे होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोजानो सुबह 9 AM का शाम 5 AM ताई बरोज जुमू मोकल आहे एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरण वधिक मशोरे ऐं राबते जे लाइ 0327-99-84-763
4: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: जदे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो
2: बहजो शहर बहजो घर सकरण आई सकरण जो आवाज
3: GFM 90.8

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: पाकिस्तान की IMF का इब्तदाई ट्रेयर अब्दुल्ला जी नहीं किस्त मिली।

हुकूमत IMF खे जनवरी 2027 ईस्वी ताईं गैस वापिदारनि खे मिलंदड़ 140 अरब रुपियनि जे किरास सब्सिडी ख़त्म करण जी ख़ातिरी कराए छॾी। गैस ऐं बिजली ते मिलंदड़ रियायतूं वापिदार जो इस्तेमाल बदिरां आमदनी जे बुनियाद ते ॾिनियूं वेंदियूं। आमदनी बुनियाद ते रियायतुनि लाइ BISP डेटा इस्तेमाल थींदी। पेट्रोलियम डिवीज़न अख़्तियारनि मूजिबि मौजूदु निज़ाम में महफ़ूज़ ऐं गैर महफ़ूज़ वापिदारनि खे घटि अघ ते गैस फराहम कई वञे थी। रियात जो ॿार सनअतनि कमर्शियल वापिदारनि CNG स्टेशन समेत सिमरट सेक्टर ऐं वधीक गैस इस्तेमाल कंदड़ घरेलू वापिदारनि बर्दाश्त कनि था। ईरान जंग में अमरीका जा 39 जहाज तबाह थिया। डेमोक्रेटिक कांग्रेस मेंबर एडवर्ड गेस केस तस्लीम करे वरितो। सेनेट कमेटी में पेंटागॉन जो CFO जे होस्ट हरस्ट जंग में अमरीकी नुकसान ते सवालनि ते लवाईंदो रहियो। अमरीकी वेबसाइट रिपोर्ट मूजिबि तबाह थियल जहाज़नि जो असल अंग वधीक थी सघे थो। कराची जी कुकीन क्वीन अनमोल और पिंकी की अदालत में शाहानी पेशी। पिंकी के बिना हथ खड़न जी प्रोटोकॉल से अदालत आनीदड़ SHO समेत टे एहलकार मुअतल। SHO गार्डन हनीफ सियाल और SAO जफर इकबाल AO सईद के मुअतल करे वाके की जांच SSP डखण माजूर अली हवाले कई वही। गुजरियल ढीह सुबुह पुलिस प्रोटोकॉल में अदालत आंदल पिंकी रैम्प जहां वाक कंदी अदालत कमरे में पहुंती हुई। अनमोल और पिंकी जो गिरफ्तारी खां पुलिस क्रिमिनल चैलेंज वाली ऑडियो भी सामूं अची वही। पिंकी ऑडियो में चवे थी तो खेस पकड़ने की कोशिश कर रिटायर थी वन था पर पकड़े ना सकन। बिरान थे पिंकी जो सोचो पवो

सिंध असेंबली में अपोजिशन एमपीए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन चटाभेटी इम्तिहान 2024 के नतीजन की शफाफ जांच करण जो मुतालबो कर छो। हुकूमती दौर के वजीर एमपीएस बचाओ तो रुगो इल्जाम से न हलन घुर्जे कें वट साबितियों तो सामू आने इदारा मौजूद आन वो वजीर पर मामले के ढी रो है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ताजन नतीजन खिलाफ सिंध असेंबली में ठहराव जमा साल 2024 के जारी कल चटाभेटी इम्तिहान का नतीजा मुअतल करण जो मुतालबो। इम्तिहानी अमल मार्किंग ए मेरिट लिस्ट की शफाफ जांच लाए पंजाब के फॉरेंसिक लैब का जांच कराने की घुर। करप्शन ए मेरिट रिटार्ड साबित होने कार्रवाई जो मुतालबो ठहराव एमक्यूएम के एमपीए मोहम्मद महाज महबूब पारा असेंबली के सेक्रेटरी वट जमा कराया वो।

0: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरार होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल की तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरण। वधीक मशोरे ऐं राब जे लाइ 0327-99-84-763।
5: सिंध के माथे का झूमर
6: DFM 88 नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज़।

वो लोग जिन लोगों की सालगिरह है उनको कहेंगे मनी मनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हैप्पी बर्थडे टू यू. उसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ यूनिक कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी बेस्ट विशेज आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें. आमीन सुमा आमीन. मेरी आवाज़ जिन जिन गलियों और चौबारों शहरों और चराहों वादियों और पहाड़ों दरियाओं और मरगुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरे परस्तारों या घरों हजारों में सुनी जा रही है. तमाम सुनने वालों को चाहने वालों को मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बेगम अहलन वसहलन मरहबा बखैर आगे ले जी आया नू सज बिस्मिल्लाह राजा शाह नी हाउ एंड वेलकम इन टू जिंदगी गुलजार है.

प्रज्ञान में हमेशा की तरह बहुत कुछ सुनने को सुनाने को समझने को समझाने को सीखने को सिखाने को बोलने को बुलवाने को और वो सारी बातें करोगे, लेकिन उससे पहले प्रज्ञान में इंक्लूड करेंगे प्रज्ञान में प्रज्ञान का पहला गाना। इस गाने के साथ ही आपको बताऊंगी कि हम क्या कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है।

जी ब्यूटीफुल सॉन्ग सॉन्ग के साथ साथ आप लोग प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरीके कार से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 8881 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है जो कि है FM88GA Sakhar के पेज के ऊपर आने के बाद आपको मिलती है लाइव एग्जैक्टली जो कि रिसेंट पोस्ट की गई है ये पोस्ट मिलती है. उस पोस्ट के नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं. कमेंट्स को ड्रॉप करने के साथ साथ इसको शेयर कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर जितना हो सकेगा उतना. इसके अलावा आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488.

0: मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

साथ साथ आप लोग मुझे कमेंट और मैसेजेस भी कर सकते हैं, जो कि आप कर भी रहे हैं. और अभी भाई ने जो बात कही कि उन्होंने फिर मुझसे जवाब भी मांगा. सो अच्छा लगता है कि जब आप सजेशंस दें और सजेशंस भी काम के हों. लेकिन उन्होंने कहा कि आप जो ये बोलती है ना कि ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी है, ये ना बोला करें. क्यों, इसमें क्या बुराई है? वजह. और इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्टाइल चेंज कर ले. अगर मैं आए दिन स्टाइल चेंज करती रहूंगी तो मेरी पहचान जो एक मेरे स्टाइल से है वो मुझे. इस बात का भी जवाब दीजिएगा नेक्स्ट टाइम. तो ये चीज है. और फिर ये सारी बातें कहने के बाद उन्होंने कहा कि मैं तनकीद नहीं कर रहा, आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा है. अच्छा है तभी तो आप सुन रहे हैं. एग्जैक्टली अच्छा है. इतने सालों से ऑन एयर है भाई मेरे. अगर ऐसे ही फ्लॉप जा रहा होता तो इसको हम कब का बंद कर चुके होते, यू नो. एक चीज चल रही है, पसंद की जा रही है, ऑन एयर जा रही है, तो इट मींस कि वो चल रही है इसी वजह से.

एक होती है तनकीद बराए सलाह और एक होती है तनकीद बराए बंदिश. इन्होंने दूसरी वाली की थी.

0: कमेंट पढ़ रही हूँ, लगता है जल्दी आ गया, कोई भी नहीं आया अभी। ओके, आज का टंग ट्विस्टर भी साथ साथ में आपसे शेयर करूंगी और साथ में गाना भी प्ले करेंगे। अच्छा, भाई ने अभी आके जो कहा कि नाच सुना दें, तो आपको खुद भी पता होना चाहिए, आप अच्छे खासे मेरे ख्याल से समझदार हैं कि जब कोई म्यूजिकल चीज़ चल रही हो, अगर उस बीच में आके आप नाच सुना देंगे तो इससे आप बहुत अच्छे नहीं बन जाएंगे, इससे ये होगा कि आप गुनाहगार होंगे। ठीक है, और जब आपको पता है कि एक म्यूजिकल थीम है, एक म्यूजिकल चीज़ है, वहाँ पे आप अच्छा बनने के लिए जो है नाच सुना दें या फिर नाच की रिक्वेस्ट करें, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन एक थीम को लेकर जो चीज़ चल रही होती है उसको आप फॉलो किया करें। अगर आपको वैसे ही कोई मनकबद या नाच सुननी है तो बिल्कुल आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन म्यूजिकल चीज के बीच में आके इस तरीके से जो है नाच सुनाना, ये आपको खुद भी सोचना चाहिए। और भाई ने कहा कि मुहर्रम आने वाले, मेरे ख्याल से ये फिर 12 महीने आपसे फिर नाते ही सुना करेंगे। ठीक है, डन है, पक्के सच्चे मुसलमान बनेंगे हम। जी, सो ये चीज है,
1: जे तू लभदा वफा फिर दानी लभनी रूप,
0: किस किस को समझाऊं मैं
1: सजनी, जब
0: आदिल हुसैन कहते हैं कि मोहब्बत सीख कर जुदा हो गया, नहीं सॉरी, मोहब्बत सिखा कर जुदा हो गया, न सोचा न समझा खफा हो गया, अब किसको हम अपना कहें, जो अपना था वही बेवफा हो गया।

ये आपके लिए आदिल हुसैन। अच्छा आज का टंग ट्विस्टर है, परवीन ने पर्पल पर्दे पर परिंदों वाली पेंटिंग पिन कर दी। परवीन ने पर्पल पर्दे पर परिंदों वाली पेंटिंग पिन कर दी, ठीक है ये कहना है। माँ किशोर बाकी सब भी आ गए, कॉल कॉल के लिए दुआ कर रहे हैं, कॉल के लिए दुआ करें। कोई बात नहीं, आप अगले सेगमेंट में भी ट्राई कर सकते हैं, नो इश्यू। ठीक है, लग जाएगी नहीं लगेगी अल्लाह मालिक है। गाना सुनते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक प्लस न्यूज ब्रेक, दोनों के बाद वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड।

अमरीका की एकवंजी रियासत करार दे छो। सदर ट्रंप वेनेजुएला की अमरीकी एकवंजी रियासत तौर नक्शो समाजी वेबसाइट से जारी कर छो। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड ए कैनेडा के अमरीकी रियासत बनाने का भी बयान दे चुको है। ईरान अमरीकी सदर के चुन डींद बयान धमकियों के मुआदे में वही रंड करार दी छो। ईरानी परे वजीर अब्बास राखरी है तो आपने हुरमज की मौजूदा सूरत हाल ईरान के अमरीकी इसराइली हमले के कर तेहरान आपने हुरमज बाबत कानूनी मुशावरत कर रहा है।

चीन परडेही वजीर वांग यी जो नायब वजीर आजम इसाक डार से फोन से राबतो ईरान अमरीका जंग के खात्मे लाइ कोशिशों तेज करण ते जोर चीनी परडेही वजीर पारा ईरान अमरीका गालन में सहूलत फराहम करण चीनी परडेही वजीर चो तो पाकिस्तान अपने हुरमज बाबत मामला हल करण लाइ किरदार अदा करे इसाक डार सालसी वारी कोशिशों की हिमायत करण से चीन जा थोरा मजीदे चो तो पाकिस्तान अमन वारी कोशिशों जारी रखंदो।

पाकिस्तान के IMF का 1.3 अरब डॉलर जी खरी किस्त मिली वही स्टेट बैंक पारा तस्दीक स्टेट बैंक पधराई में चयो है IMF का AFO RSF प्रोग्राम तहत स्टेट बैंक जी अकाउंट में 1.3 अरब डॉलर मिलिया IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड 8 मई से 3 किस्त मुंतकिल करण की मंजूरी डी हुई स्टेट बैंक मौजूद 12 मई 2026 से IMF तरफा मजमू तौर से 914 मिलियन STR मिलिया हुकूमत IMF के जनवरी 2027 का गैस वापेदार के मिलंद 140 अरब रुपये

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो, हाणे वक्त आहे चमकण जो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो। पहिरें ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो, जीअं हुजे हीरो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज।
2: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देरि छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि मशहूरु व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरार होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे, पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस: सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब जे लाइ 0327-99-84-763।
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

ओके ठीक है, कॉलर मेरे साथ मौजूद होंगे लाइन पे इस सेगमेंट के फर्स्ट. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम. ओके जी हेलो अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? ओके जी आवाज नहीं आ रही है, चेक करेंगे आवाज क्यों नहीं आ रही है. एंड 03000113488

0: Okay, जी, next caller. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं अली रजा बोल रहा हूँ, जिला कंबर.
0: अली रजा, प्रोग्राम सुनते
1: हैं? जी, अभी मोबाइल टीम किया था, काफी प्रोग्राम चल रहा था.
0: तो कैसा लगता है?
1: बहुत अच्छा है माशाल्लाह.
0: टंग ट्विस्टर सुना है? बोलेंगी?
1: वाली नहीं बोल सकता.
0: चले फिर कुछ और कहेंगे.
1: हाँ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपसे लोग समाज करते हैं माफ करने की, आप हफ्ते में एक दिन रखे, जुमरात का दिन या कोई तीर का दिन रखने, जो नातों का फरमाइश पूरा करें लोगों के.
0: ओके, थैंक यू सो मच. इस बारे में सोचा जा सकता है. थैंक यू.
1: अल्लाह
0: हाफिज. 03000113488 इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग. एक और कॉलर लेंगे. जी हेलो.
2: फिरते हैं फार्मीर, कोई पूछता नहीं. फार्मीर, अरे कोई पूछता नहीं. इस आज की मेजरत सादा की गई.
0: वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह. मेरी बेटी कैसी है? बेटा, बेटी कैसी है आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ.
2: और नेहा से मुलाकात होती है?
0: नेहा से मुलाकात नहीं हुई काफी सालों से.
2: ये ऐसे अगर मुलाकात हो तो दानी बाबा का सलाम जरूर कहना.
0: Okay.
2: कहूँगा कि पैकर है दोस्त में ये दोनों जहाँ देखती है. पैकर है दोस्त में ये दोनों जहाँ देखती है. कौन है, क्या है, मोहब्बत ये कहाँ देखती है. अरे फूल रोती है, ये कयामत का समा देखती है. आँख हर सम जो हिजरत का निशान देखती है. अरे चश्मे जाहिर तो रही, मसलहत आमेज रही. अरे चश्मे बातिन कफ कातिल पे निशान देखती है. तुम मुझे अपनी तबीयत से गिला रहता है, मुझे अपनी तबीयत से गिला रहता है. जिद पे आ जाए तो कब सूदो जया रहती है. अरे जिद पे आ जाए तो कब सूदो जया देखती है. चश्मे नम दिल से ये कहती है मुझे बहने दे. चांदनी रात में जब आबो रवा देखती है. जब भी वो आंख पक्की जुबां बोलती है. रब से कैसे अमर शो के निहां देखती है. फिर भी कहूंगा का दर्द बहुत खुदा हमको कसम खुदा की, हम भी खुदा खुदा करते. बलो जाग जानी का सब सुनने वालों को सलाम है मोहब्बत. और पंतन पाक के साए में रहे मेरी बेटी. आप जो भी मांगे सब सुनने वालों को ही बोला उनकी जो भी ख्वाहिश हो वो पूरी करें.
0: आमीन सुमा आमीन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. 03000113488

0: ritmo de los tambores.
1: Okay, next caller. Hello. Hello. Hello. Koi hai? Hello.
2: Hello.
1: Hello. Assalamu alaikum. Hello.
2: Hello.
1: Hello. Assalamu alaikum. कौन बात कर रही हैं?
2: जी सर दर्द बात कर रही हैं।
1: सर दर्द आपकी आवाज को क्या हो गया?
2: नजर लग गई।
1: नजर लग गई? किसकी लगी?
2: ठीक नहीं आ रहा।
1: अब ठीक आ रही है? अब कुछ बेटर आ रही है? मुझे बताओ, टंग ट्विस्टर से ना बोलोगी?
2: हाँ, बड़ा पीछे से।
1: रिपीट करूं?
2: हाँ एक बार।
1: ओके, परवीन ने पर्पल पर्दे पर परिंदों वाली पेंटिंग पिन कर दी।
2: परवीन ने पर्पल पर्दे पर परिंदों वाली पेंटिंग पिन कर दी।
1: यस।
2: परवीन ने पर्पल पर्दे पर परिंदों वाली पेंटिंग पिन कर दी। परवीन ने पर्पल परिंदों पेंटिंग पिन कर दी।
1: भूल गई?
2: अच्छा, एक मौका दे।
1: ओके। Very nice. और कुछ कहना है? ठीक हो गया।
2: आप लाती है
1: ये हुई ना बात, ये हुई ना मेरे लिसनर्स वाली बात।
2: आपको पता नहीं, मैंने कल नहीं परसों जब मैं ऐसी बात हुआ तो मैंने कहा कि ख्वाब देखने के लिए सोना जमीन यही
1: है ना। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या बात है सरदर्द की,
2: क्या बात है।
1: ओके जी, गुड हो गया। और कुछ कहना है? थैंक यू, अल्लाह हाफिज। स्वीट कॉलर सरदर्द। ओके जी, एक और कॉलर। हेलो।
3: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। सागर, सागर भाई।
3: जी मैं, जी जी मैं, जी
1: सागर भाई, दोबारा कॉल लगी है। टंग ट्विस्टर कहना है?
3: आपने गाना प्ले नहीं किया। मैंने
1: गाना आपका मिला नहीं है। मैंने ऑन एयर बताया भी था कि गाना मिला नहीं है।
3: नहीं बताया मैंने आपने, मुझे प्ले करा नहीं।
1: नहीं नहीं, मैंने ऑन एयर कहा था कि सागर भाई ने हमें जो गाना बोला है ना, वो मैंने सर्च किया और मुझे मिल नहीं रहा है। कोई आसान गाना सुनाया करें, आसान अच्छा सा और पाकिस्तानी। ठीक
3: अच्छा,
1: है। और जो मेक श्योर, चलिए मुश्किल गाना भी हो गा लें, लेकिन उसका फिर ये है कि टाइटल आप याद रखें, क्योंकि जो गाने की अक्सर लाइंस होती हैं उनको हम सर्च करते हैं तो वो लाइंस से सर्च करने से मिलते नहीं है जब तक कि उनका टाइटल ना लिखें हम।
3: टाइटल मैंने बताया था ना आपको?
1: नहीं, वो मिला ही नहीं ना मुझे।
3: अच्छा, नहीं मिला।
1: ओके, और कुछ कहना है?
3: जी मैं, ये टंग ट्विस्टर क्या है? टंग ट्विस्टर क्या है?
1: टंग ट्विस्टर ये है कि परवीन ने पर्पल पर्दे पर परिंदों वाली पेंटिंग पिन कर दी।
3: गा तो सुना दे।
1: गा के सुना दे।
3: मुश्किल है मैम।
1: परवीन ने पर्पल पर्दे पर परिंदों वाली पेंटिंग पिन कर दी।
3: परवीन ने पर्पल पर्पल पर्दे में
1: पर्पल पर्दे पर
3: अच्छा परवीन ने पर्पल पर्दे पर पुरानी वाली पेंटिंग कर दी।
1: हाँ, परिंदों वाली, परिंदों वाली।
3: परवीन ने पर्पल पर्दे पर
1: परवीन ने पर्पल पर्दे पर
3: परवीन ने पर्पल पर्दे पर याद नहीं आ रहा है ये बात। सुना था वाकई, रियली मैं जो बहुत पूर्व में सुना था आपको।
1: अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है,
3: याद नहीं आ रहा है।
1: चले नॉट बैड, वेरी नाइस। और कुछ कहना है?
3: नहीं बस क्या है, काम बहुत है, काम कर रहा हूँ। मैंने कहा सारी को करें कॉन्टेक्ट तो आपसे मिल गए, बहुत बड़ा कॉन्टेक्ट है मेरे लिए आपका जो है प्रोग्राम।
1: थैंक यू सो मच, बड़ी नवाजिश।
3: ओके
1: अल्लाह हाफिज जी। और ये थे स्वीट कॉलर सागर भाई। और मेरा बैकग्राउंड भी ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो चुका है और मैं ढूंढती रहती हूँ, मेरा बैकग्राउंड मुझे मिलता नहीं है। वेरी बैड। सो हियर कम्स अनदर सॉन्ग जो कि मैं प्ले करने जा रही हूँ। और मैं देख रही हूँ कि जो मैंने गाना सर्च करके रखा था वो मुझे मिल क्यों नहीं रहा है। सो गाना हम प्ले कर चुके हैं और गाना प्ले करने के बाद हम जाएंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानिब। सो आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है पूरे पूरे एक बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है।

0: It's 12:30 p.m. This sound check is brought to you by
1: Hanmade Diamond Block Bleach Cream, jo deep clean kare aur de char guna brightness. Chamak aise diamond skin jaisi. Hanmade Diamond Block Bleach Cream.
2: This program is brought to you by
3: Bankal Habib, Rishta Bharose Ka.
4: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार. सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
5: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो. सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो. अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि मशहूर व मारूफ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे. होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे. एड्रेस: सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरन. वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-9984-763.
6: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: किसाननि खे आलमी दिन पर सोना की जानिब से किसान

0: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहिरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो जीए हुजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

माइल ओएसटी सुनना चाहता है कोई? ओके ठीक है, चला देते हैं, कोई मसला नहीं है. मैं सोच रही हूँ क्या ही कॉल्स लूँ मैं. कभी कभार मेरा दिल करता है कि मैं ऐसे ही शो करती रहूँ, ना मैं कॉल्स लूँ, ना मैं मैसेजेस रीड करूँ, एंड सॉन्ग्स हों, बातें हों, कमेंट्स में आपके पढ़ती रहूँ लेकिन इंक्लूड ना करूँ. तो ऐसा कभी कोई शो रखें जिसमें सिर्फ आपको सुनना पड़ेगा. क्या कहते हैं ये लाइन चली गई यार, मेरी फेवरेट है. थोड़ा सा और पीछे से

की जी लास्ट में प्ले कर रहे हैं मन माइल ओएसटी सॉन्ग एंड द सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. और इसी के साथ फाइनली मैं लूंगी आपसे इजाजत. इंशाल्लाह मेरी आपसे अब चिटचैट होगी इस प्रोग्राम में कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद द सेम आरजे. सुनना मत भूलिएगा, जिंदगी गुजार है. और शाम को 4 से लेकर 5 बजे तक एक घंटे वाली ट्रांसमिशन, वो भी सुनना मत भूलिएगा. ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. So this is me, RJ Ruksaar, signs out. Take care, goodbye. Amani Khuda, Allah Hafiz.

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: It's 1 PM. This time check is brought to you by
3: Michael Habib, रिश्ता भरोसे का।
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में, आप लोग इसीलिए सोचना शुरू करते हैं, इसीलिए अभी तक वहीं पे बैठे हैं। 15 साल से मैंने तुम लोगों की हैवी मारी हुई है। अब पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंची मैं पिंची को पकड़ूंगा, मैं पिंची को पकड़ूंगा। तौबा तौबा, कोई हाल नहीं है तुम्हें।
1: पेरेंडी कुकिन क्वीन पिंकी के शाही प्रोटोकॉल इनर कराची पुलिस जो बेडी फुट थियो मदशात फरोश अनमोल पिंकी जो रिमांड हासिल करे वरतो। कराची पुलिस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन रखण जे अदालत में पिंकी के जेल मोकलण वारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट जे फैसले के चैलेंज कयो। अदालत दरख्वास्त मंजूर कंदे कुकिन क्वीन पिंकी के 3 ॾींहनि जे रिमांड ते पुलिस हवाले कयो वियो आहे। डीआईजी ॾखण चयो आहे त पिंकी जो रिमांड मिली वियो आहे। पिंकीअ मथां माज़ी में दाख़िल केसनि जा तफ़सील बगैर करे वरिता आहिनि। गुज़िरियल ॾींहुं पुलिस पिंकीअ खे बिना हथकड़नि जे अदालत में पेश कयो हो। कुकेन कोइन इनमोल उर्फ पिंकी जो वधीक हिकु आडियो साम्हूं अची वियो। गिरफ़्तारी बाद कयल आडियो में पिंकी जो ख़रीदारनि खे सिलसिलो जारी रहण जो पैगाम ॾेई रही आहे। पिंकी मंशात ख़रीदारनि खे राब्ते लाइ नंबर बि ॾेई छॾियो आहे। आडियो में पिंकी मंशात वठंदड़नि खे गिरफ़्तारी बाबति आगाही ॾींदे चई रही आहे त जेकॾहिं मूंखे कुझु थिए थो त हिन ई नंबर तां मुंहिंजो दोस्त तव्हां सां राब्ते में ईंदो, जेको हिन कम खे संभालींदो। हिन ई नंबर तां कमु हलंदो रहंदो। गुज़िरियल लीक थियल आडियो में जवाबदार पिंकी चई रही हुई त जवाना माण्हुनि जो अकल गोॾनि में आहे, 8-9 साल मुंहिंजे पुठियां लॻा रहो था, रिटायर थी वञो था पर पकड़े नथा सघो।

एडिशनल आईजी कराची आजाद खान कुकिन कोइन अनमोल और पिंकी की गिरफ्तारी अदालत में पेशी बाबत मामलों की जांच लाए कमेटियों जोड़े छड़ियों मजमुई जांच डीआईजी उल्लाह इरफान बलोच कंदो पिंकी की गिरफ्तारी अदालती पेशी बाबत जांच डीआईजी असद रजा कंदो पिंकी खान जांच कंदड़ जांच पुलिस बाबत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के नतीजे में मुबैना हेरा फेरी ए पैं नवाजी खिलाफ इम्तिहान पास कंदड़ शागिर्दन सियासी सवाई धुरन जो कमीशन गेट आदो धरणो कमीशन इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी साल 2024 के चटाभेटी इम्तिहान जारी कल नतीजा रद्द इम्तिहान की शफाफ जांच कराने जो मुतालबो

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के अमरीका की एकवंजे रियासत करार दे छो। सदर ट्रंप वेनेजुएला के अमरीकी एकवंजे रियासत तौर नक्शो समाजी वेबसाइट से जारी कर छो। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड ए कैनेडा के अमरीकी रियासत बनाने का भी बयान दई चुको है। ईरान अमरीकी सदर जो चिड़ डियारींदड़ बयान ए धमकियों के मुआदे में वही रंड करार दई छो। ईरानी परे वजीर अब्बास इराकजी है तो अबना हुरमस की मौजूदा सूरत हाल ईरान से अमरीकी ए इसराइली हमले के करे है। तेहरान आबना हुरमस बाबत कानून से मुशावरत कर रो है। चीनी परदेही वजीर वांग जी जो नायब वजीर आजम इसहाक डार से फोन से राबतो। ईरान अमरीका जंग के खात्मे लाए कोशिशों तेज करने ते जोर। चीनी परदेही वजीर पारा ईरान अमरीका गारन में सहूलत फराम कर जंगबंदी लाए सहूलत फराम करने वाले पाकिस्तानी किरदार की सारा। चीनी परदेही वजीर चो तो पाकिस्तान अपने हुरमत बाबत मामला हल करने लाए भी किरदार अदा करे। इसहाक डार साथी वाली कोशिशों की हिमायत करण से चीन जहा थोरा मंजे चो तो पाकिस्तान अमन अमन वाली कोशिशों जारी रखा।

एस एफ प्रोग्राम तहत स्टेट बैंक जे अकाउंट में 1.3 अरब डॉलर मिलिया आहिनि। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड 8 मई ते 3 किस्त मंतकिल करण जी मंज़ूरी ॾिनी हुई। स्टेट बैंक मौजूदु 12 मई 2026 ते IMF तर्फ़ां मजमूई तौर ते 914 मिलियन SDR मिली विया आहिनि।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
3: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
4: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूरु व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरार होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल की तकलीफ, अध मथे जो सूर, अखियन की खारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हें सभी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज किया वेंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 5 वगे ताई, बरोज जुम्मू मोकल आहे। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरण। वधिक मशोरे ऐं राबते जे लाइ 0327-99-84-763।
5: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

الوريد وطن آوينداس مارون سام لنداس ایک کوٹھیوں چھڑے

कुरन में वरथा वेण सहल ऊजे हक भंजन से सचू की सूमरा ओ जय सती सत न छदियो उहा मारुई मर जाई अचे उमर कोट में जहलोई न ले जाई जासा

जीअं शल तड़ी वञा तन ॾे लालाईअ जो लतीफ़ चए कर ॿुधन उठा मींहं मारीअ लॻुमि मेरो सभ जमा दर सीअं खेसि सायारी कांध जी हुतां अचे तीअं कंधु खणंदसि कीअं अॻियां मन मारूं अॾनि जे अलो Ooh, ooh, ooh, ooh.

0: 88.88 सिंध की आवाज़।
1: This program is brought to you by
2: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।

तुम्हारी उम्मीद तो मौजूदों की बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद तो मौजूदों की बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सुनिए अब दंदर सभी समातों से मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। दो के संबंध है सातों के बारे खुलासवल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात नींद से जाकर कमी से आसमान तक जिंदगी से मौत तक से तारतों कम से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे तो आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल जनाब आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेट पर, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मांथली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल सलाम व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो में आप लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद किया जाता है और कहा जाता है। साथ साथ यहाँ पर प्रोग्राम है जनाब व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, ये आप लोगों तक पहुँचा जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बातें होंगी और साथ साथ डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो बहुत ही मजेदार और बहुत ही शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में आप इस्तेमाल करेंगे जानेंगे तो, और जनाब इस्तेमाल क्यों करेंगे ये मैं आप लोगों को बताऊंगी और साथ ही साथ क्या ऐसी बातें हैं जो कि आप लोगों को ऐसा दिल करेगा कि भाई हाँ हमें लगाने चाहिए। तो बिल्कुल जी लगाइए, जरूर लगाइए, शौक से लगाइए, मोहब्बत से लगाइए, प्यार से लगाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए तो है। ओके जी बिल्कुल आपको बताएंगे कि क्या तरीकेकार होंगे और क्यों आप इस्तेमाल करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं तो उन तमाम लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ये मेरी आवाज जहाँ जहाँ तक भी जा रही है जितने सारे लोग हमारे साथ मौजूद उन तमाम लोगों के जरा हाल चाल भी जान लेते हैं। सो डियर लिसनर्स अंतक की हालत कैसे है आपकी हालत, उम्मीद है शदीदन की बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ली हैं। आपको पता नहीं जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी पूरी तीन बजे तक। बिल्कुल जी पूरी तीन बजे तक मैं आप लोगों के साथ मौजूद रहने वाली हूँ, तो आप भी मेरे साथ मौजूद रहिए, प्रोग्राम में फन करेंगे, बातें होंगी, म्यूजिक होगा और बहुत सारी ऐसी बातें जो कि आप चाहते हैं प्रोग्राम के अंदर शामिल हो। ओके जी इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे थे, ऐसी बहुत सारी अंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। सो भाई अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, आपकी होंठों पर 440 वोल्ट की समा लाने का काम करती हुई आपकी सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 वोल्ट की समा लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं, आगे से प्रोग्राम करते हैं जी एक बहुत प्यारे से कलाम के साथ। कलाम सुनते हैं उसके बाद ना हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। सो प्रोग्राम व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते जाइए, खूबसूरत होते जाइए और खूबसूरती को खेलो।

0: ऐसी गर्मी में शादी अटेंड करना या फिर शादी का इनविटेशन मिलना, ये आप लोगों के रिश्तेदारों की तरफ से आप लोगों को पनिशमेंट होती है या फिर उनकी तरफ से आप लोगों के लिए प्यार होता है? इस तरह की गर्मियों में अगर वो शादी कर रहे हैं और आप लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं, तो ये क्या आप लोगों के लिए पनिशमेंट होगी या फिर आप लोगों के लिए प्यार होगा, बताइए जरा। सूरतों में जो है ना वो फंसते तो आप ही लोग हैं। तो बिल्कुल जी, इस गर्मियों में अगर लोग शादियां कर रहे हैं और साथ साथ अगर आप ये चाह रहे हैं कि शादियां जब है तो जाहिर सी बात है हम जो है ना वो तैयार तो होकर ही जाते हैं, मेकअप शेकअप तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन गर्मियों का हाल देखकर फिर हम ये सोचते हैं कि नहीं, मेकअप का तो जो ना वो हमसे मत बोलिए। तो आप ऐसा करें कि मेकअप को जो ना वो जरा साइड पर रखिए, आप व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इंतखाब कर सकते हैं। जब आप व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इंतखाब करेंगे और आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तो आप लोगों की स्किन जो है ना वो ग्लोइंग होती जाएगी, प्रकाशित होती जाएगी, ब्यूटीफुल होती जाएगी और आप लोगों को मेकअप की नीड ही नहीं पड़ेगी। तो अगर आपके रिलेटिव्स भी ऐसी गर्मियों में शादियां कर रहे हैं या फिर आपको इनवाइट कर रहे हैं, तो आप लोगों ने इस चीज का तोड़ तो निकाल लिया है कि आपने मेकअप नहीं लगाना, तो फिर आप ठीक है, अच्छी बात है। व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके खुद को बचा सकते हैं। लेकिन मुझे बताएं कि ऐसी गर्मियों में अगर आपके भी रिलेटिव से शादियां कर रहे हैं, आपको इनवाइट कर रहे हैं, तो मुझे बताएं ये आप लोगों के लिए पनिशमेंट हुई या फिर उनकी तरफ से आप लोगों के लिए प्यार है, बताएं जल्दी से। और इसी के साथ साथ आप हमें 888-1 पर ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल जी, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LR के इंग्लिश पास दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 888-1 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जी लाड़काना FM 88.8 पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो जी लाड़काना FM 88.8 के पेज पर आप आएंगे और आप क्या करेंगे, पोस्ट को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। बिल्कुल, ये तीनों काम लाजमी कीजिएगा, हर एक एक बंदा पोस्ट को लाइक करे, कमेंट करे और शेयर करे। तो शेयरिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा किया करे, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है। जल्दी से अपने दोस्तों को भी मेंशन कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि भाई जान मार्केट में व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। तो आ चुके हैं, जाहिर सी बात है, तो आप भी लगाइए, सबको बताइए और सारे लोग ही खूबसूरत हो जाइए। ओके जी, और इसी के साथ साथ टॉपिक को फॉलो करते जा रहे हैं और टॉपिक के ऊपर आप मजीद बहुत ज्यादा वाली बातें कर सकते हैं और साथ साथ यहाँ पर आप लोगों के फीडबैक से चुके हम जाहिर सी बात है प्रोग्राम में एड करते हैं। और यहाँ पर अगर आप हमें कॉमेंट कर रहे हैं तो भाई जान आपको वेलकम है। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले नूरिस एंटोनियो भाई, प्रोग्राम में आप हमें बदीन से सुन रहे हैं। गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, लव ब्लेस यू विद द बेस्ट विशेस, टेक केयर, अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे, आमीन जी। और नजीर खोसो हमें सुन रहे हैं बलूचिस्तान से, वेलकम जी। और उसके अलावा नूरिस एंटोनियो भाई, आपने हमें ज्वाइन किया है, गाने की फरमाइश करते हैं, बहुत शुक्रिया। और उसके अलावा चाचा खालिद झूनी जो हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम चाचा, चाला खुश आयो। आदिल हुसैन क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? कहते हैं कि कभी ख्वाबों की ताबीर नहीं होती मगर वो हमें जीना सिखा देते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और साथ साथ हिदायतुल्लाह अहमदानी आप भी हमारे साथ मौजूद है, वेलकम कहते हैं। इकबाल आशारी हमें सुन रहे हैं, वेलकम जी। और हिदायतुल्लाह कहते हैं कि मेरा तो कुछ भी नहीं, देख आज मैं भी तेरा है। बिल्कुल जी, सब मेरा बल्कि तेरा। और चाचा खालिद कहते हैं गर्मियों में लोग स्टे नहीं करते तो घर वालों की जान छूट जाती है जल्दी मेहमानों से, हाँ, और खाना भी कम खाते लोग, ये बात भी जरा ऐड कीजिए अपनी डायरी में। ओके जी, इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है ना कश्यप हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, वालेकुम अस्सलाम, कहती हैं कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, गुड आफ्टरनून सोनी छोकरी, खुश था आही अज लाजमी निगत, बिल्कुल माना सोचे बैठी आंदा निगत अज लाजमी हलाई दास। और ये इनम कहती हैं कि मेरी प्यारी दिलबर दोस्त जानी सिदरा, कंबर सिटी में व्हाइट एश ब्यूटी के प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे, कंबर में भी आप अवेलेबल करा दें। बिल्कुल जी, अवेलेबल कराते हैं आपके कहने के ऊपर। और कहती हैं आप भी प्लीज फायजा का गाना तो लगाएं, फायजा का गाना भी लगाते हैं जी, बियो हुकुम कयो। और उन खां अलावा तमाम बिल्कुल मूसा गड मौजूद रहो प्रोग्राम में, तुम्हारा जो असो साथ जो आए वो पूरे 3 बजे ताई जो आए, तुम्हारा टॉपिक ही फॉलो करो, इतने मां वठा दी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक हम पर जल्दी वापसी, तुम्हारी मोटी नम तमाम करी नमन जो इतने बैठा हो जो सफा इतने बैठा हो जो मां ओ ही वनी ओ ही मोटा थी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। हाँ जी जनाब, व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट, सुनते रहिए, इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत होते जाइए।
1: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
2: फातिह मेहरान, सिंध की एक और पहचान,
1: DAFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: It's 1:30 p.m. This time check is brought to you by
4: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram, ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
5: Kisano ke aalmi din par sona ki janib se kisano ko khiraj paise.
6: This program is brought to you by
7: Jadeh maa paanjo khyal rakhandi aahe ta sehat nasalan tain halandi aahe Hii pegaam Kash Foundation and Canadian Government je tarfaan pesh kayo vayo
5: Kisano ke aalmi din par Sona ki janib se kisano ko

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि मशहूर व मारूफ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे, पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी व मादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस: सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज,
4: GAFM 88
3: नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज़।

फ्री फेस वॉश है जो कि आपको इजीली कहीं से भी मिल सकता है. आपके चेहरे के डार्क स्पॉट्स हो उनको रिमूव करता है, आपके चेहरे की स्किन को ग्लोइंग बनाता है, आपके चेहरे की स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है, आपके चेहरे को जो है ना वो बहुत ज्यादा कुल मिलाकर खूबसूरत बना देता है. तो बिल्कुल से ग्लोइंग और ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कीजिए, साथ में डी स्किन का फेस वॉश भी लगाते रहिए. ओके जनाब, ये तमाम तरह प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, आप लोगों के चेहरे की हिफाजत करते हैं और आप लोगों को खूबसूरत बनाने के साथ साथ जो है ना आप लोगों को ये भी पता चलता है कि आपने जो है ना इतने सारे पहले प्रोडक्ट्स लगा लिए हैं लेकिन असल जो प्रोडक्ट्स है ना वो इस तरह के होने चाहिए जो आपके चेहरे के तरह से तैयारशुदा हो, यानी कि अगर आपकी स्किन किसी भी टोन की तो उस तरह के प्रोडक्ट्स होने चाहिए आपके पास. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम है या फिर डी स्किन का फेस वॉश है, ये ऑल स्किन टाइप के लिए अवेलेबल है. तो ऑल स्किन टाइप लोग इन्हें इस्तेमाल करेंगे और लड़के लड़कियां सभी लगा सकते हैं. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये एक नाइट क्रीम है, इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा और उसके साथ साथ जो है इस्तेमाल करने से पहले फेस वॉश लाजमी कीजिएगा. ये थोड़ी सी बातें होती हैं, अहम बातें होती हैं जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते. अगर आप इग्नोर करेंगे तो भाई आप लोगों को खूबसूरती नहीं मिलेगी. तो इन तमाम चीजों के ऊपर ध्यान दिया करें, इन चीजों को फॉलो किया करें, तभी आप लोगों को परफेक्ट वाले निखार मिल सकते हैं. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से आपको दो रातों के इस्तेमाल से जो ना आपको खूबसूरत सा निखार मिल जाता है, दो रातों के इस्तेमाल से आपको गारंटी के साथ साथ रिजल्ट्स मिल रहे हैं. तो आप ट्राई करके देखिए, खूबसूरती आपके साथ साथ होगी. और साथ ही साथ हाँ जी, आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, बिल्कुल आपके फीडबैक समय मिलते जा रहे हैं. आप हमें ज्वाइन करते जाइए और अपने प्यारे प्यारे फीडबैक समय सेंड करते जाइए और साथ साथ आप कहाँ से हमें सुन रहे हैं ये भी मुझे बताते जाइए और फेसबुक वाले लोग पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते जाइए. ओके, सो मैंने आज जो है ना आप लोगों से सवाल पूछ लिया है कि आप मुझे बताएं कि ऐसी गर्मी में शादी अटेंड करना आप लोगों के लिए पनिशमेंट है या फिर आप लोगों के रिलेटिव्स की जानिब से आप लोगों के लिए प्यार. कई मरतबा ऐसा हो जाता है कि हम ये सोच रहे होते हैं कि एड़ी मौसम में मानू अगर शादियों कराया था जो रीजन चाहे जो रीजन असांखे डिडियां नहीं खबर ना पयो लगी तो अगी तेवी खबर न पंदो तो ता मके बुझायो त या असा मानन च लाए पनिशमेंट हुंदी आ या वरी उनन मानो जो प्यार हुंदा जे असांखे एडी गर्मी में शादी इनवाइट करना है. ओके जी, सो बिल्कुल तमा ने टॉपिक के फॉलो करी सको था ए तमा 8881 ते ए फेसबुक ते असांखे ज्वाइन करे सको था. तो जेके फेसबुक वाला मानु एंड पोस्ट के ज्यादा खा ज्यादा तमा शेयर करना हलो और नंबर डायल करना जनाब 03157990595 नंबर डायल कयो पाए करीबी जनरल स्टोर्स से तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल करायो जी तमाम वट भी इजीली मिली वने ये सारा प्रोडक्ट जेके मां प्रोग्राम में बुधाया पर. तो व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो आहे, व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स तमाम आता ही पहुंचायो वने पर तमाम से गए मां वहां से गए पूरी पूरी 3 बजे तक.

आज ही तव्हांजी हुकुम जी दावेदार ये हमारे साथ मौजूद हैं जनाब यासीन गुटाड़ो भाई सक्रेंट से कहते अल्हम्दुलिल्लाह अवां बुझायो खुश आयो जबरदस्त प्रोग्राम आई तवां जो मोहब्बतूं प्यारे भाजू आई मां भी सफा ठीक आया मजे में आया तवां जी दुआ सा उस्ताद सिकंदर माशी हमारे साथ हैं मोरो से कहते आप ही सॉन्ग जरा चांडियों का सुनाइएगा गरीबा बासी आप हमारे साथ मौजूद है वेलकम करते हैं प्यारे भाई को और चाचा खालिद आप हमारे साथ मौजूद है वेलकम जी रोट नबी दाद बमरू नारो खा इमाम डेनो बमरू हमारे साथ कहते अधिक खुश आयो प्लीज प्ले निगतनाज अज जरूरी नहीं तवां सुकून से वेड़ो पानी सीट ते और ये मौजूद मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर के थे अस्सलाम वालेकुम बाजी व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है टॉपिक गर्मियों में बिस्तरों की जरूरत नहीं पड़ती सॉन्ग सुनाए फायजा अली का चले मतलब हाँ हर किसी के ऐसा है ना कि हर कोई अपनी सहूलत के मुताबिक ही शादियां कर रहा होता है तो गर्मियों का ये भी एक है कि गर्मियों में ना बिस्तरे भी नहीं नीड पड़ती ज्यादा और सर्दियों में तो हर किसी को बिस्तरा चाहिए होता है ये भी सही बात है और इसके अलावा इरम कहती है कि सिजानी मेरी दूसरी ओके जी ओके ठीक है।

भाई साहब को ज्यादा हो गया. ओके जी, हमारे साथ ही मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी वेंसडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सुप्रा मुस्कान. कैसी हो डियर? मैं ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं. और कहती हैं कि टॉपिक प्यार है बाबा प्यार. सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड ऑल स्वीट सिस्टर्स. ओके डियर सिस्टर, मेरी शादी तो सर्दी में हुई थी, बट हम अपने भाई को बोलते हैं कि गर्मी में शादी कर लो ताकि मेहमान गर्मी का मजा भी ले सके. डाडी सज्जना तू माय ट्रेंजी. और कहती ओके सिस्टर. अच्छा, ये हमारे साथ फजीला सिंधी मौजूद है. क्या बात है फजीला. और कहती है, ये सवाल आपसे भी है कि स्वीटी आप किस मौसम में शादी करना चाहेंगी. भाई जाहिर सी बात है, सर्दियों में शादी करना जो है ना वो एक अच्छा साबित होता है. मतलब मानो सुकून ऐसा खाई पी सगन, लेकर वो करी सगन, भला लटा पाए सगन. गर्मी में तो बाबा कुछ भी ना है.

Sayma. Ja da treki ja. बिल्कुल सुना प्रोग्राम व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। सो आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इस्तेमाल करने के बारे में सोचा, ये भी जरा मुझे बताइए। और ये हमारे साथ मौजूद है

अच्छा चाचा खालिद कह रहे हैं हमारे लिए पनिशमेंट होगी गर्मियों में, योर टॉपिक आंसर ओके जी। हिदायतुल्लाह कहते हैं कि हां जी सिद्रा, आज शादी थी हमारे रिश्तेदारों की शादी थी, लेकिन घर वाले गए लेकिन मैं नहीं गया, इतनी गर्मी है तो मैं घर पर ही तनहा बैठा हूँ। इहा ही हकीकत आ, अगर गर्मियुनि में तव्हांखे शादी जो सॾु मिलंदो आहे न, पोइ माण्हू इहे सोचींदो आहे बाबा छॾे हाणे शादी में कहिड़े वेंदो, मानी त वेसे ई थोरी खाईंदासीं।

0: बिल्कुल जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। मोहम्मद साले लगारी हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद साले भाई, आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहते हैं। और उसके अलावा हिदायतुल्ला, आपका भी बहुत शुक्रिया। दर्द दिल आ चुकी हैं स्वीटी। वालेकुम अस्सलाम। कहती हैं कि मुझे ये नहीं पता कि मैं एक बेहतरीन दोस्त हूँ या नहीं, लेकिन मुझे ये पूरा यकीन है जो मेरा दोस्त है वो सबसे बेहतरीन है। ओ या कही ना भली गाल। नूरसन तो भाई भी लिखते हैं कि हाँ बदीन में टॉपिक, अच्छा बदीन से आप हमें सुन रहे, कहते टॉपिक गर्मी में लोग खाना कम खाते हैं इसलिए एज अ पनिशमेंट हम कह सकते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। सनोला बिरोई भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। बरकत रमदानी जमाली बलोच हमारे साथ मौजूद है बलोचिस्तान से, वेलकम जी। और फरहान अहमद खोखर हमारे साथ मौजूद है, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। और हैं जी अहमद हालार, वेलकम। अच्छा मुलाजिम भाई हमारे साथ मौजूद है, वेलकम। सारे लोग जो है ना वो पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें, ठीक है, अपने दोस्तों को भी मेंशन कर दिया करें ताकि आपके दोस्त भी सुने और वो भी जाने कि वाइट एज ब्यूटी क्रीम या फिर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के फायदे जो है उनको भी मिलने चाहिए ताकि वो भी खूबसूरत हो जाए। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को मैं बता रही थी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों की खूबसूरती बढ़ती है। और आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट है जनाब कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर आप अच्छे से जानते हैं ये विटामिन ई बीड्स मौजूद है जो कि आप लोगों की स्किन को जो है ना अंदर तक जाकर आपकी स्किन को खूबसूरती देते हैं। और उसके साथ साथ माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन के साथ तैयारशुदा होने वाला ये प्रोडक्ट है। बहुत ही जनाब प्रोडक्ट हीगा, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि कितना सुपर डुपर प्रोडक्ट है। और साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी खूबसूरती को मजीद बढ़ा सकते हैं। तो इस्तेमाल करती रहिए और डायल करती रहिए 03-15-799-0595। अच्छा ये हमारे साथ मौजूद है, हेलो अदी जी, शिकारपुर आया हूँ शादी में, गर्मियों की शादी सजा है मजबूरी वाली, इंजॉय क्या हालत है। यही बात है, मैं जहाँ देख रही हूँ वहाँ शादियाँ हो रही हैं, जब जैसे गर्मियाँ बढ़ती जा रही वैसे लोग शादियाँ कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये आज मैं जरा आप लोगों से सवाल पूछ लूँ। देखिए मुझे पता चलता जा रहा है कि भाई ये सिर्फ असा साज आ रहा है, ये सभी साज आ रहा है। तो बिल्कुल जी इंजॉय कयो गर्मियुनि जूं शादियूं, ऐं वरी तव्हां बि हुननि सां इहा सज़ा हुननि खे ॾिजो, तव्हां बि शादी जेको आहे न गर्मियुनि में कजो, तव्हां जा बि कुझु ख़र्च बची वेंदा। और यहां पर जो है टाइम हो जाता है जरा हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाने लगे, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले, तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, आप हमारे साथ मौजूद रहिए, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। प्रोग्राम है जनाब व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो।
1: It's 2 PM. This time check is brought to you by.
2: जड़े माँ पांजो ख्याल रखन्दी आहे, तो सेहत नस्लन ताई हलन्दी आहे। ही पेगाम कश फाउंडेशन आए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वयो।
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: अफगान तालिबान भारत जी प्राकसी बन जी विया हैं, काबिल दहशतगर्द सरपरस्ती खत्म करण जी ज़मानत देने तैयार बना है। कौमी असेंबली में गालाइंदे दिफा वाले वजीर ख्वाजा आसिफ चयो है अफगानिस्तान असां गालन में सऊदी अरब कतर ए तुर्किया भी असांजो साथ दिनो, काबिल दहशतगर्दी रोकण बाबत भी खातिरी करण लाइ तैयार ना है। दहशतगर्दी खिलाफ़ वेड़ में डिघे अरसे ताईं KPK हुकूमत जो भी सहकार हासिल न हो हाणे आहे।

असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में, आप लोग इसीलिए सोचना शुरू करते हैं, इसीलिए अभी तक वहीं पे बैठे हैं। 15 साल से मैंने तुम लोगों की हैवी मारी हुई है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हो मुंह उठा के, पिंकी मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। तौबा तौबा।

0: 非常牛逼。
1: पहरी डी कोकेन कोइन पिंकी के शाही प्रोटोकॉल इंदर कराची पुलिस जो बेरी फुर्तियों मनचाद फ्रोश अनमोल और पिंकी जो मजमुई जांच डीआईजी ओला इरफान बलोच कंदो पिंकी की गिरफ्तारी अदालती पेशे बाबत जांच डीआईजी असद रजा कंदो पिंकी का जांच कंदड़ जांच पुलिस बाबत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के नतीजन में मुबैना हेरा फेरी पैंजा नवाजी खिलाफ इम्तिहान पास कर शागिर्द सियासी समय धुरन जो कमीशन के गेट आडो धरणो कमीशन इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी साल 2024 के चटाभेटी इम्तिहान जा जारी कल नतीजा रद्द इम्तिहान की शफाफ जांच कराने जो मुतालबो अमरीकी सदर ट्रंप वेंजुएला के अमरीका की 51वीं रियासत करार दे छो सदर ट्रंप वेंजुएला के अमरीकी 51वीं रियासत तौर नक्शो समाजी वेबसाइट से जारी कर छो डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड कैनेडा के अमरीकी रियासत बनाने का भी बयान दे चुको है ईरान अमरीकी सदर रिचर्ड याईंदड़ बयान ए धमकियों के मुआहदे में वही रंड करार दे छो ईरानी परदेही वजीर अब्बास राखजी चवाए तो अबना हुरमज की मौजूदा सूरत ईरान से अमरीकी इसराइली हमले के करे आए तो ईरान अबना हुरमज बाबत कानूनन से मुशावरत कर रो है चीनी पड़ी वजीर वांग यी जो नायब वजीर अजम इसाक डार से फोन से राबतो ईरानी अमरीका जंग के खात्मे लाए कोशिशों तेज करने ते जोर भर चीनी पड़ी वजीर पारा ईरान अमरीका गारन में सहूलत फराम करने जंग मदी ला सहूलत फराम करने वाले चीन चो तो पाकिस्तान अपने हुरमज बाबत मामला हल करने लाइ किरदार अदा करे इसाक डार सालसी वाली कोशिशों की हिमायत करने चीन जहा थोरा मंझे चो तो पाकिस्तान अमन वाली कोशिशों जारी रख पाकिस्तान के आईएमएफ का एक दाई टे अरब डॉलर की टी किस्त मिली वही स्टेट बैंक पारा तस्दीक स्टेट बैंक पधराई में चाहे तो आईएमएफ का एएफएफआई आरएसएफ प्रोग्राम तहत स्टेट बैंक के अकाउंट में एक दाई टे अरब डॉलर मिलिया आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड 8 मई से टी किस्त मुंतकिल करने की मंजूरी दिनी हुई वडे वजीर कराची के बुनियादी ढांचे की बेहतरी लाए 10 अरब रुपये का रकम की मंजूरी दई छी वडे वजीर सदारत हेठ थियल कराची की तरक्याती स्कीम बाबत इजलास थो रोडन की बहाली ट्रांसपोर्ट निजाम समेत 10 मेगा प्रोजेक्ट्स जो जायजो वरतो वो वडे वजीर कराची का तरक्याती मनसूबा वक्त सिर मुकम्मल करण की हिदायत कदे चो तो नाकस अमन में देर मुख बिल्कुल बर्दाश्त न कई वी ट्रैफिक वाले मसलन के हल लाए मनसूबाबंदी जरूरी है दादू के दलित मुबैना मुकाबले में माजी वल नादर जमाली वाले केस में वारसन की दरख्वास्त रद्द कर छी वारसन पारा फैसलो हाईकोर्ट में चैलेंज करने जो ऐलान अदालत चयो तो वाक़े बाबत अग एफआईआर दाखिल है एक वाक़े बाबत ब एफआईआरू न थियो थी सकन सकरन भरसा मुड़स गोटा डे जाल के कत्ल कर छो गोट शाह मोहम्मद कच्छिया में जवाबदार शौकत कच्छी जाल यासमीन समीना के कत्ल कयो नारी के वारसन जवाबदार के पकड़े पुलिस हवाले कयो जांच जो मुतालबो जवाबदार शौकत कच्छी जो तलाक करण ता जाल के कत्ल करण जवाबदार का वधिक जांच जरवार भरसा यारोड़ के खानगी अस्पताल में नौजवान जो गोली लगल लाश हथ डॉक्टर गुलाम अली लोन के अस्पताल में कम कर नौजवान फहीम अली लोन जो लाश मिलो पुलिस मूजिब डॉक्टर गुलाम अली लोन जो नौजवान फहीम लोन पान में वेझा अजीज हैं फहीम लोन गढ़ी खेरो जो वासी है मामले की जांच जारी है नाजरीन सनवासी टिकटॉकर नौजवान जो जाम शुरू में फाहो लगल लाश हथ नौजवान शोएब जो लाश गरीबाबाद कॉलोनी के घर मिलो वारसन पारा वाक्य आबकात करार

0: हाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए होजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
3: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनमी मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखिन जी खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हन सभी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज कयो विंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 5 वगे ताई बरोज जुमू मोकल आहे। एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरन। वधिक मशोरे ऐं जे लाइ 0327-99-84-760।
4: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहां वहां GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: Network, Sindh ki awaaz.
1: This program is brought to you by
2: Jadeh maa panjo khayal rakhan diya hai ta sehat naslan tai halan diya hai hi pegam kash foundation and canadian government je tarfa pesh kayo vayo
3: wapas aa chuke hain dobara se aap logo ke paas aur aap sun rahe hain GFM 88 network जी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सगरन मेहरापुर मातली और जनाब लारकाना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो. व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो में आप तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है. बिल्कुल जी खुश आमदीद. और इसी के साथ साथ प्रोग्राम आप लोगों तक पहुँचा जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट के तावन से. ओके सो मैंने पहले जो है ना आप लोगों को जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया ना, तो अभी जरा मैं आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी और साथ ही साथ जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद भी कहेंगे. सो अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो जनाब ये ऑल स्किन टाइप के लिए है और आप लोगों की स्किन को बड़ा स्किन को जो ना ब्यूटीफुल बनाने के लिए. और अगर आप लड़के हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं, लड़के भी लगा सकते हैं, लड़कों के लिए भी है. और अगर गर्मियों का सीजन आ ही चुका है इतना ज्यादा जोरों शोरों से, तो ये वाली बात भी है कि जब गर्मियों का सीजन आता है तो आपके चेहरे पर एक्नी भी लाता है, ये बात बिल्कुल है. तो जिन लोगों के चेहरे पर एक्नी का प्रॉब्लम है ना, एक्नी का मसला है जो कि बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है और एक्नी को आप जितना कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो हो नहीं पाता. तो अगर आपके चेहरे पर भी एक्नी है और बहुत ज्यादा वाले एक्नी है तो आपने क्या करना है, आपने डॉक्टर पिंपल नाम से जो है ना व्हाइट एज का ये एक्नी क्लियर ट्यूब आता है, डॉक्टर पिंपल नाम से अगर आप जाकर परचेज करेंगे तो आपको इजीली कहीं से भी मिल सकता है. अगर नहीं मिलता तो जो नंबर बताती है उसके ऊपर रब्ता कीजिएगा. तो डॉक्टर पिंपल का जो ये ट्यूब है ना एक्नी क्लियर वाला ट्यूब, ये आपने इस्तेमाल करना है क्योंकि ये आयुर्वेदिक फार्मूला है और अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके चेहरे पर जितने भी निशान आते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं. और पाकिस्तान में पहली मरतबा जो है ना ऐसा कोई एक ट्यूब तैयार किया गया है जो आपके हर दानों को देखते हुए तैयार किया गया है. क्योंकि लोगों के जो दाने होते हैं ना वो कुछ लोगों के बहुत ज्यादा अजीब से होते हैं, आप देख रहे होते हैं तो ये कहते हैं कि भाई ये एक्नी है या ये कुछ और चीज है, क्योंकि हम कई मरतबा समझ भी नहीं पाते. क्योंकि अगर आपकी स्किन जो है ना वो जिस तरह की स्किन होती ना अगर उस तरह पर दाने निकल आते हैं तो ये आप समझ भी नहीं पाते हैं और आपको जो चीज यानी कि जेको डस्ट मानू ॾींदा आहिनि उहो चीज तव्हां इस्तेमालु करणु शुरू कंदा आहियो. तो ये न कयो बाबा, पंहिंजी स्किन ते एहसान कयो ऐं तव्हां जेको आहे न डॉक्टर पिंपल जो ही ट्यूब इस्तेमालु कयो. एक्नी क्लियर ट्यूब आहे, एंटी एक्नी क्लियर ट्यूब आहे, आयुर्वेदिक फार्मूले सां तयार थियल आहे. तव्हांजे चेहरे जा एक्नी ख़तम थी वेंदा, तव्हांजे चेहरे ते ख़ूबसूरती अची वेंदी ऐं तव्हांजी स्किन ते जेके एक्नी जा निशान हूंदा आहिनि उहे बि ख़तम थींदा. कट जो निशान आहे, सड़न जो निशान आहे, उहे सभु निशान ख़तम थी वेंदा ऐं तव्हांजी स्किन क्लियर थी वेंदी, बिल्कुल जनाब क्लियर थी वेंदी. तो डॉक्टर पिंपल जो ही ट्यूब तव्हां लाज़मी ट्राई करे जो छोकरा छोकरियूं सभु लॻाईंदा. इस्तेमालु करण तरीक़ो जेको आहे न बिल्कुल आसान आहे, तव्हां राति जे टाइम इस्तेमालु कयो जेको ईज़ी तरीक़ो रहे. तो ॾींहं जो लॻाइणु चाहियो त बिल्कुलु लॻाए सघो था, पर राति जो लॻाए मुनासिब टाइम हूंदो आहे. राति जो तव्हां ईअं लॻायो जो पंहिंजो फेस वॉश कयो, हथनि खे बि अछे तरीक़े सां साफ़ कयो, उन खां पोइ तव्हां डॉक्टर पिंपल जो ही जेको ट्यूब आहे उहो पंहिंजे एक्नी जिते जिते एक्नी आहिनि उते उते लॻायो, जिते निशान आहिनि उते उते लॻायो, जिते सड़न जो निशान आहे, कट जो निशान आहे, उते तव्हां लॻाए मुनासिब जॻह ते. पोइ तव्हां जेको आहे न सुकून सां सुम्ही पओ, सुबुह जो उथी तव्हांखे फेस वॉश करणो आहे ऐं जॾहिं तव्हां टे चारि रातियूं लॻातार लॻाईंदा पोइ तव्हांखे महसूसु थींदो त तव्हांजा जेके एक्नी आहिनि या एक्नी मार्क्स आहिनि या जेके चीज़ूं आहिनि उहे घटिजंदियूं वञनि. बिल्कुल जी. सो तव्हां ट्राई करे जो हुन सां गॾोगॾु व्हाइट एज जी जेका लवली क्रीम आहे हीअ बि तव्हां सभिनी जे लाइ आहे. इहे सम्झो त बाबा ही गेम चेंजर आहे, अहिड़ो ज़बरदस्त प्रोडक्ट आहे जेको तव्हां ॾींहं जो राति जो लॻाए सघो था. अगरि तव्हां राति जो लॻाइणु चाहियो था त बिल्कुलु लॻाए सघो था, ॾींहं जो लॻाइणु चाहियो था त तव्हां बिल्कुलु लॻाए सघो था. सो व्हाइट एज जी जेका लवली क्रीम आहे तव्हां ज़रूरु ट्राई करे ॾिसो, विटामिन सां भरपूर आहे जनाब. हिन में वाइटमिन B3 आहे, वाइटमिन C आहे, वाइटमिन E आहे, वाइटमिन D आहे, 3 जेके न वाइटमिन सां कैप्सूल हिन में एड थियल आहे. सो तव्हां सभु माण्हू हिन खे लॻाए सघो था, तव्हांजी जिल्द खे निखारींदी, दाग धबाइण हुननि जा निशान घटि कंदी, तव्हांजी स्किन खे प्रोटेक्ट कंदी. उहो कीअं, छो त व्हाइट एज लवली क्रीम जे अंदरि सनस्क्रीन बि मौजूद आहे. सो अगरि तव्हां कोई बि नॉर्मल फेयरनेस क्रीम लॻाइणु चाहियो था त व्हाइट एज जी लवली क्रीम तव्हांजे लाइ बिल्कुलु परफेक्ट सोल्यूशन आहे. सो तव्हां हर कोई इस्तेमालु करे सघो थो, पंहिंजे चेहरे खे ख़ूबसूरत बणाए सघे थो ऐं पंहिंजी स्किन जी हिफ़ाज़त करे सघे थो. गर्मियुनि जे मौसम में बाबा हीअ त ॾाढी लाज़मी तव्हां सभिनी जे लाइ शइ आहे. अगरि तव्हां मेकअप नथा करणु चाहियो, मेकअप कयो था ऐं मेकअप टिके नथो फेस ते, त तव्हां व्हाइट एज जी लवली क्रीम इस्तेमालु कयो.

अहिड़ी गर्मियुनि में शादियूं कंदा आहिनि बाबा, ऐं वरी तव्हां जो वञण बि लाज़मी हूंदो आहे कई मरतबा। मुंहिंजी अम्मी खे त बसि शादी जो सॾु मिले न, चवंदी आहे हा ज़रूरी वञिणो आहे, ज़रूरी। इहा सही ॻाल्हि आहे, शादियुनि में बसि तव्हांजे घर जा वॾा ई वेंदा आहिनि, ज़ाहिर ॻाल्हि आहे। ऐं तव्हां भले वञू, ओके जी। सो शादी अगरि थिए पई तव्हांजे मिटनि माइटनि में बि, त तव्हां मूंखे ॿुधायो न, गर्मियुनि में जेके माण्हू शादी कंदा आहिनि या शादियुनि जो तव्हांखे सॾु ॾींदा आहिनि, उहो तव्हांजे लाइ पनिशमेंट हूंदी आहे या फिर उहे तव्हां सां प्यार कंदा आहिनि तॾहिं हू अहिड़ी मौसम में शादियूं रखंदा आहिनि? मिटनि माइटनि जो सोचे करे बाबा, असां गर्मियुनि में शादी कराईंदासीं, सभु बसि अञा मिट माइट अचनि, मज़ो वठनि गर्मी जो। ओके सो बिल्कुलु तव्हां टॉपिक खे फॉलो कयो पिया, असांजे प्रोग्राम जो हिसो थियो पिया। तव्हांजा मैसेजिस मां चाहियां पई त जल्दी ख़तमु कयां, कॉल जेके तव्हांजो वठूं था, थोरो सबर कयो।

अच्छा इरम कहती है कि प्यार आ बाबा प्यार, अभी कुछ दिन पहले मेरी दोस्त की शादी थी, वहाँ मैंने जोरी एक प्लेट खाई थी, गर्मी भी कुछ ज्यादा थी ना। हाँ ये तो वैसे है, जोरी पर छो खा दो। और ये कहते हैं अदी जी हमारी डेट सर्दियों की निकली है नवंबर महीने की, मैं बाकी दूल्हे को डांटा मैंने बहुत है। और अदी जी ओके चलो एक कूल सा गाना सुनते हैं। हाँ ऐसा बिल्कुल ऐसा बोले, कूल वाला गाना सुनते हैं ताकि थोड़ा माहौल जो ना वो कूल कूल हो जाए। और बिल्कुल गाना आपका सेट कर दिया है, लाजमी चलेगा। और आप हमारे साथ जयपाल भाई मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। और सिटी शहदादपुर से मीर अल्लाह डनो खान टालपुर, आपका शो विनी विनी नाई से बहुत शुक्रिया। दादू खां इमदाद जतोई है, अब्दुल खालिक जतोई, मुबशर हुसैन जतोई और किफायतुल्ला जतोई हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद जमान कहते हैं आपका शो वीआईपी हमेशा की तरह, वेलकम टू शो स्वीट बुआ जी, वेलकम टू यू मोहम्मद जमान। यार परदेसी भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। मुलाजिम भाई हमें सुन रहे हैं। और जानी इब्राहिम हमारे साथ मौजूद है भाई, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपको। और निजाम भट्टी कादरी, वालेकुम अस्सलाम, आप हमारा प्रोग्राम शौक से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया जी। दद्दिल कहती है कि टॉपिक चंदा, गर्मी में लोग खाना थोड़ा खाते ना, और कहीं पर जाने का दिल भी नहीं करता लोगों का। अच्छा माना यह गाल थोड़ी समझ में ना आई। और निजाम भट्टी कादरी हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। और महर इरफान सियाल साहब भी हमारा शो सुन रहे हैं, महर इरफान सियाल साहब आपको वेलकम करते हैं, और आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सारे लोग जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, और वो खूबसूरत होते जा रहे हैं। बताते जाइए जनाब कहाँ कहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हुए हैं ये प्रोडक्ट्स, या फिर कहाँ कहाँ पर अभी तक रहते हैं। और ये दर्दी दिल कहती हैं कि सिद्रा तुम्हें पता है ये एंजल वाला सॉन्ग जब तुम लगाते हो ना तो मुझे लगता है कि मैं हवाओं में उड़ रही हूँ, ऐसे ये मुझे भी लगता है। गाने की वाइब भी कुछ ऐसी है कि ऐसा महसूस होता है, वाकई सही बात है। ओके सो गाना था जी, मैं जरा बातों में इतना गुम हो जाती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ सारी बातें। सो ये वाला गाना हम सुनेंगे, और गाना सुनते सुनते जो है ना आप लोगों के साथ बातें करेंगे, और इसके साथ साथ आपको बताएंगे जनाब प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं और खूबसूरत होते जा रहे हैं।

हाँ भाई, गर्मी तो फुल कोशिश कर रही है हमारी जो शक्लें ना वो शनाख्ती कार्ड वाली तस्वीर से मिलाने की, लेकिन हमने भी ये ठान लिया है कि हम वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके खूबसूरत ही रहने वाले हैं और वाइट एज की लवली क्रीम लगाकर हम खूबसूरत ही रहने वाले हैं। तो आप भी लगाइए और हमेशा खूबसूरत ही रहिए। और उसके साथ साथ हैं जी हमारे साथ डियर गर्मी थोड़ी करे नरमी, प्लीज अति जी आप कहो ना प्लीज। लखी दर पर एक घर में बैठा हूँ, बाहर देख रहा हूँ तो हमारे घर का ये समझ नहीं आया मुझे मैसेज आपका। जयपाल भाई क्या कहना चाहते हैं?

0: दादा साईंदाद खान हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद शाह आपको वेलकम करते हैं और निजाम भट्टी भाई आपको बहुत शुक्रिया। वरियामल जतोई कहते हैं सिद्रा मैं तो फिलहाल किसी भी शादी में नहीं जाता, पहले मेरी चले। बहुत अफसोस हुआ, आप हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया जी। और वफा मीर मुनव्वर हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू। किशोर भाई कहते हैं हाय सॉरी फॉर देर एंड कंपनी जी तरफा बिरयानी हुई सोचम पेरिया बिरयानी पो सिदरा छू ते रोज तू अचे तो बिरयानी करे करे रिस्क में रिस्क को न वठण हुआ। यो वैसे सही गाला बिरयानी जते भी हो जाए ना पेरिया पहुंचंदा कयो बागी कम थींदा रहंदा बिरयानी जेको आहे न उहा तव्हांजी पहिरीं दर्जे ते हुजणु ज़रूरी आहे। बिरयानी इज़ फर्स्ट लव। ऐं असां जेके बिरयानी लवर्स आहियूं न इहे न ॾिसंदा आहियूं त बाबा गर्मी आहे या सर्दी आहे, बसि बिरयानी हुजे, ॻाल्हि ख़तमु करेसि। असां सचो आहे तॾहिं बचो आहे। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आहिनि, वापसी मोटी था अचूं, तव्हांजी जल्दी हिते वेठा हुजो काॾे न वञिजो। ओ हीअं वञी ओ हीअं मोड़ां ते ॿुधंदा रहो प्रोग्राम वाई जे एशियन जी स्किन ब्यूटी शो।
1: तहजीब सकाफत से सजी सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास GAFM 88 की आवाज
1: GAFM 88 नेटवर्क।
3: किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से किसानों

0: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
1: फातिह मेहरान सिंध की एक और पहचान
0: DAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।

0: जगत नाज आई अथव बाबा लाल अहमदुल्ला कहिड़ो पास सां गॾु मौजूद सुठी ॻाल्हि आहे तव्हां सभु सुहिणा आहियो पर तव्हां पंहिंजी ख़ूबसूरती जो अञा वधीक ख़्यालु रखो तव्हां वाइट एज जा प्रोडक्ट इस्तेमालु कयो सही आहे कंबर में आयो किथे बि आहे जिते बि आहे तव्हां सभु लॻायो तव्हां सुहिणा सुहिणा थी वञो जगत नाज़ आई अथव बाबा लाल अहमदुल्ला कहिड़ो भास सां गॾु मौजूद
1: आहे
0: ओके नूरसेन तुंहिंजो भाउ तव्हांजी का लॻी वई आहे प्रोग्राम ॿुधो पिया बदीन में हले थो चलो चलो मूंखे इहो ॿुधायो त हा मातली में वाकी कनेक्टेड आहे सही सही मूंखे ॿुधायो तव्हां क्रीम वरिती आहे कोन वरिती आहे कॾहिं वठंदा इरादो कयो अथव वाइट एस जी लवली लवली चओ लवली जलवा लवली जलवा जी केरु कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा वालेकुम अस्सलाम सां गॾो गॾु बहुत शुक्रिया तव्हां प्रोग्राम में कॉल कई वाइट एज जी लवली हिकिड़ी वठो बाबा लवली दा जलवा अथव हाणे सफ़ा तव्हां मतिलबु यादि रखिजो नालो सही आहे हलो कराची ईअं बि न बाबा चवंदा आहिनि वॾनि माण्हुनि जा नंबर बिज़ी हूंदा आहिनि सो हिन लाइ असांजो नंबर बि बिज़ी हूंदो माण्हुनि जो सालनि खां वठी कॉलिंग न लॻनि थियूं सो तव्हां बि थोरो ट्राए कयो लॻी वेंदव सो कॉलिंग नंबर 0332123228 ही वारी कॉल वठूं था ॾिसूं कहिड़े असां कॉल मौजूदु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
0: केरु असां सां गॾु आहे कल्ह वारो वधो अला मूंखे ॿुधायो प्रोग्राम ॿुधो पिया तव्हां जहिड़ो असां कीअं तव्हां प्यारा आहियो न न तव्हां यकीन ॾियारियो त असां लॻाईंदा आहियूं वाइट जा प्रोडक्ट पोइ असां यकीन कंदासीं वाक़ई

0: So calling number 0332123228 hari call batuna jisme keh rasa se call mar chuda hai. Hello, assalam alaikum.
1: Waalaikum assalam.
0: Ki rasa se gada kal maro do
1: sharo program ala solangi ka sa gada
0: Allah mukhe budhaya program budo pya
1: shoda do taro mu jero
0: ta jero asa ke kene te ta pyara ayo मैसेज पढ़ी वेठूं था बुधाईंदासीं बाबा वाइट एज जा प्रोडक्ट्स आहिनि तव्हांजे लाइ वाइट एज जा प्रोडक्ट्स आंदा आहिनि अगर तव्हां नथा लॻायो त तव्हां लॻायो बाबा तव्हां न लॻाईंदा बाक़ी केरु लॻाईंदो सबर कर सबर बुलाई बैठे तो हो दिसो अन्या चना ता निगस सगर मोलाई छो नायो सिद्रा बिन ला लाई दिया यार अच्छा किशोर भाई कहते कि वांदन जा भी नंबर बिजी होता है यो तो मैं सोचा ही ना हो आई ली माना मैं वांदी आया

अच्छा शिकारपुर में न असो एटीए जो सखर है ना वो सही हलो अव अगर तुम शिकारपुर में मुख्य बुधो पे तो सखर बुधी सो सही और ये जी चले सही है नी पर नेटवर्क अगर सही नथो मिले तवांगे तो जेको ते तवां गूगल ते मुके आराम से बुधी सको था या वरी ता फेसबुक ते बुधी सको था। कश्यप कहती यहां पे मेरी कॉल नहीं लगती क्या कोई वजीफा पढ़ो मेरी कॉल आगे पास आ जाए भाई दसो तवां कोशिश कर लगी वे न कदे न कदे नेट ते लगंदी और बाबा तवां टेंशन न वठो

सो प्रोग्राम आहे वाइट एज इन दी स्किन ब्यूटी शो जेको तव्हां डेली ॿुधंदा आहियो डेली मां तव्हां सां गॾु हूंदी आहे डेली तव्हांजो मथो खाईंदा आहियां 1 बजे खां 3 बजे ताईं ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदी आहियां जनाब वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जे बारे में दी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे बारे में तव्हां ज़रूर ट्राई करे ॾिसजो ख़ूबसूरती मिलंदी तव्हांखे उन खां अलावा हज़ार खां जतो भाई हमारे साथ मौजूद है बहुत शुक्रिया आदिल हुसैन हमें सुन रहे हैं थैंक यू और अहमद भी हमारे साथ मौजूद है अहमद आपको वेलकम करते हैं मामा समान कहते हैं टॉपिक एडो वडो लिखियो अथव सो बस सही आहे तव्हां बिल्कुलु वाइट एज ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो बाबा ऐं जॾहिं गर्मी हुजे तव्हांखे मेकअप करण ते दिलि न चवे न पोइ तव्हां वाइट एज जी लवली क्रीम इस्तेमालु कजो सही आहे सम्झो था और अनवर भाई हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम जी सफा अनवर भाई मैं खुश आया मजे में आता हूं बताया कि आयो ठीक आयो तबीयत की दवा आने और चाचा खालिद क्या कहते हैं कि हम स्पॉन्सर्ड वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि शो का टाइम 4 कलाक कर दे हाँ एडो मां कंदम प्रोग्राम 4 कलाक अनवर भाई कहते असा भी कदें न कदें कॉल कंदी सबक पको क्यों पेड़ हाँ हाँ चलो ठीक है सबक पको कर और चाचा खालिद बहुत शुक्रिया आपने इतने सारे कमेंट कर दिए मेहताब अली इंटर भाई हमारे साथ मौजूद है मेहताब भाई आपका भी बहुत शुक्रिया

ओके सो हाई टाइम थियो आहे प्रोग्राम में तव्हां खां इजाज़त वठण जो. तव्हां सां गॾु कचहरियूं कंदे वाक़ई टाइम ईअं गुज़री वेंदो आहे, ख़बर ई न पवंदी आहे. सो मोहबतूं तव्हां सभिनी प्यारनि माण्हुनि जो जेके असांजो प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो, जेके असांखे ॿुधाईंदा त बाबा असां तव्हां सां गॾु आहियूं. ऐं वरी तव्हां इस्तेमालु कंदा आहियो वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट जो या वरी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो, तव्हांजो ओ हेॾो सारो थैंक यू. ऐं वरी किथे का ग़लती थी हुजे त मां माज़रत कयां पई. सो मोकिलाणी नाहे बाबू सन सलामत सा सलामत. अलाह हाफ़िज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर.

0: वतन की मोहब्बत से सरशार सरजमीन सिंध अब गूंज रही है जीए एफएम 88 की सरमस्त आवाज से।
1: तो डालो धमाल और बोलो
0: जीए एफएम 88
1: सिंध की आवाज।
2: It's 3 PM. This time check is brought to you by.
3: जड़े माँ पांजो ख्याल रखन दिया है, तो सेहत नस्लन ताई हलन दिया है। ही पेगाम कश फाउंडेशन एंड कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

दिल्ली ऐं काबुल में हाणे को बि फ़र्क़ु न रहियो आहे. हिन वक़्तु ॿिन्ही सरहदनि जी हिक ई दुश्मन आहे. काबुल जी हुकूमत भारत जी प्रोग्रेसिव बणियल आहे. क़ौमी असेंबलीअ में ॻाल्हाईंदे दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो त अफ़ग़ानिस्तान सां ॻाल्हियुनि में सऊदी अरब, कतर, तुर्किया बि असांजो साथ ॾिनो. काबुल दहशतगर्द जी सरपरस्ती ख़तमु करण जी ज़मानत ॾियण लाइ तयारु नाहे. दहशतगर्दी ख़िलाफ़ु भीड़ में ॾुघी अरसे ताईं के पी हुकूमत जो सहकारु हासिलु न हो, हाणे आहे.

0: असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में, आप लोग इसीलिए सोचना शुरू करते हैं, इसीलिए अभी तक वहीं पे बैठे हो। 15 साल से मैंने तुम लोगों की हैवी मारी हुई है, पता नहीं खा कहते आ जाते मुंह उठा के पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा, तौबा तौबा, कोई हाल नहीं है।
1: பேரணிய குக்கீன் குயின் பிங்கியக்கு ஷாஹி புரோட்டோகால் இன்று கராச்சி போலீஸ் பேரணிய புர்த்தியும் மன்சாத் ஃபிரோஷ் அன்மோல் பிங்கிய ஜோ ரிமாண்ட் ஹாசில் கரை வரத்தோ கராச்சி போலீஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் செஷன் ரெக்கன் ஜே தாத் மேன் பிங்கியக்கு ஜெயில் மோக்கலன் வாய் ஜுடிஷியல் மெஜிஸ்ட்ரேட் ஜி ஃபேசிலே கே சேலஞ்ச் கயோ அதாலத் தர்காஸ்த் மஞ்சூர் கனே குக்கீன் குயின் பிங்கியக்கு டின்யன் ஜே ரிமாண்ட் தே போலீஸ் ஹவாலே கர் சேரோ டிஆஜி ரெக்கன் சேவாத் பிங்கிய ஜோ ரிமாண்ட் மிலி வாவா ஹே பிங்கிய மதா மாசி மே தாக்கல் கே சஜா தஃப்சீல வகர் கரை வரதா ஹன் குசில் டிய போலீஸ் பிங்கியக்கு பினா ஹத் கடன் ஜே அதாலத் மே பேஷ் கயோ ஹோ।
0: I'm Pinky. और अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर मैं इस दुनिया में नहीं हूं। तो ये मैसेज मैंने सेंड इसलिए किया है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ ये मैसेज बनाने का मतलब ये है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है तो और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से आपसे, यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे, ठीक है। तो समय ले मेरे फ्रेंड होंगे और वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे और आगे आपको खुद सारे मामलात वो बता देंगे जो भी मामलात हुए होंगे।
1: कुकीन क्वीन एंड मोलर पिंकी जो वधिक ऑडियो साम्हूं अची वियो गिरफ़्तारी बाद अगर ऑडियो में पिंकी जो ख़रीदारनि खे सिलसिलो जारी रखण जो पैगाम ॾेई रही आहे। पिंकी मंशाद ख़रीदारनि खे राब्ते लाइ नंबर बि ॾेई छॾियो। ऑडियो ऐं पिंकी मंशाद वटनि खे गिरफ़्तारीअ बाबति आगाही ॾिनी रही आहे। जेकॾहिं मूंखे कुझु थिए थो त हिन ई नंबर तां मुंहिंजो दोस्त अव्हां सां राब्ते में ईंदो जेको हिन कम खे संभालींदो। हिन ई नंबर तां कमु हलंदो रहंदो। गुज़िरियल ॾींहुं लीक थियल ऑडियो में जवाबदार पिंकी चई रही त अव्हां माण्हुनि जो अकुल गोॾनि में आहे, 8-9 साल मुंहिंजे पुठियां लॻा रहो था, रिटायर थी वञो था, पर पकिड़े नथा सघो। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान कुकीन क्वीन एंड बोलर पिंकी की गिरफ़्तारी ऐं अदालत में पेशी बाबति मामले की जांच लाइ 3 कमेटियूं जोड़े छॾियूं। मजमूई जांच डीआईजी ओला इरफान बलोच कंदो। पिंकी की गिरफ़्तारी अदालती पेशी बाबति जांच डीआईजी असद रज़ा कंदो। जांच पुलिस बाबति जांच SPCT कंदो। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के नतीजन में मुबैना हेरा फेरी ए पेंशन नवाजी खिलाफ इम्तिहान पास कर शागिर्दन सियासी समाजन जो कमीशन के गेट आरो धरणो। कमीशन इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी। साल 2024 के चटाभेटी इम्तिहान जारी कल नतीजा रद्द। इम्तिहान की शफाफ जांच कराने जो मुतालबो। चीनी परडेही वज़ीर जो नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सां फोन ते राब्तो। ईरानी अमरीका जंग जे ख़ात्मे लाइ कोशिशूं तेज़ करण ते ज़ोर भरियो चीनी परडेही वज़ीर पारां। ईरान अमरीका ॻाल्हियुनि में सहूलत फराहम करणु जंगबंदी लाइ सहूलत फराहम करण वारी पाकिस्तानी किरदार जी साराह। चीनी परडेही वज़ीर चयो त पाकिस्तान आबदा हुरमत बाबति मामला हल करण लाइ बि किरदार अदा करे। इसहाक़ डार सालसी वारी कोशिशुनि जी हिमायत करण ते चीन जा थोरा मञीदे चयो त पाकिस्तान अमुन वारियूं कोशिशूं जारी रखंदो।

पाकिस्तान ऐं चीन जी क़यादत गॾिजी तुर्की जूं मंज़िलूं तय करे रही आहे। सीपेक पाकिस्तान जी तवानाई शोबे जे हवाले सां गेम चेंजर मनसूबो आहे। इस्लामाबाद में तकरीब खे ख़िताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चयो आहे त चीन ऐं पाकिस्तान जी दोस्ती आज़मायल आहे, बीजिंग सदाई पाकिस्तान जो साथ ॾिनो आहे। वॾे वज़ीर कराची जे बुनियादी ढांचे जी बहितरी लाइ 10 अरब रुपियनि खां वधीक रक़म जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। वॾे वज़ीर सदारत हेठि थियल कराची जी तरक़ियाती स्कीमनि बाबति इजलास, रोडनि जी बहाली ऐं ट्रांसपोर्ट निज़ाम समेत 10 मेगा प्रोजेक्ट्स जो जाइज़ो वरितो वियो। वॾे वज़ीर कराची जा तरक़ियाती मनसूबा वक़्त सिर मुकमल करण जी हिदायत कंदे चयो त नाक़स कम ऐं तरक़ियाती कमनि में देरि बिल्कुलु बर्दाश्त न कई वेंदी। ट्रैफिक वारनि मसइलनि जे हल लाइ मनसूबाबंदी ज़रूरी आहे। हुकूमत क़ौमी असेंबली में एजेंडा मुअतल कराए केतिरा ई बिल मंज़ूर कराए वरिता। कानून वारे वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ सवालनि वारो वक़फ़ो ऐं ध्यानु शिकायत नोटिस मुअतल करण वारो ठहराउ पेश कयो वियो। ऐवान मां ठहराउ मंज़ूर थियण बाद हुकूमत पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल बिल 2024 मंज़ूर करायो। मालियाती इंतिज़ामनि ज़मानती इंतिज़ामनि ऐं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीम बिल 2024 मंज़ूर करायो वियो। क़ौमी असेंबली मालियाती ज़िमेवारी ऐं कर्ज़नि जी हदबंदी बाबति तरमीमी बिल 2026 जी बि मंज़ूरी ॾिनी। ख़ासि इक़्तदारी ज़ोन तरमीमी बिल ऐं इस्लामाबाद कंडोमिनियम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट बिल 2026 बि मंज़ूर करायो वियो। पाकिस्तान जी सियासी ऐं अस्करी क़यादत हिकु पेज ते आहे। रियासती इदारनि में मुकमल ईको असांजी मज़बूती जो ज़ामिन आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़ चयो आहे त भारत ग़लति इल्ज़ाम मणे जंग मणी, जंहिंजो पाकिस्तान भरपूर जवाब ॾेई कामयाबी माणी। चैलेंजेस खे मुंहुं ॾियण लाइ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खे भेटा पेश कयां थो। दादू जदारत मुबैना मुक़ाबले में माजी कयल नादर जमाली वारे केस में वारसन जो दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। वारसन पारां फ़ैसिलो हाईकोर्ट में चैलेंज करण जो ऐलान। अदालत चयो त वाक़िए बाबति अॻु FIR दाख़िल आहे, हिकु वाक़िए बाबति 2 FIRs न थियूं थी सघनि। सकरनि भरिसां तलाक घुरण तां मुड़ सतां ज़ाल घुटा ॾेई क़तल। घोट शाह मोहम्मद कचीअ में जवाबदार शौकत कची ज़ाल यास्मीन खे क़तल कयो। नारीअ जे वारसन जवाबदार खे पकड़े पुलिस हवाले कयो। जांच जो मुतालबो, जवाबदार शौकत कची जे तलाक घुरण तां ज़ाल खे क़तल करण जो एतिराफ़। पुलिस फ़ौज जवाबदार खां वधीक जांच करियूं पिया। खैरपुर वेझो टंडो मस्जिद में कारे इल्ज़ाम हेठि क़तल कयल नारी रुबीना चांडियो वारे केस जी ॿुधणी। पुलिस क़तल केस जो कचो चालान अदालत में पेश कयो। नारीअ जे वारसन जो पुलिस ते मुख्य जवाबदार जा नाला केस मां करण जो इल्ज़ाम। वारसन मौजूदु पुलिस अरबाब अली बख्श नियाणीअ खे अॻवा कंदड़ सदाम चांडियो जे नाला केस में शामिल न आहिनि कया। पुलिस असल कारदनि खे बचाए बेगुनाह वॾेरे नबन चांडियो खे जरगे जे इल्ज़ाम हेठि फासायो आहे। असल जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे।

जरवा भरसां यारलुण जे खानगी अस्पताल मां नौजवान जो गोली लगल लाश अथे। डॉक्टर गुलाम अली लुण जी अस्पताल में कम कंदड़ नौजवान फहीम अली लुण जो लाश मिलियो। पुलिस मूजिब डॉक्टर गुलाम अली लुण नौजवान फहीम लुण पाण में वेझा अज़ीज़ आहिनि। फहीम लुण गढ़ी खेरो जो रहवासी आहे। मामले जी जांच जारी आहे। जग भरसां कारे तकरार जो जरगो नौजवान के वारसन मता 25 लाख रुपया दंड मुकरण। अगुणे MNA गौस बख्श मेहर सखी अब्दुलरज़ाक खोसो जो सरपंची हेठ जरगो थियो। नौजवान मकी मेहर के 10 लाख कारे चटी 10 लाख अगवा करण 5 लाख रुपया नारी के वारसन जो खर्चो मुकरण कया वो। खोसा धुर तरफा अब्दुलई खोसो अब्दुल रऊफ खोसो खादम खोसो जड़े त मर धुर तरफा असदुल्ला मर हाजनवार बेन बेरे में शिरकत कई।

0: ऐं नादरीन जे कम बाद भरिसां जवाबदार घर भातियुनि खे नशो ॾेई लखियुनि रुपियनि जो सामान चोरी करे विया। दोदापुर जागीर वारे इलाइक़े में औरत समेत छहनि भातियुनि खे नशो ॾेई सोना ज़ेवर ऐं ॿियो सामान चोरी कयो वियो। जवाबदार कमाल ऐं मालू जखराणी नशो ॾेई 2.5 लख रुपया रोक रक़म सोन ऐं चांदी जा ज़ेवर बि खणी विया।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
5: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देरि छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूरु व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरार होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल की तकलीफ, अध मथे जो सूर, अखियुन की खारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हें सभी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज कयो वेंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 5 वगे ताई, बरोज जुमू मोकल आहे। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरण। वधिक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे, पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल की तकलीफ, अध मथे जो सूर, अखिन जी खारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हें सभी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज कयो वेंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 5 वगे ताई, बरोज जुमू मोकल आहे। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरण। वधिक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-9984-63।
5: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद से, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: इट्स 4 पीएम दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
1: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो
2: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले के चैलेंज कयो अदालत दरख्वास्त मंजूर कंदे कोकीन क्वीन पिंकी के टिन रिमांड ते पुलिस हवाले कर छो पुलिस अनमोल और पिंकी के जेल में जांच ला हिरासत में भी वी छो डीआईजी दखण चो तो पिंकी जो रिमांड मिली वो है पिंकी मथा माजी में दाखिल केस अ तफसील भी गड कर वरता है
1: Honestly, I used to think that sunblock is only for summers or harsh dhoop ke liye hi hota hai. But then I learned.
2: Hi friends, I'm Pinky. And agar aap log ab mera ye message sun rahe ho, to iska matlab ye hai ki ya to mere sath koi problem ho gaya hai ya fir main is duniya mein nahi hu. To ये मैसेज मैंने सेंड इसलिए किया है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ ये मैसेज बनाने का मतलब यह है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है तो और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे ठीक है तो मेरे मेरे फ्रेंड होंगे और आगे से इस काम को हैंडल करेंगे और आगे आपको खुद सारे मामला वो बता देंगे जो भी मामला हुए होंगे
0: कोकेन कोई अनमोल उर्फ पिंकी जो गिरफ्तारी बाद जान नशीन मुखर करने वाली ऑडियो बस सामू अची वो गिरफ्तारी बाद कल ऑडियो में पिंकी जो खरीदार के सिलसिलो जारी रहने जो पैगाम पिंकी मंदचाद खरीदार के रबे लाइ नंबर भी ॾेई छॾियो ऑडियो में पिंकी मंदचाद वटणनि खे गिरफ़्तारी बाबति आगाही ॾींदी रही आहे जेकॾहिं मूंखे कुझु थिए थो त हिन ई नंबर तां मुंहिंजो दुरुस्त दोस्त तव्हां सां राब्ते में ईंदो जेकॾहिं हिन कम खे संभालींदो उन ई नंबर तां कमु हलंदो रहंदो गुज़िरियल ॾींहुं लीक थियल ऑडियो में जवाबदार पिंकी चई रही हुई त अवाम माण्हुनि जो अक़ुलु गुरनि में आहे 8-9 साल मुंहिंजे पुठियां लॻा रहो था रिटायर थी वञो था पर पकिड़े नथा सघो

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल की तकलीफ, अध मथे जो सूर, अखिन जी खारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हें सभी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज कयो विंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोजानो सुबुह 9 वगे का शाम 5 वगे ताई, बरोज जुमू मोकल आहे। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरण। वधिक मशोरे ते जे लाए 0327-99-84-763।
4: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: It's 4:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: DD Cream, Asli Glow, Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: क्या देख रहे हो?
4: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो.
3: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे. जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे.
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.
6: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान. GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

0: इट्स 5 पीएम दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
1: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो
2: अब आप सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
5: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि मशहूर व मारूफ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे, पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ है, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
6: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 5:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: क्या देख रहे हो?
4: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
3: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे। जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
7: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज। GFM 88 नेटवर्क
6: सिंध की आवाज।
8: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
6: सुनते रहो GFM 90.8।
7: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by.
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.
3: मुलाक़ात कंदो सदर ट्रंप चयो आहे त चीनी सदर सां ईरान जंग ते तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल्हि थींदी.

0: असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में, आप लोग इसीलिए सोचना शुरू करते हैं, इसीलिए अभी तक वहीं पे बैठे हो। 15 साल से मैंने तुम लोगों की हैवी मारी हुई है। अब पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते मुंह उठा के, पिंकी मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। तौबा तौबा, कोई हाल नहीं है तुम्हें।
1: पहिरें ॾींहुं कोकेन क्वीन पिंकीअ खे शाही प्रोटोकॉल ॾींदड़ कराची पुलिस जूं ॿिए ॾींहुं फुर्तियूं। मंशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकीअ जो रिमांड हासिल करे वरितो। कराची पुलिस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन ॾखिण जी अदालत में पिंकीअ खे जेल मोकिलण वारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जे फ़ैसिले खे चैलेंज कयो। अदालत दरख़्वास्त मंज़ूर कंदे कोकेन क्वीन पिंकीअ खे 3 ॾींहनि जी रिमांड ते पुलिस हवाले करे छॾियो। पुलिस अनमोल उर्फ पिंकीअ खे जेल मां जांच लाइ हिरासत में बि वठी छॾियो। डीआईजी ॾखिण चयो आहे त पिंकीअ जो रिमांड मिली वियो आहे। पिंकीअ मथां माज़ीअ में दाख़िल केसनि जा तफ़सील बि गॾु करे वरिता आहिनि।

कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकीअ जो गिरफ़्तारी बाद जानशीन मुक़रर करण वारो आडियो बि साम्हूं अची वियो। गिरफ़्तारी बाद कयल आडियो में पिंकीअ जो ख़रीदारनि खे सिलसिलो जारी रहण जो पैगाम। पिंकी मंशियात ख़रीदारनि खे राब्ते लाइ नंबर बि ॾेई छॾियो। आडियो में पिंकी मंशियात वठंदड़नि खे गिरफ़्तारी बाबति आगाही ॾींदे चई रही आहे त जेकॾहिं मूंखे कुझु थिए थो त हुन हिन ई नंबर तां मुंहिंजो दोस्त तव्हां सां राब्ते में ईंदो, जेको हिन कम खे संभालींदो। हिन ई नंबर तां कमु हलंदो रहंदो। गुज़िरियल ॾींहुं लीक थियल आडियो में जवाबदार पिंकी चई रही हुई त अवां माण्हुनि जो अकुल गोॾनि में आहे। 8-9 साल मुंहिंजे पुठियां लॻा रहो था, रिटायर्ड थी वञो था पर पकड़े नथा सघो।

0: फौज के शहीद जवानों के भी अवार्ड से नवाजे वो।
1: सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: जीए एफएम 88 नेटवर्क से जुड़ा।
3: जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: न तो खे मुझे रो पाए तैयार थियण जो
1: तू आज भी हसी
0: थोरो पाए तो देखार
2: मुस्कान न मां मां थकी पई आ
0: न पुट ये थक ना है रत जी कमी है दिसता केडो न फिको थी हुआ है तुंजो चेहरो
2: छा कया मां
0: 6 महीना थी वैन पुट तू उम्मीद साही अई हाने वनी तो शुरू कई है फौलाद जी गोरी खच्चू भाजू खाइंदी कर पुट तोके खबर है असा त मेवन जो खलूब खाई विंदा हुआ सी उनन साही त खून ठांदो है इनसा न तोखे खुश थिंदो अनई बार रखे पुट हाने तू मां थण वाली आही पहंजो ख्याल रखन बियन खां प वधिक जरूरी है
1: मेरी
3: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो
4: छा अहां जो चेहरो बेजान ए डल लगे थो हाणे वक्त

0: जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास, चेहरे के दाग धब्बे, खेल महासे और बेजानपन। अब सबको कहे अलविदा बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, चेहरे की जिल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें।
1: किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से किसानों को

0: किरु शौक हो ना तोखे मुझे रो पाए तैयार थियण जो
1: तू आज भी हसी
0: थोरो पाए तो देखार
2: ना मां मां थकी पई आहां
0: न पुट ही थक ना है रत जी कमी आहे दिसता केडो ना फिको थी वयो है तुंजो चेहरो
2: छा कया मां
0: 6 महीना थी वयन पुट तू उम्मीद साही ऐ हाणे वनी तो शुरू कई है फौलाद जी गोरी कच्चू भाजू खाईंदी कर पुट तोखे खबर है असा त मेवन जो खलू खाई विंदा हुआ से उनन साई त खून ठांदो है इनसा न तोखे कुछ थिंदो अनई बा रखे पुट हाणे तू मां थण वाली आही पहंजो ख्याल रखन बियन खां पे वधिक जरूरी है
1: मेरी बातें तेरे जिम्मे अब ये तुझको निभानी है
3: जदे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो
4: छा अहां जो चेहरो बेजान ए डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम ए रोशन चेहरो बहरी इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए होजे हीरो हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज
5: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देरि छो अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनमी मशहूरु व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखिन जी खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उनन सबनी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज कयो विंदो आहे होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 5 वगे ताई बरोज जुमू मोकल आहे एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरन वधिक मशोरे ऐं राबते जे लाइ 0327-99-84-763
6: It's 6:15 PM.
7: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
8: Hello, Varna. Khabar na hai, main har waqt teri thakela thakela shoon diya hai.
9: तू खाइंदी चाहे स्कूल में बाकी बारन जी मंझन जी मानी डिठिया है
10: सोच

0: चैन है तता उन के रोज अंडा खाराए जो मंझन जी मानी में सूफ दी जो
1: बारन में कमजोरी अक्सर जरूरी गिजाई जुजन जी घटताई हुंदी आहे जेका उन्हनि जे सिखण जी सलाहियत में रंडक बणिजे थी। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: सुन

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन्दीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म।

0: तव्हां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो, सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो, त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरणमी मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघि ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार जो देर सां हलण शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं बरोज जुमो मोकल आहे एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरण वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-9984-763
1: जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहिरें ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज।
1: आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

देखिए नया ड्रामा सीरियल माँ 16 जनवरी से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: सर कमीशन के हुकूमत करप धंधे में तब्दील करे छो
1: कूड़ा केस कायम करना को फर्क कौन पवो
0: सिंध में लखे नौजवान केतरन दे केस कायम कंदा
2: जेके हिनन जुल्म कया न ओ सजे सद सा कया हकीकत बुधाया सीसी एमओ टीओ जेएसटी उनके लाए जेएसटी हर इम्तिहान नालो खणो शागिर्द ने इंटरव्यू में 00 मार्क वन मन पसंद जा वधिक मार्क वन
3: एक तरफ जेका पिनकी वह कराची में तिठो जगह गिरफ्तार थी वह मंशियात के जरिए सिंध के नौजवान नस्ल के तबाह करे थी पी बे तरफ ही बी पिनकी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जेका मेरिट की लताड़ करे पांजा नवाजी करे सिंध के नौजवान नस्ल के न सिर्फ मायूस करे थी पी उनके
1: हिनन मासूम शागिर्द के निकाल के वधी वने त ये तेरी खगिया वदनी ओ ता दे रोके को सकदा
4: सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के नतीजन में मुबैना हेरा फेरी पेंजा नवाजी खिलाफ मुतासर शागिर्दन ए सियासी समाजी दूरियन एहतजाजी रैली कढ़ी कमीशन ऑफिस से गेट आडो धरणो कमीशन इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी साल 2024 की चटाभेटी इम्तहान जा जारी कल नतीजा रद्द इम्तहान की शफाफ जांच कराने जो मुतालबो
0: कमीशन के हुकूमत धंधे में तब्दील करे
4: शागिर्दन सियासी समाजी दूरियन एहतजाजी रैली कढ़ी कमीशन ऑफिस से गेट आडो धरणो कमीशन इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी साल 2024 की चटाभेटी इम्तहान जा जारी कल नतीजा रद्द इम्तहान की शफाफ जांच कराने जो मुतालबो
5: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
6: सिंध के माथे का झूमर जी।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम सामईन। जीएस अखर एफएम 88 जे लाइव स्टूडियोज का प्रोग्राम है मैं ब्यूटी शो साण करे आऊं आया हां जो पंजो मेज़बान बाबर शेख। इन उम्मीदन सा तवा बिल्कुल ठीक ठाक हुंदा। अल्लाह पाक अवां सबनी ते पंहिंजी रहमतुन जा साया बरकरार रखे। अवां जिते हुजो खुश हुजो आबाद हुजो। जी दोस्तों, है में ब्यूटी शो आहे। इन प्रोग्राम में 8 वगे ताईं अहां जो असां जो साथ इंशाल्लाह ताला जारी रहणो आहे। अहां खे खबर आहे त ही प्रोग्राम पूरे जीए एफएम नेटवर्क ते ॿुधो वेंदो आहे। पूरा 8 स्टेशन ते कनेक्ट हूंदो आहे। इन प्रोग्राम में काफी सारा सेगमेंट्स हूं जी अवज तमाम घना फेवरेट आंदा वन पा डी डी अलहमदुल्ला अवज मुहबतू जी मुख्य फीडबैक के जरिए रिसीव थी सच पुछो मां चीन्द यार बस छे डो बो कम न कस है में ब्यूटी शो ही कस। जी हाँ दोस्तों, अज भी प्रोग्राम में काफी सारा सेगमेंट्स में एक जो सेगमेंट है वो मुझे तमाम घो फेवरेट सेगमेंट है। तुम भी उनमें तमाम घो सुठे तरीके से ज्वाइन कंदा हो, पार्टिसिपेट कंदा हो। कड़ो सेगमेंट भला? बिल्कुल दोस्तों, गायण वजाइण। गायण वजाइण सेगमेंट में तमाम मुख्य प्यारे प्यारे मिठड़े मिठड़े सुरीले आवाज में गाना गाए करे बुधाइंदो। आखिर में वरी वोटिंग कराइंदासी। जे जा वोट वधिक पया, जे सुठो गानो गायो उनके जारी गाला वोट भी वधिक रींदा असन लिसनर्स। उन उहो हुंदो असन जो विनर प्रोग्राम अज जे इन सेगमेंट जो। विनर के जेको आहे बाक़ायदा तौर ते प्रोटोकॉल ज़रिए उन जो उहो ई गानो प्ले कंदासीं जे जा जेके उहे बोल बुधाइंदो असांखे। ठीक आहे, हूअं त अक्सर मां हिन प्रोग्राम में सिंगर चवंदो आहियां त तव्हां फरमाइश कयो सिंगर ॿुधायो, पर उन जे लाइ इहो प्रोटोकॉल हूंदो जेको विनर हूंदो उहो गानो जेको फरमाइश उन जो गानो असा प्ले कंदासी प्रोग्राम में। ठीक आ, खुश? चलो मां भी खुश। अमा के बताइंदा प्रोग्राम में शामिल थे ना तरीके कार केड़ा है। लाइव कॉलिंग है, व्हाट्सएप नंबर आ है 03-000-11-34-88। सागे नंबर ते व्हाट्सएप जी सहूलत भी मौजूद आ। गडो गड मैसेज भी तवा करे सको था। मैसेज वारा चीना यार असा छा गाइंदास इन सेगमेंट में। मैसेज वारन लाए बाबा या रियायत है त तवा पंहिंजो फेवरेट सिंगर मूंखे ॿुधाईंदो ऐं उहो सिंगर मां प्रोग्राम में शामिल करण जी कोशिश कंदुसि। ठीक आहे, खुश आणे ओके। ऐं जेके लाइव कॉलर्स आहिनि व्हाट्सएप वारा आहिनि, अच्छा व्हाट्सएप ते यार तव्हां टेक्स्ट मैसेज न कंदा कयो जेको मूंखे बाक़ाइदा तौर ते ईअं चिड़ ॾियारींदो आहे। चिड़ न ॾियारायो, टेक्स्ट मैसेज लाइ 888-1 जो पैनल आहे। बाक़ी व्हाट्सएप जेको तव्हांजे लाइ प्लेटफॉर्म आहे ते तव्हां पंहिंजा वॉइस नोट्स प्यारा प्यारा मोकिलींदा कयो। जेके अदियूं आहिनि न ख़ासि तौर ते प्यारियूं भेनरियूं, उहे भले व्हाट्सएप ते कॉल करनि, उन्हनि जी कॉल्स मां प्रोग्राम में इंक्लूड कंदुसि, छाकाणि त उन जी कॉल हेॾे लॻंदी कोन्हे जेको असांजो नंबर आहे। सो अव्हां खे ॿुधाईंदो हलां त तव्हां मैसेज कीअं कंदो। मैसेज जे लाइ पंहिंजे मोबाइल जे राइट मैसेज ऑप्शन में वेंदो, SKR लिखंदो, स्पेस ॾींदो, पंहिंजो मैसेज 888-1 ते यानी 88-81 ते सेंड कंदो। ऐं दोस्तो बिल्कुल तव्हांखे ख़बर आहे त हीउ स्पॉन्सर शो आहे ऐं उन्हनि जो पैगाम बि ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे मुंहिंजे ज़िमे आहे, जेको मां 8 वगे ताईं तव्हांखे रिमाइंड कराईंदो हलंदुसि, इन्हनि जो पैगाम ॿुधाईंदो हलंदुसि, इन्हनि जे प्रोडक्ट जो फ़ाइदो ॿुधाईंदो हलंदुसि, बकोल इन्हनि जी यानी इन्हनि जी ॻाल्हियूं मां कोट कंदो आहियां, अवां ते पहुचाईंदो आहियां ऐं तव्हां वरी इस्तेमाल जेके कंदड़ आहिनि उहे वरी पंहिंजो एक्सपीरियंस शेयर कंदा आहिनि, पंहिंजो तजुर्बो शेयर कंदा आहिनि त वाक़ई इन प्रोडक्ट यानी हैमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जो हुननि खे केतिरो बहितर रिज़ल्ट मिलियो आहे। जीअं दोस्तो मां ॻाल्हि कयां पियो हैमे नेचुरल्स वारनि जी, त दोस्तो इहो तावन हिननि प्रोग्राम कयो आहे अवां ते पहुचाइण लाइ, त इन्हनि जो पैगाम जेको आहे उहो बिल्कुलु वाज़े आहे। इन्हनि दावा कई आहे त हैमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम में SPF 30 शामिल आहे, जेका सिज जे ख़तरनाक शान खां महफ़ूज़ रखंदी आहे तव्हांजी जिल्द खे। जी हा दोस्तो, कीअं भला ईअं भला कीअं माना ओ पुछो तव्हां कीअं माना? इहो ईअं माना त तव्हां जॾहिं ॿाहिरि निकिरंदा आहियो घर खां ॿाहिरि या कम सां गॾु या तव्हांजे घरनि में उस वग़ैरह ईंदी आहे, उहो तव्हांजी स्किन खे जॾहिं लॻंदी आहे न त स्किन खे उहा डेमेज करे सघे थी, बल्कि कंदी आहे। त SPF 30 जेको हिन में शामिल आहे इहो तव्हांजी स्किन खे जेको आहे न उन ख़तरनाक सिज जे मुज़िर उन्हनि किरणनि खां महफ़ूज़ रखंदो आहे।

या क्रीमूं थपी दी आहे स्पेशली असांजी अदियुनि जे लाइ. अदियुनि जे लाइ इहा वधीक फ्रूटफुल प्रोडक्ट साबित थी सघे थी, छाकाणि त हेमे ब्यूटी क्रीम जेका आहे न इहा इन्हनि इस्तेमालु करण लाइ उन्हनि जे लाइ शामिल लॉन्च कई आहे, जेके अदियूं काफ़ी सारा जतन कंदियूं आहिनि, फार्मूलाज वग़ैरह ठाहींदियूं आहिनि घर में या वरी पार्लर से वञी करे फेशियल कराईंदियूं आहिनि, जेके टेम्पररी हूंदा आहिनि पर परमानेंट न हूंदा आहिनि. पर इन्हनि दावा कई आहे त हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जे इस्तेमाल सां तव्हांखे परमानेंट रिज़ल्ट मिली सघे थो ऐं तव्हांजो चहिरो जेको आहे न बिल्कुलु ईअं निखिरजी सघे थो. जी हा दोस्तों, त तव्हां इन जो मुंहिंजो मशवरो आहे तव्हांखे त तव्हां इन जी इहा प्रोडक्ट आज़माए सघो था. इहा अव्हांजे शहर जे हर नंढे वॾे स्टोर ते मौजूदु आहे, हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम. तरीक़ा इस्तेमालु बिल्कुलु आसान आहे. तव्हांखे सभ खां पहिरियां त इंश्योर करिणो आहे त तव्हां पंहिंजे शहर जे क़रीबी मेडिकल स्टोर ऐं गॾो गॾु सुपर स्टोर या वॾी दुकान तां हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम नालो वठी ख़रीद करे आया हो. पोइ राति जो सुम्हण खां पहिरियां चेहरे खे तव्हां वॉश कंदो, धोइण खां बाद में चेहरे ते हेमे ब्यूटी क्रीम लॻाईंदो. हल्की हल्की तव्हांखे थपड़ियां जिते दाग धबा मोड़ा हुजनि न उते तव्हांखे थोरी वधीक मिक़दार में लॻाइणी आहे. सुम्ही रहणो आहे, सुबुह जो उथंदो उथण महिल जॾहिं अॻियां पंहिंजो चेहरो धोईंदो, आईने में जॾहिं ॾिसंदो न, तव्हां चवंदो वह बाबर वह वाह जो पैगाम ॿुधायो अथई हेमे वारनि जो. त इहो मूंखे वाह वाह न कजो, हेमे वारनि खे वाह वाह कजो, ठीकु आहे. ऐं हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम अगरि अव्हांजे शहर में नथी मिले त बाबा इन्हनि जा हेल्पलाइन नंबर्स अथव, नोट कयो सभई, खणो पनो, खणो मोबाइल ऐं टाइप कयो, मां ॿुधाईंदो थो वञाव. 0-3-13-22-26-5 ऐं ॿियो नंबर आहे 0-3-16-23-53-589, ठीकु आहे. मां वन सेकेंड नंबर रिपीट कयां पियो, 0-3-13-36-222-65 ऐं 0-3-16-233-559. इन नंबर ते तव्हां कॉल कयो, हिकिड़ो नथो खणे त ॿिए ते कॉल कयो, उन्हनि खे पुछो त बाबा हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम किथे मिलंदी, तव्हां वठी अचो, फ़ाइदा वठो. ऐं तव्हां त बसि कसम खणी वेठा आहियो, सेल्फी मोकिलणी कोन्हे, नथो चवां अञा ताईं सेल्फीस तव्हांजूं हाणे स्टॉप लॻी वियो आहे. शुरू में ॿ टे सेल्फीस आहियूं, हाणे वरी नथियूं अचनि, त तव्हांखे सेल्फीस लाइ बाबा रिमाइंड कराईंदो, सेल्फी मोकिलण में शर्म न कयो. तव्हांखे अगरि पंहिंजो चहिरो नथो नाहे ॾेखारिणो, भोलड़ो हणी छॾियो चहिरे ते, स्मेली हूंदो आहे उहा हणी छॾियो, पर सेल्फी मोकिलियो. तव्हांजी वधीक सेल्फीस हूंदियूं, उहे इन्हनि ॾे फॉरवर्ड कबियूं ऐं हीअ वरी इन्हनि खां वरी मां इनामात जो सिलसिलो शुरू कराईंदुसि, ठीकु आहे. तव्हांजी सेल्फीस ईअं सम्झो ॼण जेको आहे न प्रोग्राम खे हथी वठण लाइ तमामु घणियूं फ़ाइदे वारियूं साबित थी सघनि थियूं, ठीकु आहे. त सेल्फी सेंड करण लाइ असांजो नंबर आहे 0-3-000-11-34-88. अच्छा जी, प्रोग्राम में मां सेगमेंट अव्हांखे ॿुधाए चुको आहियां, ॻाइण वॼाइण आहे, तव्हांखे पंहिंजी सुरीले आवाज़ में गाना ॻाइणा आहिनि, जेके हेमे ब्यूटी क्रीम ते हूंदा त वाह वाह थी वेंदी. अगरि तव्हां ॿिया गाना पंहिंजे आवाज़ में ॻाईंदव त मां चवंदुमि यार पोइ ॿिया गाना उन्हनि सिंगर जे आवाज़ में छो न वधूं, ठीक आहे. त उम्मीद आहे तव्हां ॻाल्हि खे सम्झंदव ऐं सेगमेंट खे बाक़ाइदा तौर ते रौनक बख़्शींदव. प्रोग्राम जी शुरूआत में तमामु प्यारो गानो थो हलायां, यार हीउ ॾाढो प्यारो गानो, मूंखे ॾाढो वणंदो आहे. थोरो न्यू वर्जन में अथव ऐं तव्हां ॿुधंदव न मज़ो बि ईंदव. ऐं अगरि तव्हां सेट थी वञो न हिन गाने खे ॿुधी करे, पोइ विच में हिकिड़ो अचे थो जेको तव्हांखे बाक़ाइदा तौर ते हौसलो पियो ॾिए हिन गाने में. ॿुधो, इंजॉय कयो, मूंसां गॾु रहो पूरे 8 वॻे ताईं.

हाँ नरम चमक आई साफ जल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जिन में शामिल आहे SPF 30 सिज जे नुकसानकार किरणन खा बचा लाए कोजिक एसिड आई जल्द मा दाग धब्बा निशानात खत्म कर लाए विटामिन सी ग्लूटाथायोन आई आर्बुटिन जेके डियन तमाजे चेहरे के कुदरती साफ आई चमकदार ग्लो रोजानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम आई हासिल करियो नो ग्लो नो एतमाद हर डी हुजे एक नो ग्लो एक नो कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम

0: जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जबरदस्त गानों अवां एंजॉय कयो हिन है में ब्यूटी शो में सफाई मजो अची वियो यार। मूंखे त मजो अची वियो, तव्हांखे बि मज़ो आयो हूंदो। हाणे वधीक मज़ो कंदासीं पाण तव्हांजे सुरीले आवाज़ में जेके गाना ॻायल हूंदा। ठीकु आहे, अॼु ॾिसूं था बाबा केरु थो खटे, केरु थो असांखे सुरीला गाना ॿुधाए ऐं मज़ो थो कराए। ऐं ॾिसूं था पहिरियों मैसेज असांखे मोकिलियो आहे ऐं हीउ छा पियो चवे, अचो ॿुधूं भई। यार कोशिशि कजो गाना ॻाइण जो, ठीकु आहे। बाक़ी जेको आहे त गानो प्ले कयो हीअं हू फलाण, इहो वरी सेगमेंट अलॻि हूंदो आहे। उहे वरी मैसेज जे ज़रिए अचनि। हीउ वॉइस नोट ॿुधो।
1: असां त गीत ॻायूं हमेशा हेमें डायमंड ग्लो बीटी क्रीम जा, असां त गीत ॻायूं हमेशा हेमें डायमंड ग्लो बीटी क्रीम जा, आहिनि आशिक सभु सुहारा हेमें डायमंड ग्लो बीटी क्रीम जा। अस्सलाम वालेकुम, मां आहियां नज़ीर खुसफ राम बलोचिस्तान मां। प्रोग्राम तमामु बहितरीन हली रहियो आहे, असां ॿुधी रहिया आहियूं तमामु बहितरीन प्रोग्राम। आउं आहियां नज़ीर खुसो।
0: चलो नज़ीर खोज़ो साहब, तव्हांजी महिरबानी, तव्हां कोशिशि इहो ॻाईंदा कयो, ठीकु आहे। ॾाढो तव्हां शायरी करे इहे शायरी जे अंदाज़ में असांखे ॿुधाईंदा हुओ हेमे ब्यूटी क्रीम ते, पर ॻाईंदव न अञा मज़ो अची वेंदो। हिकिड़ो हीउ वॉइस नोट ॿुधो।
2: बाबर भाई अस्सलाम वालेकुम, मां ॻोठ माड़ी मां थो ॻाल्हायां, मोहम्मद उमर बाबा। छा हाल आहे साईं, ख़ुशि लॻा पिया हो साईं? हाणे गानो न चवंदासीं असां, सुर एॾो भलो न आहे साईं।
0: चलो साईं का ॻाल्हि कोन्हे, असां लाइ तव्हां ॻाए ॿुधायूं, हुकुम आहे भाउ जो। हिकिड़ो हीउ वॉइस नोट ॿुधो।
3: अस्सलाम वालेकुम बाबर भाउ, छा हाल आहे, ख़ुशि आहियो? ख़ैर, सुभान मुस्तफ़ा शरठरी मिर्वा खां अर्ज़ु पियो कयां। अदा तव्हांजो प्रोग्राम ॾाढो ज़बरदस्त पियो हले, पर यार इहा हेमे नेचुरल ब्यूटी क्रीम त ठरी मिर्वा में कोन थी मिले। मां ॿ ॾींहं टे ॾाढी पुछा कई आहे।
0: साईं हेल्पलाइन नंबर वारनि खे कॉल कयो, इन्हनि खां पुछो, हीउ तव्हांखे ॿुधाईंदव किथे मिलंदियूं। ठीकु आहे, सो नंबर अथव 03-13-36-222-65 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-6-713-5-407। ठीकु आहे, सो इन ॿिन्ही नंबर ते तव्हां कॉल करे हेमे नेचुरल डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जे हवाले सां पुछी सघो था त बाबा ठरी मीरवा में कहिड़े वेझे स्टोर ते मौजूदु आहे जो असां वठी अचूं, ही तव्हांखे ॿुधाईंदव। ठीकु आहे, हिनजी ड्यूटी लॻल आहे। सो नाइस जो आपका हिजाब फ्रॉम सकर। हाय हिजाब, कैसी हो प्यारी बहना, प्रोग्राम में आप शामिल हुई? हिकिड़ो ही वॉइस नोट बाबा।

0: ऐं बाबर साहब असां साथ जो सेल्फियूं मोकिलियो। बाबर साहब मां बि तोखे सेल्फियूं मोकिलंदुमि, तोखे मौला ख़ुशि रखंदो, आबाद हूंदे। बिलावल जतोई ॿुधे पियो प्रोग्राम तव्हांजो पने आगिल खां, ऐं क़ुर्बान ख़ासि केली आहे, अज़ीज़ सोलंगी आहे, ऐं जबार चन्ना ॿुधंदो दुपीर वसण खां, अब्दुल जबार चन्ना खे खणी में घणा सलाम। बाबर साहब पिया जेके ॿुधनि पिया सभिनी खे अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। बाबर साहब मज़ाक कीअं आहे?
1: हिते वालेकुम असलाम, या हिते तॾहिं थींदी जॾहिं तव्हांजी सेल्फी ईंदी, ठीकु आहे? बाक़ी इहा हिते थी जेके आहे न खाली खाली पई लॻे। तव्हांजी महिरबानी, ठीकु आहे, फेॾो सेॾो गानो ॻायव, ठीकु आहे, तव्हांजो नालो असां लिखी छॾियोसीं गाननि वारी लिस्ट में, ॾिसूं था केरु थो खटे, वोटिंग कंहिंखे पई मिले। अच्छा, हिकिड़ो हीउ वॉइस नोट आहे, पोइ अव्हां जूं लाइव कॉल्स अथव बाबा, ठीकु आहे, ॿुधो।
2: ओहे में ब्यूटी क्रीम वाजो लगो थई, हे में ब्यूटी क्रीम वाजो लगो थई, चेरो खूबसूरत चेरो चंद्र जेड़ो बणा।

हाण नरम चमक ऐं साफ़ जल्द रुगो हिकु क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम।

0: रेडियो नो ग्लो नो एतमाद हर डी हुजे एक नो ग्लो एक नो कॉन्फिडेंस हेमे नेचर्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम
1: जी दोस्तों जबरदस्त गानो वहां एंजॉय कयो यार गानो त बस हाने जकी वणियो उही चोना उना जबरदस्त बाकी त जण जको आ त ताजा गाना मुगे वणंदा जकी ता सागर शाह जी गानी जी गुठ नंगर इंडड़ खा अहमदीन इंडड़ उर्स इंडड़ गुलशेर इंडड़ खुर्शीद इंडड़ मेहरबानी भा प्रोग्राम भी भलो क्रीम भी वीआईपी क्रीम आई केडी यो त बुधा तवा की यो रिक्वेस्ट सॉन्ग ममताज मौलाई एड़े सोहणी गाल कर को दिलड़ी ठड़ी पवे ये दिलड़ी ठारी दई आणे असन लिसनर एड़ा गाना बुधराई दई फ्रॉम सिटी मोहब्बत धड़ो खा मेहरबानी भा मैसेज मोकिलो है ओके भा कबूल मुझे बदफा ही कबूल तुम मैसेज जुलरी खा खालिक लाशारी शो वी आई पी आए गुलाम रसूल मरी साहब भी बुधन पाबानी गुठ नबीदाद भमरो खा नारो खा इमाम डिनो भमरो साहब भलीकार रसूल आबाद से आबिद हुसैन शंबान बाबिर भाई हमदर्द अगते तानो मैसेज मिसिंग पार्ट आया है गुलशेर बाबर एंड मुजम्मिल बाबर विलेज अच्छा बब्बर होंदो ठीक है सॉरी अबा गुलशेर बब्बर एंड मुजम्मिल बब्बर विलेज अलावर आयो बब्बर रखा तां जी मेहरबानी भा वकार अहमद राजपर From Basiro song Rahim Shah, I will try. May Hagi Khan Lohar Baloch Haji Khan, sorry, okay. Haji Khan Lohar Baloch Village, Pyaro Khan Lohar Baloch Ladkana Se Babar Bhai, aapka program. बहुत अच्छा चल रहा है हमें अहमद मुगल का सॉन्ग सुना दो अदा आपका प्रोग्राम हमें ब्यूटी क्रीम बहुत अच्छा चल रहा है अदा ओके अदा आलम शर मीरपुर खास गुट अतना मोरी खानी साहब तांजी मेहरबानी यार हाने हलावा तो गाने जी तरफ ही गाना तां गाए करे बुधाइंदो सेगमेंट तव गायण वजाइण की गायणो आए जी जवार मोहम्मद बचल शंबाणी साहब गायो है बुधो ही
2: अस्सलाम वालेकुम या अली सलामत सरकार नु खुश आयो तव सही मां जवार मोहम्मद बचल शंबाणी में गला नारो 184 हजर तांजो प्रोग्राम माशाल्लाह तमाम बेहतरीन तमाम सुठो पियो बुधो पंजाय के वेदर अज मुझे दोस्त जो सखर पर सखर में बट जाएं दिलाएं जाएं तो पूछा कि पर एम बी टी क्रीम कौन मिले से उनके तकड़ बोयो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर सां खरीद कनाल सर आई दिल टीचर का गाना बजाया है मो ब्यूटी

0: वाह साईं वाह, वाह साईं वाह, वाह साईं वाह, मजो अची वियो यार। जबरदस्त गानो आहे, तव्हां ॾाढो सुठी महिनत करे असांखे ॿुधायो आहे, ॾाढी ख़ुशी। ॿ ट्रेनिंग खे चओ त यार छा चकर आहे भला। हिकिड़ो ही वॉइस नोट ॿुधो,
1: कहिड़ी कहिड़ी ॿुधायां मां ॻाल्हि करे, हे मैं नेचुरल ब्यूटी क्रीम जी, ओ जे आच में की पया, ओ जे बाबर भा।
0: ॾाढो सुठो गानो ॻायो यार अब्दुल कयूं मंगी। अॼु त सफ़ा ईअं दिलरी ठरी थी पए वाकई हिन जे गाने जी हमरा फरमाइश कई आहे। हिकिड़ो ही वॉइस नोट ॿुधो, कयूं मंगी भाउ तव्हांजी महिरबानी यार, थैंक यू। मां तव्हांजो लिस्ट में नालो चाढ़ियो आहे, ॾिसूं पिया हाणे वोट कंहिंखे केतिरा पिया अचनि। ही ॿुधो,
2: अस्सलाम वालेकुम यार मदद बाबर भाई, शाह अलाह खुश कंदो बाबर भा।

0: शुक्रिया. सो जी करो ही वॉइस नोट वही ही शामिल करिए हमारी लाइव कॉल्स.
1: क्रीम लगायो.

जो चंद के चायो है में चनल क्रीम लगायो पांचो चेहरो चोड़ी जो चंद ठायो है में नेशनल क्रीम लगायो पांचो चेहरो सवा।

0: वो बस माँ व्हाट्सएप बंद तो क्या ठीक है, वो लाइव कॉलर थी वो तो।
1: सर मैं माँ सॉन्ग सुना पे लेकिन हमें ब्यूटी क्रीम के मतलब
2: सलाम जेकी संगत बुधे थी तमाम दोस्तन के सलाम या अली मदद खुसूसन तमाम के बाबा
0: साईं वालेकुम अस्सलाम मौला अली अस्सलाम मदद गुलाब अली शाह साहब वाह वाह वाह वाह मस मस ज्वाइन कयो थव बटिनियन का बाद में गानो गायो मखे डाडी खुशी थी बाबा एकड़ो
3: वालेकुम अस्सलाम
0: कैसा गलायो
3: मां हमेरा नोते रखो
0: हमेरा केड़ो हाल आ प्यारी भेण है खुश आयो
3: अल्हम्दुलिल्लाह
2: सलाम या अली मदद जेकी संगत बुधे थी तमाम दोस्तन के सलाम या अली मदद खुसूसन तमाम के बाबा
0: साईं वालेकुम अस्सलाम मौला अली अस्सलाम मदद गुलाब अली शाह साहब वाह वाह वाह वाह मस मस ज्वाइन कयो थव बटिनियन का बाद में गानो गायो मखे डाडी खुशी थी बाबा एकड़ो
3: वालेकुम अस्सलाम
0: कैसा गलायो
2: सलाम या अली मदद जेकी संगत बुधे थी तमाम दोस्तन के सलाम या अली मदद खुसूसन तमाम के बाबा
0: साईं वालेकुम अस्सलाम मौला अली अस्सलाम मदद गुलाब अली शाह साहब वाह वाह वाह वाह मस मस ज्वाइन कयो थव बटिनियन का बाद में गानो गायो मखे डाडी खुशी थी बाबा एकड़ो
3: वालेकुम अस्सलाम
0: कैसा गलायो
3: मां हमेरा नोते रखो
0: हमेरा केड़ो हाल आ प्यारी भेण है खुश आयो
3: अल्हम्दुलिल्लाह
0: तां बुधक कंहिंखे डेडिकेट कंदो उहो प्ले कयूं हलो लास्ट में मां कोशिश कयां थो असल में अहिड़ो सेगमेंट न हूंदो आहे न पोइ विच गाननि में हमद प्ले करण सां वरी जेको आहे त कोशिश कंदुसि मां कुझु अहिड़ो सेगमेंट आणियां प्रोग्राम में जंहिंमें तव्हांजे लाइ जी ॾियो जी जी
3: हलो
0: ठीक आहे मां कोशिश कंदुसि ठीक आहे तजवीज़ू जेके आहिनि मुंहिंजा प्यारा लिसनर्स उहे तव्हां ॾींदा आहियो मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे ग़ौर कंदासीं पाण पर विच प्रोग्राम में हलो ठीकु आहे आई विल ट्राई बट नॉट कंफर्म अस्सलाम वालेकुम
4: जी वालेकुम अस्सलाम
0: केर था ॻाल्हायो भाऊ
4: जी अली रज़ा खोसो पे ॻाल्हायां मां
0: किथां
4: जी शहर मंझंद लॻो पालवान खोसे
0: वाह साईं वाह गानो ॿुधाईंदव
4: जी जी हा
0: ॿुधायो
4: हे में ब्यूटी क्रीम लॻायो लॻायो पंहिंजे चहरे खे सुहिणो करे सजायो सजायो हे में ब्यूटी क्रीम लॻायो लॻायो पंहिंजे चारे खे सुहिणो करे सजायो सजायो छो था गम कयो है हाणे अजायो अजायो हे में ब्यूटी क्रीम है लॻायो लॻायो खणी बाबर है आयो आयो हे में ब्यूटी क्रीम है लॻायो लॻायो
0: साईं वाह वाह गानो तव्हां ॾाढो भलो असांखे ॿुधायो तव्हांजी महिरबानी नालो छा ॿुधायव बीहर ॿुधायो ओके अली रज़ा खोसो साहब दोस्त शामिल कयो प्लीज
4: जी मामन साले खोसो
0: ओके
4: बख्शन अली खोसो
0: ओके
5: बार
0: बार न करणी ॾिसणी आखिरी वॉइस नोट अथव पोइ जिन गाना गया आहिनि हुननि जे नाला मां ई खणा थो वोटिंग न थी सघी अञा ताईं कंहिं वोट न ॾिना आहिनि नाला खणी हुननि खे गानो डेडिकेट थो कयां ॿुधो
5: बाबर भा मां गुलाम रसूल मरी पियो ॻाल्हायां बाबर भा मां गुलाम रसूल मरी पियो ॻाल्हायां मीरपुर ख़ासि काठड़ीअ खां तव्हांखे हेमी बीटी क्रीम ते कलाम ॿुधायां थो उमीद त तव्हांखे ज़रूरु वणंदो हेमी बीटी क्रीम लॻाए छॾियो मूं पंहिंजे चहिरे खे सुहिणो ठाहे छॾियो मूं हेमी बीटी क्रीम मुझो चेहरो चंड जी आवे चमकी माहू डीसी मौका पुछ

0: बाबरबाद जे करे कोशिश कजो त आमद मुगल जी आवाज में कला बुधेन रात जे अंधियारे में सनम मां चैन गवाए वेठो हां।
1: चलो अदा ताजी वरी मेहरबानी प्रोग्राम में शामिल छा लख थोरा तो दोस्तों प्रोग्राम

उठाए छो मोहिमी बीटी क्रीमा मुझो चेहरो चंड बनायो हिमी बीटी क्रीमा बाबर बाद जे करे कोशिश कजो तो आमद मुगल जी आवाज़।

चलो अदा तव्हांजी वरी महिरबानी प्रोग्राम में शामिल थिया लख थोरा त दोस्तो प्रोग्राम ताबो हनीफ रिंदे लाल ॾिनो मोहम्मद यूसुफ ज़वार मोहम्मद बचल शबाणी अब्दुल कयूम मंगी वासिफ अली बुकटी इम्तियाज़ बंगलाणी गुलाम अली शाह अदी हुमेरा ऐं अली रज़ा खोसो साहब ऐं गुलाम रसूल मरी साहब इन्हनि सभिनि खे मां वेंदे वेंदे हे ज़बरदस्त गानो जेको आहे डेडिकेट कयूं पियो वञा अच्छा जी ही गानो प्ले कयां अॼु की राहत रही पओ या वरी सनम मारवी हिकिड़े कॉलर खां पुछी करे अव्हां खां मोकिलियांव पियो अस्सलाम वालेकुम साईं गुलाम अली शेख साहब साईं वक़्तु तमामु मुख़्तसिर आहे फ़ैसिलो इहो तव्हांखे करणो आहे त सन वारनि जो पैगाम ॾिसो जिन गाना ॻाया आहिनि इन जो मक़सदु इहो हुयो त इन जेको आहे हैमे वारनि जे पैगाम खे गाने जी सूरत में तव्हां ताईं पहुचायो आहे यानी पैगाम अवां ताईं पहुचाइण जो इहो कतअन मक़सदु न आहे त मां तव्हांखे ज़बरदस्ती चवां त इन जी क्रीम वठो वठणी अथव बसि वठी ईंदो न तव्हांखे ज़रूरत आहे तव्हां ताईं इन जो पैगाम मां पहुचायां पियो ऐं तव्हां सम्झो पिया आहे तव्हांजे लाइ कम जी ज़रूरत वारी शइ थी सघे थी त तव्हां हैमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ज़रूरु इस्तेमालु करे ॾिसो इहा ॿी प्रोडक्ट्स खां बिल्कुलु डिफरेंट इन जे करे आहे छाकाणि त इन में कॉजिक एसिड शामिलु आहे एस पी एफ 30 ग्लूटाथायोन वाइटामिन सी ऐं ॿियूं केतिरियूं जड़ी बूटियूं शामिल आहिनि तव्हांखे तमामु सुठो फ़ाइदो ॾेई सघंदियूं जिन अदिन इस्तेमाल कई आहे उन्हनि जो इहो ई फीडबैक आहे त भावर भाव आहे की हैमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जहिड़ी ॿुधीसीं न तहिड़ी निकिती आहे ॾाढी ख़ुशी पई थिए ऐं तव्हांजी सेल्फीज़ न पई अचनि ख़ैर आहे को मसलो कोन्हे उमेद आहे तव्हां सेल्फीज़ मोकिलण में का बि कंजूसी न कंदव तव्हांजी सेल्फीज़ जेके ईंदियूं न हैमे ब्यूटी क्रीम सां इन हैमे वारनि ॾींहुं मोकिलींदुनि मां मोकिलींदोमान ऐं चवंदोमान बाबा इनाम वग़ैरह ॾियो असांजे लिसनर्स खे सो जिन जे शहर में नथी मिले त हेल्पलाइन नंबर अथव

0: हाँ नरम चमक साफ जल्द रुगो एक क्रीम की दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स की डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जैमे शामिल आहे एसपीएफ 30 सिज के नुकसानकार किरणन का बचा लाए कोजिक एसिड ऐ जल्द मा दाग धब्बा निशानात खत्म कर लाए विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐ आर्बुटिन जेके दियन तवाजे चेहरे के कुदरती साफ ऐ चमकदार ग्लो रोजानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ई हासिल करियो नो ग्लो नो एतमाद हर डी हुजे एक नो ग्लो एक नो कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम हाँ नरम
1: सचल की सरमस्त धरती
2: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
1: GAFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN

0: पहिरें ॾींहुं कोकेन क्वीन पिंकीअ खे शाही प्रोटोकॉल ॾींदड़ कराची पुलिस जूं ॿिए ॾींहुं फुर्तियूं मंशियात फरोश अनमोल पिंकीअ जो रिमांड हासिलु करे वरितो। कराची पुलिस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन ॾखिण जी अदालत में पिंकीअ खे जेल मोकिलण वारी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जे फ़ैसिले खे चैलेंज कयो। अदालत दरख़्वास्त मंज़ूर कंदे कोकेन क्वीन पिंकीअ खे 3 ॾींहनि जी रिमांड ते पुलिस हवाले करे छॾियो। पुलिस अनमोल पिंकीअ खे जेल मां जांच लाइ हिरासत में बि वठी छॾियो। DIG ॾखिण चयो आहे त पिंकीअ जो रिमांड मिली वियो आहे। पिंकीअ मथां माज़ीअ में दाख़िल केसनि जा तफ़सील बि गॾु करे वरिता आहिनि।
1: अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है
0: कि पिंकीअ जो रिमांड मिली वियो आहे। पिंकीअ मथां माज़ीअ में दाख़िल केसनि जा तफ़सील बि गॾु करे वरिता आहिनि।
1: और अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। तो ये मैसेज मैंने सेंड इसलिए किया है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ ये मैसेज बनाने का मतलब ये है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है तो और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि
2: नंबर था कम हलंदो रहंदो गुज़िरियल ॾींहं लीज़ कल ऑडियो में ऐं तव्हां पिंकी चई रही हुई त अवां माण्हू

0: ईंदड़ इजलास में तलब कमेटी चेयरमैन फैसल सलीम चयो आहे त पिन की कंहिं कंहिं खे मंशियात फराहम कंदी हुई समूरा तफ़सील बि पेश कया वञनि। सेनेटर समीना ज़ाहिरी चयो त मंशियात विकिरो कंदड़ औरत जो अदालत वञण वारो अंदाज़ छिरकाईंदड़ हो। मंशियात विकिरो कंदड़ सरेआम घुमी रहिया आहिनि ऐं असां हिते मरण लाइ वेठा आहियूं।
1: कानून लागू कंदड़ इदारनि खे घुर्बल हुई। पिंकी समूरी पाकिस्तान में मनशियात सप्लाई जो नेटवर्क हलाए रही हुई। हुकूमत मनशियात करप्शन ख़िलाफ़ बिना फ़र्क़ जे कार्रवाई करे रही आहे।

0: सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी साल 2024 वाली गडियल चटाभेटी इम्तिहान जा नतीजा सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। सिंध हाई कोर्ट सखर बैच एस पी एस सी चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी इम्तिहान वठंदड़ कंट्रोलर के नोटिस जारी करे 2 जून तक जवाब तलब कर वरतो। जस्टिस समझत अली बोयो और जस्टिस अली हैदर अदा से बदल बरुकनी आइनी बैच आइनी पिटिशन के बुधन जोगो करार दींदे धुरन के नोटिस जारी कया। दरख्वास्त में मौकिफ अख्तियार किया अहल उम्मीदवार के नजरअंदाज कर पांजा नवाजी कई हुई। नतीजा कल दम करार दी जवाबी कापियों चेक करण की सदा।
1: गुजरियल 15 साल में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो इदारो सिंध दुश्मन इदारो बन जी वा। हर एक सिंध के मानू को खबर है तो 7-8 करोड़ रुपया दींदो तदे तवा कमीशन पास कर लवा।
2: असा पांजे नौजवान नसल का गद गाल थी बिंदा से असा बबुले सने पायो से कोट लालू सने पायो से सिंध सा थिंदड़ हर जरूर सने पायो से हनन सा मिने पाइंदा से छोड़े के मुस्तकबिल ने आई मुस्तकबिल था के राशिद
3: पब्लिक सर्विस कमीशन के हुकूमत धंधे में तब्दील कर केस कायम करना तो फर्क पड़ पाऊंगा। सिंध में लखे नौजवान केतर केस कायम कर
4: जेके हिनन जुल्म कया है ना वो सजे सद सा कया है ठीक है तो बताया सीसी एमओ टीओ जीएसटी उनक लगे जीएसटी हर इंतिया जो नालो खणो शागिर्द ने एंटर में 00 मार्क वन मन पसंद ने वधे के मार्क वन
5: एक तरफ।
6: आप सुन रहे थे जीएएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: छा अवां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहिरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो जीए हुजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज
1: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि मशहूर व मारू ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़न जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं बरोज़ जुमो मोकल आहे एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरन वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-9984-763
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: चिड़ कावड़ ज़रूर थी वेंदी ऐं ख़ासि करे उन टाइम ते जेॾी महिल उहा बीमार थी पए का तकलीफ़ थी वञे इलाज कराए पियो दवाऊं पियो खाए उन में चिड़ घणी थी वेंदी आहे। उन में वजूहात कुझु आहिनि, कुझु शयूं वजूहात जेके असां अव्हांजे साम्हूं रखंदासीं ऐं उमिरि जे हवाले सां रखंदासीं, जंहिंसां जंहिं उमिरि में आहे त उन में छाजे करे चिड़ थींदी उन जे बारे में रखंदासीं। त सभिनी खां पहिरीं जेकी वॾी उमिरि वारा आहिनि उन्हनि में चिड़ छो थींदी आहे, बीमारी आहे चिड़ थींदी, कमज़ोरी आहे चिड़ थींदी, निंड आराम सही कोन्हे को चिड़ थींदी, दिमाग़ी सुकून कोन्हे चिड़ थींदी, दवाउनि जो घणो इस्तेमाल सां चिड़ थींदी, या ईअं सम्झो त तेज़ दवाऊं आहिनि उहा खाइण सां दिमाग़ ते असरु थो पए, दिमाग़ सुन थी थो वञे चिड़ थींदी, यादाश्त घटि थी वेंदी आहे नंढी उमिरि थी वेंदी आहे, यादाश्त घटि थी वेंदी आहे, का ॻाल्हि चवंदो तव्हां न ॿुधंदव विसरी वेंदी, पोइ ओॾीमहिल वरी रिपीट कंदो त चिड़ थी वेंदी, मूं तव्हांखे चयो न तव्हां ॿुधियो कोन, हाणे मूंखे बि यादि कोन्हे, चिड़ थी पवंदी। इन केस में अव्हांखे कुझु बि नाहे करिणो, अव्हांखे सिर्फ़ु जस्ट ईअं चवणो आहे हाज़ुर बाबा, हाज़ुर अदा, हाज़ुर साईं, हाज़ुर हाज़ुर, ठीकु आहे ठीकु आहे, सिर्फ़ु एतिरा वर्ड्स तव्हां रखंदव त यानी कि उनजो मतिलबु आहे अव्हांखे उनखे अहमियत ॾियणी आहे ऐं हमराह खे अव्हांखे अहमियत ॾियणी आहे त ठीकु आहे ठीकु आहे हाली सब्र कयो कुझु ॾींहुं असांखे छॾियो पोइ ॾिसूं था, या कुझु वक़फ़ो असांखे ॾियो पोइ ॾिसूं था। इन सां उनजी छा आहे त अव्हां उनजी इज़त ॾियो पिया उनखे, त उनजी जेका चिड़ आहे उहा कावड़ आहे उहा ख़तमु थींदी, बाक़ी जे अव्हां उनखे चवंदव न न त उहा अञा तेज़ थी पवंदो, छा आहे त उनजो दिमाग़ हींअर कमु न पियो करे, का ॻाल्हि जेका अव्हां चओ पिया उहा सम्झे न पियो, त उन ते चिड़ ज़रूरु थींदी। भई उन्हनि सां इहो ई ज़रूरु असां चवंदासीं, ॾिसो हाणे उमिरि जो हिकिड़ो तक़ाज़ो तव्हांजो थी वियो आहे, वॾा आहियो चिड़ करणु त ठीकु आहे, वॾो आहियो चिड़ करे त को मसिलो कोन्हे को ख़ैरु आहे, बाक़ी अव्हां जेॾीमहिल चिड़ खां घणो कयो पिया त साम्हूं ॾिसो अॻे असांजा जेका वॾा हूंदा असांखे हिकिड़ी ॻाल्हि चई वेंदा हुआ त उन में असांखे इहो सम्झाए वेंदा हुआ, ॿ गुप्ता असांखे सम्झाए वेंदा हुआ, ॿाहिरि आयो नंढो भाउ वॾो आहे ठीकु आहे, पुटनि ठीकु आहे, जेसि ताणी तव्हांजे कुल्हे सां कुल्हो कोन थो मिले तेसि ताणी तव्हां उनखे दॿाए सघो था, मारे सघो था, विड़ी सघो था, सभु शइ तव्हां करे सघो था, जेॾी महिल कुल्हे कुल्हो सां मिली वियो त बि तव्हांखे हुनखे यार चवणो आहे, भाउ चवणो आहे, इज़त ॾियणी आहे, छो हाणे उहो तव्हांजी बराबरि थी वियो आहे, हाणे जे उन सां तव्हां तेज़ बि ॻाल्हाईंदव त हू चिड़ी पवंदो, ॾिसो उमिरि जो तक़ाज़ो आहे, हाणे उहो नंढो भाउ आहे उहो वॾो भाउ आहे, पर कद बुत में बराबरि थी वियो त हाणे उहो पंहिंजे पाण खे सम्झो थो हाणे मां वॾो थी वियो आहियां, त उनजी इज़त कयो, त उन जे करे उन में चिड़ कावड़ अची सघे थी। हाणे टे उमिरि थी वियूं, हिकु नंढो ॿारु, हिकिड़ी जवानी, हिकिड़ो पोड़ो, इन टिनि में कावड़ अचनि जी ॿ रस्ता तव्हांखे सम्झ में अची विया, नंढे ॿार में चिड़ कावड़ ऐं जेॾीमहिल दंद निकिरनि था ऐं या पंधु करे थो ओॾीमहिल ॿार में चिड़ ज़रूरु थींदी, उनजी वजह छा आहे त दंद निकिरनि पिया, मुहाड़ू फाटनि पियूं, त उन में कावड़ चिड़ रोइणु खाइणु पीअणु बंदि करणु दस्त उल्टी इहा सभु कंडीशनूं थियणु शुरू थी वेंदी, पंधु थो करे ज़र ज़र किरंदो ऐं तव्हां चवंदो अड़े होशियारी कर त उनमें उहो चिड़ी पवंदो, उनखे चवंदासीं न ठीकु आहे ख़ैरु आहे ख़ैरु आहे कोन चिड़ंदो ऐं हिमत बि कंदो ऐं हलण बि शुरू थी वेंदो। त ही उमिरि जे हिसाब सां अव्हांखे इन शयुनि ते ग़ौर करिणो आहे, अव्हां ग़ौर कंदव त उन्हनि शयुनि खे तव्हां उनजे ख़िलाफ़ु को बि अल्फाज़ चवंदव चिड़ी थी वेंदा, जे अव्हां उनजे हक़ में को अल्फाज़ चवंदव त अव्हांखे ख़ुशि थींदा, पर यादि रखिजो हक़ में तव्हां चई पासो थियणो आहे, साम्हूं न बीहजो न त वरी सॼी कावड़ तव्हांजे मथां लही वेंदी।
1: जीअं समय डॉक्टर साहिबु मूंखे अॼु ॿुधाए पियो अव्हांजे घर में जेके बुज़ुर्ग आहिनि जेके ज़ेर इलाज आहिनि त उन्हनि खे चिड़ थोरो वधीक ईंदी त उन्हनि जो ख़्यालु रखंदा कयो, उहे हिकु ॻाल्हि कनि था त तव्हां उन्हनि खे हा में ई जवाबु ॾियो। सामिन मां हमेशह उन्हनि खे चयो आहे त पंहिंजो ख़्यालु रखंदा कयो, पंहिंजनि प्यारनि जो ख़्यालु रखंदा कयो ऐं पंहिंजनि बुज़ुर्गनि जो ऐं पंहिंजे पाड़े वारनि जो बि ख़्यालु रखंदा कयो, ऐं जी ख़ुशि त जहान ख़ुशि, इंसान जे लाइ ख़ुशि आहे त पहाड़ वांगुरु मज़बूत आहे ऐं जंहिं महिल बीमार आहे त पोइ उन जहिड़ो ई को कमज़ोरु दुनिया में आहे ई कोन। समिन पंहिंजो ख़्यालु रखो, पंहिंजी सिहत जो ख़्यालु रखो ऐं इलाज खां एहतियात बहितरु हूंदो आहे। डॉक्टर साहिबु कॉल वठूं था, केरु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, किथां खां? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबु, कॉल ई डिस्कनेक्ट थी वई आहे। जी समिन अव्हां डॉक्टर साहिब ॾे कॉल करे सघो था, मां उनखे नंबर ॿुधाईंदो हलां 0827984763 ॿुड़ी 2789847763। कॉल करे डॉक्टर साहब का मालूमात वठी सको था, सवाल भी पूछी सको था। अजय डॉक्टर साहब
0: जी हाँ बिल्कुल, अजय का प्रोग्राम सेहत जो राज होम्योपैथिक सा गुड सही। अजय का प्रोग्राम में जो असो टॉपिक है वह टॉपिक में जो मेन मेन शे हुई वह सब तुझे सामू हुई उन में अवे के समझण के लिए सिर्फ एतो जरूर चवंदूँ तो वा तो वन एहतियात जरूर कर, एहतराम जरूर कर, ख्याल जरूर रखो। दवा है जरूरत है दवा की, दवा जरूर वो चाहे तो ये सवाब जो कम आ, चिड़ चढ़े तो कावड़ करे तो मार लगाए तो यो भी तुझे नेकी आ। खैर बटरे गुप्ता खाए वरता, बटरे लिपाटो खाए वरते तो को हर्ज नुकसान को।
1: डॉक्टर साहब कॉल वठूँ था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो डॉक्टर साहब, अज अलाए छा है नेटवर्क इशू आ या को बियो इशू आ? बहरहाल को मसलो कोने को सामिन, तवा नेटवर्क की साइड भी कॉल कंदा कयो छो जो टाइम तमाम कीमती होंद है। डॉक्टर साहब जो कीमती टाइम कढ़ी असाज लाइन इंदा टाइम कढ़ी तो उनमें तुम डॉक्टर साहब को सवाल पुछो ऐं जेन्युइन जो इशू हो उन बारे में मालूम वो। डॉक्टर साहब जनरल फिजिशियन होम्योपैथिक जहाँ खानदानी डॉक्टर सेकेंडरी आसे पास जो मशहूर मारूफ होम्योपैथिक डॉक्टर होम्योपैथिक तरीक़े इलाज से बीमार जो इलाज कन था, शफा जन अल्लाह की जात जो कम होंद है। सामिन होम्योपैथिक तरीक़े इलाज में कोई साइड इफेक्ट न होंद है, कुत मुदाफ़ियत के ही दवा असरअंदाज कंदी है। उनमें अल्लाह के तरफा जी अस जिसम में कुत मुदाफ़िक है वह एक्टिव थी तो वह बीमार से विड़ी ए बीमार के ख़त्म कर छी है। जी हाँ सामिन, इनमें जै शे जो इलाज कराइंदा सिर्फ उनके ही फायदो पवंदो में साइड इफेक्ट आए ही को। डॉक्टर साहब तरफ हल्दी ए डॉक्टर साहब असें होम्योपैथिक के बारे में मालूम दींदा। जी डॉक्टर साहब
0: हाँ बिल्कुल। अच्छा सर अवज गाल हुई तो वाइटल फोर्स है वह एक्टिव थे थी ही असर करे थी जी तकलीफ है उनको असर करे थी पर किए इन बारे में समझो न
1: जी वो तुम बुधाइंदा ना तभी तरफ आया छो जो कुछ मुझे गाल हाँ तुम बुधाइंदा डॉक्टर तुम
0: बिल्कुल इन कर यो सवाल तुम्हें तो असके बुधन पाया उन्होंने जहन में भी यह सवाल जरूर थो तो वही दवा उन जगह से कि असर करे पी कि असर करे पी समझ में नो अचे तो वाइटल फोर्स से अचे पी तो वाइटल फोर्स उन जगह से असर छो करे पी बिन जगह से नपी करे तो सही इनमें असि जी होम्योपैथिक की पोटेंसियन दवाओं उन्होंने कमाल है। अच्छा किए कमाल है तो अस हर दवा की अलग अलग सिम्टम्स अलग अलग अलामतू हैं उन अलामत असि सी बुक मिली है तकरीबन समझो एकड़ी दवा जहाँ वी टी पेज हूँ जैमें हर सिम्टम्स अलामत उनके मुताबिक लिखल होंगी है। अच्छा असें करो हों तो पेशेंट जो असा अचे तो हर पेशेंट मुँह तक न कर मजे से वेह और जल्दी ऐसी बाहर कड़ने वो डॉक्टर ना या मुझे सुकून से वेह उन ये है तो पेशेंट एक मुतमिन थी तो वे तो हाँ भाई मुझे डॉक्टर से गाल कर टाइम मिली वो हाँ असा क्या तो पेशेंट के ये चवंदा तो तुम्हें जो भी मसला हिंसर जी तकलीफ है जो मर्ज है वह असा बुधा पर इन से गड गुड पे जी तकलीफू थी वही हुई जिनको अव इलाज करा चुका हो वह सब तक असणी है बाकी उनमें कड़ी शो इलाज करो है वह कम असो अवजो ना उनमें यो फायद थे तो जी मिसाल के तौर पर अगे पेशेंट के टीबी हुई टीबी जो उन्हें छह महीनों कोर्स इस्तेमाल किया टीबी जी मेडिसन्स दवाओं वो आन गरम हाँ पेशेंट मुझे अचे पो तो कंडीशन मुझे दे पो तो मुझे मादे में जलन थे पी हाथ पैर सड़न पाया हाँ में उल्टी हाँ कच्चो उल्टी थे पी पेट से भर्ती थे पी तो इन में यह कंडीशन थी सके थी असा ये समझी सकूँ था तो मेडिसन जी इस्तेमाल कही टीबी वाली वह गर्म हुई उन दवाओं के इस्तेमाल के कर मादे की खराबी थी वही माना खाधे पीते जो निज़ाम वह डिस्टर्ब थी आहिस्ते आहिस्ते यह तकलीफू थे शुरू थी हुई हाँ इन में होम्योपैथिक वारा जो तरीक़ेकार इलाज अलग आ जिमें असि होम्योपैथिक की दवाओं असर कन्दन उन खास असर जो असरा कि तो बया कह उन गरमाइश के खत्म कर दवाओं दींदा तो जैसा उनके मादे में गरमाइश खत्म थे यह गाल सभी के समझ में थी गरमाइश थी वही तो गरमाइश खत्म कर दवा दिनी है पर होम्योपैथिक में इतने फर्क है अस होम्योपैथिक वाला कहें पैं असि नज़र में असि होम्योपैथिक नज़र में यो है साइड इफेक्ट यानी कि का तकलीफ हुई उन दवा खाधी उनके बरक्स बी का तकलीफ पैदा थी वही साइड इफेक्ट पैं इन साइड इफेक्ट के खत्म करो उन बाद में ये ऐसा साइड इफेक्ट था तहड़ी तकलीफू थी व्यू जैमें मादे में जलन जिगर से गरमाइश इं थी वो इन इलाज करना तो ही मर्द बिल्कुल खत्म थी तो वे जो अस सिर्फ गरमाइश खत्म करने की दवाओं दींदी तो उनमें चाहे वक्त ही फायद अवं मिलों दवाओं हलन प्यों मेडिसन हल पी अवं एहतियात कर पाया परहेज कर पाया दवाओं दवाओं से गुड़ जो इस्तेमाल करनी वो पाया तो उन सिर्फ मर्द ने दवाओं खत्म थी सागी मर्द वाली वापस रिपीट कर होम्योपैथिक चवंदी है तो मर्द दवा खत्म थे तो मर्द वरी रिपीट न ये चवंदा कामयाब इलाज हर सिम्पटम्स की मालूमात करे उन सिम्पटम्स के मुताबिक जेका मेडिसन अवे ला राइट आए जैसे चवंदा तो 100 सिम्पटम 100 की 100 अस मेडिसन में मिले पी तो वही मेडिसन अस महीना हलानी पे अस पेशेंट के दींदी हाँ अवान जो जो सवाल हो तो कुवत मुदाफत उन्हीं मसले के हल किए कंदी पेन की छो न कंदी उन सवाल जो जवाब इन्हें में जेका अलामतूँ जेका तकलीफू जेका मर्द अवां के थन पिया वही असांजी पोटेंशियन में लिखल आहे तो यह तकलीफ़ थे मतलब कि मादे में सूर आ उन गड मथे में सूर थे पो तो उन यह दवा है सिर्फ वही दवा डेनी है अवे वही दवा अवं इस्तेमाल कंदा कुछ 6 दिन कुछ 12 दिन कुछ 15 दिन महीनों भी इस्तेमाल कंदा तो यह तकलीफ़ ऑटोमेटिक खत्म थी वी यह टाइम जो लगन तो उनमें पेशेंट जो किरदार हों पेशेंट की इम्यूनिटी कि स्ट्रॉन्ग आ वीक है या पेशेंट के टाइम घड़ो थी चुको है इन मसले में तो उन दवा जो असरात थोड़ा लेट थन्दा या उन अलावा पेशेंट में इन का अलावा भी का तकलीफ है या जिसम के अंदर को वायरस आन जैसे कर दवाओं वह असर कन पे सुस्ती कन पे तो उनसा गड असा कुछ एंटीबायोटिक एलोपैथिक दिंदा तो असि होम्योपैथिक में अलग सिम्पटम है अलग शे है तो जो चवंद म्याजमेटिक दवाओं वहाँ एलोपैथिक में एंटीबायोटिक अस में है म्याजमेटिक दवाओं तो उन वायरस के हटाए कर रस्तों साफ करण जो कम असाजी उन म्याजमेटिक दवाओं जो होंद उनसा गड म्याजमेटिक दवाओं दींदा तो वायरस खत्म थी वा जो महीने वो कम आंद्रह दिन में थी वो इन करे अवां के चवंदा आयो तो होम्योपैथिक इलाज करायो होम्योपैथिक इलाज करण से जो मर्द है जो तकलीफ है जो बीमारी है सिर्फ उन्हें जी दवा मिली और दवा से अवां के कोई बी का मसलो बी का तकलीफ बी का बीमारी पैदा नथी थी सके सिर्फ पैदा थियण की वजूहत ये थी तो कुछ पेशेंट तकड़ में जल्दी जल्दी दवाओं असि खाई वेंदा तो उन नुकसान थी वो तो जैमें अस अवां के पेशेंट के ये समझाइंदा तो जे असके अवां के ये सब दवाओं लागत ही खरणी हुई तो एक जगह से दई छदूँ हाँ तो इन कर कुछ दवाओं अलग खरणी पवंदियों तो उनमें दवाओं में वक्फो जरूर रखा कर
1: डॉक्टर साहब कॉल वठूँ था अस्सलाम वालेकुम हेलो डॉक्टर साहब अलो तक जो वरी लगे दिसो थी सके तो असट कोई इशू हो कॉल जो है बार बार डिस्कनेक्ट तो थी वे ये न थे खे अजो ये थे पो समय अवं बुध पाया जी शकर नवाब शाह एफएम 90.8 जो लाइव स्टूडियो में प्रोग्राम सेहत जो राज होम्योपैथिक से पेश कर पे वे अवजो मेज़बान सलीम अहमद सरगरणी जी समय असो साथ रह पूरे 9 वगे ती डॉक्टर साहब की क्लिनिक शकर होम्योपैथिक क्लिनिक के नाले से डॉक्टर साहब की टाइमिंग सुबह जो 9 का शाम 5 वगे ती डॉक्टर साहब असा सा गड मौजूद हों डॉक्टर साहब होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज से मरीजन जो इलाज कन था जी समय का भी बीमारी है परेशानी है इलाज कराए कराए थक जी पे फायदो न तो पवे तो उन्हें भायर भेनर बुजुर्गन के चवंदुस एक दफा होम्योपैथिक तरीका इलाज आजमाए दिसो शफात इलाज हथ है तो तवाजी तकलीफ होम्योपैथिक तरीका इलाज में खत्म थी वे सेहतयाब थी वनो समय कें भी ऑपरेशन कराने का पैर एक दफा मशवरों लाजमी कजो मसान में पथरी हुए गुर्दन में पथरी हुए पिते में पथरी हुए बवासीर हो अड़ी बीमार जिन्हें में ऑपरेशन लाजिम करार दिनों वो है तो उन्हें ऑपरेशन कराने का पैर एक दफा लाजमी चेकअप कराए दिसो थी सके तो अवं ऑपरेशन का बची वनो अवे तकलीफों दवाओं वसीले ही खत्म थी वन समय डॉक्टर साहब जनरल फिजिशियन है हर बीमारी जो इलाज कन था का भी अड़ी बीमारी ना है जिनों डॉक्टर साहब इलाज न कदा हुजन हाँ ॾिसो कंहिंखे अखि में मसइलो हूंदो आहे पोइ डॉक्टर साहिबु हुनखे अखि जे

0: स्पेशलिस्ट ॾे मोकिलींदा आहिनि त जीअं हू उते वञे ऐं हुनजी अख सेट थी वञे। अख जो इलाजु होम्योपैथिक में बि आहे, पर हुनजो कमु जॾहिं स्पेशलिस्ट जो आहे त उन ई रेफर करे छॾींदा आहिनि। यानी अगरि होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां मरीज़ सही थींदो त डॉक्टर साहिबु उन जो इलाज बि कनि था, अगरि न थींदो त उनखे वरी जेतर डॉक्टर जे इलाज जी ज़रूरत हूंदी त वरी उनखे ओॾे ई मोकिलियो वेंदो आहे। त डॉक्टर साहिबु वटि इहा शइ न आहे त आयो आहे त हाणे हिनजी खल लाइ बि, खल लाहिण वारो कमु डॉक्टर साहिब जी क्लिनिक ते न आहे। ऐं हिते अलहमदिल्ला हर छंछरु आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो आहे। आम ॾींहं ते डॉक्टर साहिब जी फीस 300 रुपया हूंदी आहे। जुमो क्लिनिक बंदि हूंदी आहे। डॉक्टर साहिब जी टाइमिंग सुबुह जो 9 खां शाम 5 वॻे ताईं हूंदी आहे। तव्हां डॉक्टर साहिब ॾे कॉल करे सघो था, मां तव्हांखे नंबर ॿुधायां थो, तव्हां नंबर नोट कंदा। शायदि मोबाइल इशू या नेटवर्क इशू कॉलूं जेके आहिनि बार बार डिस्कनेक्ट थी पियूं, नंबर नोट कंदा 0327 89 84 7 6 3 8 3 2 7 8 9 8 4 7 6 3। जीअं समय इहो डॉक्टर साहिब जो मोबाइल नंबर आहे, तव्हां हिन ते कॉल करे मालूमात वठी सघो था। समय डॉक्टर साहिब माहिर अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछू जोड़नि जो सूरु मथे जो सूरु माथे जी अल्सर माथे जी जलन तिली जो वधण जिगर जा मर्ज शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालेज खंघ टीबी हेपाटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बि बग़ैर ऑपरेशन जे इलाज कयो वञे थो। गुर्दनि जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फुरणियूं ॿारनि में कद जो न वधणु मर्दनि तुण औरतनि में वज़न जो न वधणु इन्हनि सभिनीनि बीमारियुनि जो कामयाबु इलाज कयो वञे थो। डॉक्टर साहिबु रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवाणी कीरिया मेहरापुर रोड नज़द बाईपास सकरण में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो आहे। नोट सिर्फ़ु दवा स्टोर तां वठणी पवंदी आहे, स्टोर मौजूदु हूंदो आहे। समय तकलीफ़ थिए थी, बीमारी थिए थी, तव्हांखे पंहिंजी डॉक्टरी न आहे करणी। मां हमेशह तव्हांखे मना कंदो आहियां त नीम हकीम ख़तरा जे जा हूंदो आहे, त इन जे करे पंहिंजी डॉक्टरी न कंदा कयो। थोरी तकलीफ़ थिए थी, डॉक्टर साहिबु वटि अची पंहिंजो चेकअप कराए पंहिंजो इलाजु करायो। घणी तकलीफ़ आहे पोइ बि डॉक्टर साहिबु वटि अची चेकअप करायो ऐं पाण खे सिहतयाब बणायो। समीन होम्योपैथिक जे चवण मुताबिक़ जेके पंहिंजी डॉक्टरी कंदा आहिनि उहे पाण खे मारींदा आहिनि, ईअं ई आहे। ऐं इहा हक़ीक़त बि आहे, तॾहिं त चयो वियो आहे त नीम हकीम ख़तराए जान। तव्हांजे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूरु मारूफ़ होम्योपैथिक डॉक्टर डॉक्टर हारिस जावेद लाजपूत साहबु लेक्चरर मौजूदु आहिनि। तव्हां अची पंहिंजो चेकअप कराए मुतमैन थियो था, दवा वठो, 6 ॾींहनि जी दवा खाए ॾिसो। इनशाला 6 ॾींहनि में ई ज़रूरु फ़ाइदो मिलंदो। फ़ाइदो डॉक्टर जी दवा ज़रूरु ॾींदी। तकलीफ़ ख़तमु करणु अलाह ताला जे हथ में हूंदी आहे, उहा डॉक्टर कंहिंजे बि हथ में न हूंदी आहे। दवा हिलो वसीलो ख़तमु तकलीफ़ करणु अलाह ताला जे हथ में हूंदी आहे। समय डॉक्टर साहिब मर्दनि तड़े औरतनि जा पोशीदा अमराज़ जा बि माहिर अमराज़ आहिनि, त कहिड़े बि क़िस्म जी तकलीफ़ हुजे, जेके असांजा जोड़ा बे औलाद आहिनि उहे बि अची औलाद जे लाइ दवा वठी सघनि था। औलाद ॾियणु अलाह जी ज़ात जो कमु आहे ऐं डॉक्टर दवा ॾींदो, इनशाला सिहतयाबी ज़रूरु थींदी। वधीक डॉक्टर साहिब तरफ़ हलूं था ऐं डॉक्टर साहिब खां कंहिं टॉपिक कंहिं बीमारी जे हवाले सां मालूमात वठूं था। अॼु डॉक्टर साहिब मसाने में कमज़ोरी जे हवाले सां जेके तकलीफ़ूं थींदियूं आहिनि या उन्हनि में छा खाइणु खपे उनजो हल या इहे सॼियूं थोरियूं ॿुधायो, छो जो मुंहिंजो भाणे जो आहे उनखे थोरी तकलीफ़ आहे मसाने जी। जी डॉक्टर साहिब
1: बिल्कुलु साईं, असां अव्हांजी जेके भाणे जी फरमाइश आहे उन जे बारे में असां अव्हांखे इन सवाल जो जवाबु असां ज़रूरु ॾींदासीं। पर उन खां पहिरीं हिकिड़ी शइ यादि रखो त असांजा हज जेका ओपीडी थी असांखे ॾाढी ख़ुशी थी। उन में कुझु केस असांजा अहिड़ा हुआ त असां पाण सोचियूं पिया त हीअ बाक़ी इन्हनि खे सख़्तु इलाज जी ज़रूरत आहे। ऐं तक़रीबन अॼोको जेको पेशंट हुआ ओपीडी हुई तक़रीबन 9 ई पेशंट हुआ मूं वटि, अलहमदिल्ला 9 पेशंट हुआ। तकरीबन दवाऊं असां पाण परेशान थियासीं। अॼु मानी बि जेका आहे असां शाम मंझंदि वारी मानी असां जो शाम जो 4 बजे असां मानी खाधी। उन में छा आहे त पेशंट 9 हुआ, केस तमामु घणा ख़राबु थियल, हर डॉक्टर जा पंहिंजे पंहिंजे तरीक़े सां उन्हनि जो इलाजु कयल हो, त जंहिंमें सम्झ में न पियो अचे त हीउ केस

मुंह के फा कयूं, इलाज के फा कयूं, कड़ी दवा दियूं, तो उनमें परेशानी तमाम घणी थी। कुछ पेशेंट तो मुझे अड़ा हुआ तो उनके मुंह दवा लिखी मुझे दवा ही को दिया तुम बाहर वही वो बया टे चार मरीज हल वरी वापसी घुराए वो वरी सगी गाल रिपीट करे वो दवा लिखी सी मन एतरी असा के उन केसन में डिस्टर्बेंस थी वही। तो यार बीमारी तो सभी सामू यह अचे पी पर पेशेंट गाल करे पो बी छो भला तो उनके थोड़ो वक्फो रही वरी चेक कयासी तो वरी सागी गाल अलग गाल मन मुख्तलिफ़ गाल समझ में अचन पे तो हम मसला एतरा खराब थी पर पेशेंट की कंडीशन पाया तकरीबन सही है। तो अज तकरीबन पेशेंट जो हुआ तमाम खराब दवाओं खाए खाए पाँजा मायदा खराब जिगर खराब कर वेठा हुआ बीमारी सागी जगह से बीठल हुई। तो उन्होंने जो यो ही हो चवण हो तो रात अवजो प्रोग्राम बुध हो तो उनमें अव चे हो तो ऑपरेशन कराने का पैरी असा जरूर ऐसो थी सके तो असा वो अड़ी मेडिसन पे हो जो अवे ऑपरेशन का बचा वे तो इन कर अस आयासी तो मुझे दादी खुशी थी अव आया हो तो असि पूरी कोशिश कदासूँ अवे ऑपरेशन वाली गाल बचाने अज तकरीबन केस असा अड़ा हुआ। सलीम साहब।

0: मसाने में तकलीफ। अच्छा मसाने
1: जी डॉक्टर साहब मसाने में तकलीफ,
0: मसाने में तकलीफ सही, मसाने में तकलीफ थियन जी ॿ ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि। हिकिड़ो आहे मसाने में गरमाइश, मसाने में कमज़ोरी, ॿियो आहे UTI यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, माना मसाने में इन्फेक्शन थी वञनि, पेशाब वारी नालीअ में इन्फेक्शन थी वञनि, उहा केस आहे। अच्छा इन्हनि केसनि में असां कीअं डिस्कशन कंदासीं त हाणे कीअं ख़बर पए त पेशेंट सां केस कहिड़ो आहे, त उन में सभिनी खां पहिरीं असांजा कुझु क्वेश्चन थींदा आहिनि त बाबा पेशाब कीअं ईंदो आहे, त पेशाब में जलन आहे, पेशाब में साड़ो थिए थो, पेशाब करण खां बाद में गंद किचरो अचे थो, त उन सां इन टिन्हिनि केसनि में सम्झ में ईंदो आहे त हीउ पेशेंट जी कंडीशन हाणे इन्हनि में कहिड़ी आहे। जे पेशाब में जलन आहे त माना मसाने में गरमाइश आहे, जे पेशाब में अव्हां खे चवंदा हो त पेशाब मूंखे अचे थो रुकी रुकी अचे थो, त यानी कि मसानो कमज़ोरु आहे या बर्दाश्त नथो थिए पेशाब, जीअं लॻे थो त मां पेशाब कयां न त मुंहिंजा कतरा निकिरी वेंदा, त माना मसानो कमज़ोरु थी वियो। UTI में हमेशह यादि रखो त जेॾीमहिल ट्रैक में इन्फेक्शन थींदो त पेशाब में जलन लाज़मी थींदी, त उन में पेशाब में जलन थींदी, ऐं जेॾीमहिल असां यूरिन DR कराईंदासीं त उन में पस सेल RBS रेड रत ऐं गंद पेशाब वारी टेस्ट में ज़रूरु ईंदा, ऐं पेशाब जो जेको आहे त जेॾीमहिल रिपोर्ट ठाहे ॾींदा त एस्टरबाइट हूंदो, यानी कि पेशाब में गंद ऐं किचरो अचे पियो, त सिधी ॻाल्हि आहे त UTI पॉज़िटिव आहे अव्हांखे, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन अव्हांखे थी चुको आहे। उन में पाणी जो एहतियात ज़रूरु कजो, पाणी जो इस्तेमालु तमामु घणो कजो, ऐं गरम शयूं तरल शयूं इस्तेमालु न कजो त जंहिंसां अव्हांजी तकलीफ़ूं मर्द वधनि न। कची लसी आहे उहा अव्हां इस्तेमालु करे सघो था त जंहिंमें असां कची लसी इस्तेमालु करे सघूं था जंहिंसां पेशाब में तकलीफ़ ख़तमु थी सघनि थियूं, कमनि जो रस असां इस्तेमालु करे सघूं था।
1: डॉक्टर साहिबु कॉल वठूं था, अस्सलामु अलैकुम।
2: वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है?
1: साईं दुआओं अल्लाह जा एहसान, केर गलाए पे किथा का?
2: साईं गुलाम अहमद भाईओ नाफशा का सही
1: जी मुजा भा डॉक्टर साहब से गलायो।
0: अब अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो
0: साईं अस्सलाम वालेकुम।
2: साईं असा जे भा के फालिज जो चवा गलाए कोन तो सके।
0: अच्छा घणो टाइम थियो है फालिज के?
2: साईं अंगारे दी छो आगे ते।
0: अच्छा कहिड़े कहिड़े हिसनि ते फालिश थियो आहे, हथ पेर छा ते फालिश थियो
2: आहे?
0: गलाए कोन थो सघे, साॼी बांह, साॼे पेर ऐं शिकल आहे उनजो साॼो पासो साईं गलाईंदो किथां? पाण सोचियो तव्हां गलाईंदो किथां, तव्हांजो पासो सुन थी वियो आहे, उनखे सम्झ में नथो अचे त हीउ मुंहिंजो आहे की ॿिए जो आहे, किथां ॻाल्हाईंदो? ठीकु आहे FM ॿुधो, मां FM ते जवाबु ॾियां थो।
1: जी डॉक्टर साहिबु, छा डॉक्टर साहिबु देवरनि जो चवण जो मक़सदु इहो त हाणे थियो आहे, माना हफ़्तो खनि थियो आहे त फालिज जो अटैक आयो आहे ऐं पासो सॼो सुञा ॻाल्हाए नथो।
0: इन में छा आहे त जेॾीमहिल ब्लड प्रेशर वधीक थींदो आहे न त 200 ते पहुतंदो आहे, 180 200 थींदो आहे, त दिमाग़ में का रग आहे उहा दॿजी वेंदी आहे, पोइ फालिज, ऐं उन में चांस थींदा आहिनि पेशेंट जा त उहा राइट साइड थिए, लेफ्ट साइड थिए, हेठी हिसे जो थिए, कहिड़े बि क़िस्म जो फालिज थी सघे थो। हाणे अव्हांजो जेको भाउ आहे उनखे सयो साॼे पासे, इन में छा आहे त दवाऊं मेडिसन मिलनि थियूं जेका रग बि रगनि खे ताक़त मिले, रग जी गर्दिश जेका रत जी जेका गर्दिश आहे उहा पोइ हले ऐं पोइ वञी सेट थींदो, बाक़ी जेका क्लिनिक ते अचो पोइ मां ॿुधायां थो।
1: डॉक्टर साहिबु कॉल वठूं था, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम
2: साईं, ख़ुशि आहियो, ॿियो ख़ैरु आहे?
1: बाबा सभु ख़ैरु आहे। रेडियो सेट जो आवाज़ु बंदि कंदा, इहो ॿुधायो केरु ॻाल्हायो पिया किथां खां?
2: हलो
1: अदा, रेडियो सेट जो आवाज़ु बंदि कयो, पोइ ॿुधायो त केरु ॻाल्हायो पिया ऐं किथां खां?
2: जी जी हा, इहो अदा इंच आवाज़ ते ॾिठो
1: आहे जी अदा?
2: हा पर थोरो
1: चाचा केरु पिया ॻाल्हायो किथां खां? रेडियो सेट जो आवाज़ु बंदि कयो, तव्हांजो आवाज़ु वापसी अचे पियो मूं ॾे, तव्हांजी कॉल कीअं हलंदी चाचा ॿुधायो? जी साईं जी, हलो जी अदा, छा सवाल आहे तव्हांजो?
2: यार मूंसां आहे दिलि मुंहिंजी वठजी वई आहे नशा खे राखे अथसि
1: जी,
2: ऐं दिलि मुंहिंजी कमु छॾे वई आहे।
1: अच्छा, दिलि तव्हांजी कमु छॾे?
2: हा, ऐं उन खां पोइ इस्पताल में वेंदो आहियां 15-20 ॾींहं ते महीने ते
1: जी,
2: दवाऊं कनि था, फ़ाइदो मूंखे अञा ताईं कोन पियो आहे, दिलि

0: वरी ढक ढक पई करे
1: ठीक आहे चाचा ठीक आहे एफएम ॿुधो डॉक्टर साहिब ॿुधाइनि था तव्हांजी दिलि जी धक धक अलाह कंदो त नॉर्मल थी वेंदी अजय डॉक्टर साहिब चाचे जो सवाल तव्हां ॿुधा
2: पर चाचो चयो नशो चई छा चई
1: हा नशो चई नशो इलाही कयो आहे जाम कयो आहे जो माना तमामु घणो कयो आहे ऐं सर इन सवाल जो जवाबु ॾियण खां पोइ तव्हां पैगाम तरफ़ हलिजो छो टाइम तमामु शॉर्ट आहे ऐं असांजे प्रोग्राम जो टाइम बि पुॼाणी ते पहुचण वारो आहे अजय डॉक्टर साहिब
2: चाचा ॾिसो सभिनी खां पहिरीं नशो आहे न नशे में जेका सिगरेट आहे सिगरेट में जेको वज़न आहे त उहा सभिनी शयुनि खां टाइम सिगरेट जेको आहे उनजो जेको धूओ आहे फिफड़ खे ऐं दिलि खे नुक़सानु ॾींदो आहे माइदे खे बि नुक़सानु ॾींदो आहे अव्हां खे थियो आहे दिलि जो मसलो दिलि जो आरज़ो थी वियो आहे इन में अव्हां सूफ़ आहे उहो इस्तेमालु कयो जंहिंसां दिलि खे ताक़त मिले त अव्हांजी तकलीफ़ ख़तमु थिए घणो तेज़ हलणु घणी का ॻाल्हि ॻोड़ ॿुधण जी अव्हांखे इजाज़त कान्हे का जहिड़े पकड़ में तव्हांखे वञण जी इजाज़त कान्हे का ब्लड प्रेशर पंहिंजो रोज़ु चेक कराईंदा कयो सुबुह वञण सुबुह शाम करायो ॾींहं में हिकिड़ो चकर करायो ब्लड प्रेशर पंहिंजो चेक करायो होम्योपैथिक जो अव्हां इलाज कराईंदव त अव्हांजे जेको नशे वारी जेका शयूं हुयूं न सभिनी खां पहिरीं असां उन्हनि जा असरातनि खे ख़तमु कंदासूं नशे जी जेका ॿाहिरी ॻाल्हि नशो इस्तेमालु करण खां पोइ जिस्म जे मथां अलामतूं अलॻि थींदियूं आहिनि असां उन्हनि शयुनि खे ख़तमु कंदासूं त अव्हांजी जेका दिलि जी जेका तकलीफ़ आहे उहा ऑटोमेटिक पंहिंजी पाण ख़तमु थी वेंदी पर उन में एहतियात ज़रूरु कजो सणप जो इस्तेमालु न कजो सणप जेका असां भाॼी में विझूं था ठीकु आहे उन खां मथां जेका असां मख ऐं मानी खाईंदा आहियूं उहा ज़रूरत कान्हे का खीर पियो था मथां तरी लाहे पोइ पीअंदव त जंहिंसां मखण ऐं गिह में जेका सणप आहे उहा अव्हांजी समय घटि वेंदी दिलि मां जेका तकलीफ़ आहे उन सां करे हार्ट अटैक वारी कंडीशनूं न थी सघंदियूं छो त कोलेस्ट्रोल लेवल वधीक थी वियो त अव्हांजे जेका दिलि जी तकलीफ़ आहिनि उहा वधीक थी पवंदियूं असामिन प्रोग्राम जे आख़िर में असां अव्हांजे लाइ खणी ईंदा आहियूं हिकिड़ो पैगाम जेको अव्हांजी सिहत जे बाबति हूंदो आहे त उन में असां अव्हांखे इहो ई सम्झाईंदासीं ॾिसो सिहत आहे त हर शइ आहे सिहत नाहे त का शइ कान्हे का तबियत ख़ुशि आहे अव्हां ख़ुशि आहियो तबियत ख़ुशि नाहे अव्हां ख़ुशि नाहियो जीअं अव्हांजे जिस्म में का तकलीफ़ आहे का मर्ज़ आहे त जेसि ताईं अव्हां उनजो इलाज न कराईंदा उहो आहिस्ते आहिस्ते पंहिंजे पाण उनखे तव्हां रखी वेंदा आहियो त उहा वधंदो कुटंदो कोन उनजो इलाजु तव्हांखे ज़रूरु करिणो अच्छा कुझु पेशंट हुआ उनजो असांजे वटि सवालु इहो हो त साईं मूंखे बीमारी थी कारी साई थी मूं इलाजु करायो उन खां बाद में मूं गरम शइ तरल शइ मिर्च मसाला पकौड़ा देग वारी भाॼियूं हीअ सभु शयूं वॾो गोश्त हीअ सभु शयूं मूं इस्तेमालु न कयूं त इन खां पोइ बि मां बीमार आहियां त मां उनखे इहो ई सम्झायो ॾिसो इहा शयूं इस्तेमालु करण सां बीमारी वधीक थींदी इस्तेमालु न करण सां बीमारी वधण जा चांस ख़तमु थी वेंदा पर बीमारी त मौजूदु आहे असां उनखे ख़तमु करण जे लाइ का बि अहिड़ी शइ इस्तेमालु नथा कयूं जीअं मादे का तकलीफ़ आहे जिगर जी का तकलीफ़ आहे तव्हां गरम शयूं बंदि कयो पिया थधी शयूं बि इस्तेमालु कयो जंहिंमें पाणी जूस कमनि जो रस कची लस्सी इहे मशरूबात शरबत जेका आहिनि इहा अव्हांजे लाइ बहितरु रहंदा घणी गोश्त घणो गोश्त वारी शयूं तरल शयूं उन खां तव्हां अवॉइड कयो साई भाॼी जेका आहिनि उन जो इस्तेमालु तमामु घणो कयो ख़ासि करे जिगर जो मसलो थिए त जेको साए पत्ते वारी का बि भाॼी हुजे साए पत्ते वारी जीअं का गजर आहे उनमें साओ पन हूंदा आहिनि ऐं मूली आहे उनमें साओ पन हूंदा आहिनि इहो अव्हांजे लाइ जिगर जे लाइ तमामु बहितरु आहे उहा इस्तेमालु करे सघो था ऐं यादि रखो जीअं इहे जिगर जे लाइ बहितरु आहिनि ईअं ई गुर्दनि जे लाइ नुक़सानदेह आहे जीअं गुर्दे में पथरी थींदी अव्हांखे इहा शयूं इस्तेमालु नाहे करणी जिगर जी का तकलीफ़ थींदी अव्हांखे इहा शयूं इस्तेमालु करणियूं त इन में हिकिड़ी शइ हिकिड़ी बीमारी लाइ बेफ़ाइदेमंद आहे त ॿिए लाइ नुक़सानु आहे इन शइ जो बि एहतियात कजो होम्योपैथिक इलाजु अलहमदिल्ला असां वटि मौजूदु आहे सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवाणी किरिया मेहरापुर रोड नज़द बाईपास सकरन ते अची सघो था पंहिंजो होम्योपैथिक तरीक़ेकार सां इलाजु कराए सघो था असांजी कोशिशि रहंदी तव्हां जो इलाजु सही नमूने सां थी सघे जेका मेडिसन दवाऊं असां वटि मौजूदु हूंदियूं आहिनि असां हर पेशेंट खे ॾींदा आहियूं जेका न हूंदी आहे त असां अव्हां पेशेंटनि खे सभिनी खे लिखी ॾींदा आहियूं त जेका उहा ई दवा उन्हनि खे मिले जंहिं दवा जी ज़रूरत हूंदी आहे त इन करे अव्हां बेफ़िक्र थी असां खां इलाजु कराए सघोसि था सामिन प्रोग्राम जो टाइम थिए पियो ख़तमु बेपूराम हूंदुसि अव्हां सां गॾु इनशाला कोशिशि हूंदी त अव्हां सां खोड़ कचहरियूं थियनि अव्हांजी बीमारियुनि जे बारे में मालूमात वठी अव्हांजी बीमारी जो हल करण जी कोशिशि ज़रूरु कंदासूं पर इलाजु अव्हां पंहिंजो ज़रूरु करायो भले जिथां करायो पर इलाजु ज़रूरु करायो सिहतमंद रहो ख़ुशहालु रहो अव्हां पंहिंजी ज़िंदगीअ में ख़ुशि रहो असांखे ॿियो कुझु बि नाहे खपे इनशाला उमेदु कंदासीं होम्योपैथिक इलाजु अव्हां कराईंदव अव्हांजी सिहत ज़रूरु ख़ुशहालु थींदी सामिन मिलंदासीं वरी क्लिनिक ते अची पंहिंजो इलाज कराए वठो पंहिंजो चेकअप कराए वठो फ़िलहाल ॾियो इजाज़त अलाह निगहबान
1: जी असां सां गॾु आहे सकरनि जा मशहूरु

0: सिन राउंड अप में अॼु अव्हां ॿुधी सघंदा।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सदर शी जिनपिंग से मुलाकात कंदो। सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त चीनी सदर सां ईरान जंग ते तफसीली ॻाल्हि ॿोल थींदी।
2: पंद्रहं सालनि में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो इदारो सिंध दुश्मन इदारो बणिजी वियो आहे।
3: तव्हां केॾो बि धमकायो, तव्हां केतिरो बि हिसायो, पर को बि तव्हां ॾिसो त अॼु हज़ारे नौजवान लोननि ते विचल आहिनि। असां तव्हां खां न खल ॾिना हुआसीं, न अॼु ॾिना आहियूं।
4: हिते कहिड़ी मेरिट ते ऑफिसर वेठल आहिनि? पंहिंजा माण्हू हिते हाणे रखनि था, जेको हिननि खे कमाए ॾियनि था, हिननि जा कमाऊं खपनि। असीं विढ़ंदासीं ऐं पंहिंजे आख़िरी साह ताईं असीं सिंध जे मुस्तक़बिल लाइ
5: विढ़ंदा। हिकु सिंध जे माण्हू खे ख़बर आहे तव्हां 70-80 करोड़ रुपया ॾींदो तॾहिं तव्हां कमीशन पास कंदव।
6: असां पंहिंजे नौजवान नसुल सां गॾु ख़्याल थी बीहंदासीं। असां बबुले सां निभायोसीं, कोट लालू सां निभायोसीं, सिंध सां थींदड़ ज़रूर सां निभायोसीं, हिननि सां बि निभाईंदासीं। छो जेके असां मुस्तक़बिल आहिनि ऐं मुस्तक़बिल असांखे राशि
7: पब्लिक सर्विस कमीशन खे हुकूमत हिकिड़े करप्ट धंधे में तब्दील करे छॾियो आहे। कूड़ा केस क़ाइमु करण खां फ़र्क़ु कोन पवंदो। सिंध में लखे नौजवान केतिरनि ते केस क़ाइमु कंदा?
8: जेके हिननि ज़ुल्म कया आहिनि न उहे सॼे सॾ सां कया आहिनि। थो ॿुधायां, सीसी एमओ टीओ जीएसटी हुनखे लाइ जीएसटी इंडिया जो नालो खणो। शागिर्दनि जा इंटरव्यू में डबल ज़ीरो मार्क आहिनि, मनपसंदि जा वधीक मार्क।
9: हिक तरफ़ जेका पिनकी आहे उहा कराची में तव्हां ॾिठो, जेका गिरफ़्तार थी आहे उहा मंशियात जे ज़रिए सिंध जे नौजवान नसुल खे तबाह करे थी पई। ॿिए तरफ़ ही ॿी पिनकी आहे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, जेका मेरिट जी लताड़ करे, पंहिंजा नवाज़ी करे सिंध जे नौजवान नसुल खे न सिर्फ़ मायूस करे थी पई, उन्हनि खे ख़ुदकशियूं करण ते मजबूर कंदी।
10: हिननि मासूम शागिर्दनि जी ॻाल्हि खे अॻियां वधंदी, तव्हांखे रोके कोन सघंदा।
1: सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे नतीजनि में मुबैन हेरा फेरी ऐं पंहिंजा नवाज़ी ख़िलाफ़ मुतासिर शागिर्दनि ऐं सियासी समाजी धुरियुनि एहतजाजी रैली कढी कमीशन आफ़िस जे गेट आॾो धरणो हयो। कमीशन इंतज़ामिया ख़िलाफ़ नारेबाज़ी, साल 2024 जे चटाभेटी इम्तिहान जा जारी कयल नतीजा रद्द, इम्तिहाननि जी शफ़ाफ़ जांच कराइण जो मुतालबो।

सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी साल 2024 वारी गडियल चटाभेटी इम्तिहान जा नतीजा सिंध हाईकोर्ट में चैलेंज। सिंध हाईकोर्ट सखर बैच SPSC चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी ए इम्तिहान वठंदड़ कंट्रोलर के नोटिस जारी कंदे 2 जून ताईं जवाब तलब करे वरतो। जस्टिस अमजद अली बोयो ए जस्टिस अली हैदर अदा ते बदल बरुकनी बेंच आईनी पिटीशन के बुधण जोगो करार डींदे धुरन के नोटिस जारी कया। दरख्वास्त में मौकिफ़ अख्तियार कयो वियो त अहल उमेदवारनि खे नज़रअंदाज करे पंहिंजा नवाज़ी कई वई। नतीजा कलदम करार ॾेई जवाबी कापियूं चेक कराइण जी इस्तदा।

0: It's 9:30 PM. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: Khoobsurti hai jo asal raaz. सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: हाँ हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पांजो मुकम्मल चेकअप करायो होम्योपैथिक इलाज से कुदरती शिफा हासिल करो सेहत तंदुरुस्ती की नई राह से गामजन थो तो देर छो अवे शहर सकरण में मशहूर व मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मादो जिगर गुर्दे पिते की पथरी सोज पुरानी खंग जुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखिन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हन सभी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज कयो विंदो आहे होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 5 वगे ताई बरोज जुमू मोकल आहे एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरण वधिक मशोरे 0327 99 84 700

लहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल मैं जमीन तू आसमान बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो, हाणे वक्त आहे चमकण जो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो। पहिरें ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो, जीअं हुजे हीरो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
6: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
5: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: शिकारपुर में रेलवे ट्रैक तां पेट्रोलिंग ट्राली लही वही, ASI समेत 6 अहलकार जख्मी। जाफर एक्सप्रेस की हिफाजत लाए पेट्रोलिंग कंदड़ अमले की ट्राली रेलवे ट्रैक तां लहण सबब 6 जणा जख्मी थी पया। जख्मियों में ASI गुलाम हादी सुमरो, अहलकार सईद बख्त सोलंगी, पीर बख्श दिलमुराद ए नदीम जख्मी थी पया। रेलवे अख्तियारन मूजिब वाक्यो ट्राली के एक्सल भजी पवण सबब पेश आयो आहे।
2: सरकारी दौरे ते चीन पहुंची वो बीजिंग पहुंचने ते सदस्य शांता राजिया। चीनी मीडिया मूजिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात कंदो। सदर ट्रंप है चीनी सदर से ईरान जंग ते तफसीली गाल बोलती थी।
3: सालन में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो इदारो सिंध दुश्मन इदारो बनजी वा
4: केडियो में धमकायो तहां केतो भी सायो पर कोई भी तवा दिसो ताज हजारे नौजवान नोनन दे चला हैं असा तहां का नखल दिजावासी नाज दिनायो
5: कड़ी मेरिट ते आबो सर्व कला राजा मानो ते आने रखिन था जे पनन के कमाई रिन था नन कमाओ पेन असी बड़ा नासी आई पंजे आखरी साथ आई असी सिंध के मुस्तकबिल लाए बड़ा
6: अरे एक संदूर मानो के खबर आए
7: तब्दील कर
8: एमओ टीओ जेएसजी उनके लाइसेंसी हर रिपोर्ट जो नालो खणो शागिर्द जो इंटरव्यू में 00 मार्क वन मनपसंद जा वधिक मार्क
9: एक तरफ जका पिन किया वो कराची में ता रिटो जका गिरफ्तार किया वो मनशात के जरिए सिंध के नौजवान नस्ल के तबाह करे थी भाई ये तरफ ही भी पिन किया सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जका मेरिट की लताड़ करे पांजा नवाजी करे सिंध के नौजवान नस्ल के न सिर्फ मायूस करे थी भाई उनन के खुद के
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
10: छा अमा जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाने वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड।